प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

परमेश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: सुप्रभात। घड़ी मिलाते चलिए, सुबह की ठीक 6 बज रही है। समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम याचना के साथ है सुनते हैं। नमस्कार आपको याचना।
1: नमस्कार रिया, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। मॉरिशस में कार्य परिस्थितियों और औद्योगिक संबंधों को और बेहतर बनाना, इसी उद्देश्य से नेशनल ट्राइपार्टाइट काउंसिल हाल ही में आयोजित श्रम और नौकरी पर आधारित असाइसेस के दौरान प्रस्तुत किए कई प्रस्तावों की समीक्षा करेगा ताकि कानून में सुधार लाया जा सके। कल शाम जनता को संबोधित अपने संदेश में श्रम मंत्री रिजाउद्दीन ने बताया कि कई सुधार प्रस्तावित हैं। इनमें वर्कर्स राइट्स एक्ट में कर्मचारियों की परिभाषा की समीक्षा, वर्क फ्रॉम होम के कानूनी ढांचों का निर्धारण और वर्क फेयर प्रोग्राम के संचालन से जुड़े पहलू शामिल हैं। मूसलाधार बारिश की चेतावनी के मामलों में अपनाई जाने वाली प्रणाली पर अंतर मंत्रालय समिति की रिपोर्ट पर भी उन्होंने बात की। 40 घंटों के कार्य सप्ताह को लागू करने का प्रस्ताव लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि यह पेशेवर और पारिवारिक जीवन के बीच बेहतर संतुलन की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। वहीं अन्य लोग वेतन, ओवरटाइम और इस उपाय के लागू होने की शर्तों को लेकर अधिक स्पष्टीकरण चाहते हैं। ये एक ऐसा प्रस्ताव बना हुआ है जो जनता के बीच विभिन्न प्रतिक्रियाएं पैदा कर रहा है। बात करते हैं विमानन क्षेत्र की। मध्य पूर्व में तनाव के बीच जेट A1 ईंधन की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी एयर मॉरिशस के संचालन लागत पर लगातार दबाव डाल रही है। इसके परिणाम स्वरूप हवाई टिकटों की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। इस स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय विमानन कंपनी ने एक वॉर रूम स्थापित किया है, एक विशेष समिति जिसका उद्देश्य इस बढ़ोतरी के प्रभावों को कम करने के लिए सभी संभावित उपायों का अध्ययन करना है। विदेश की खबरों में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान के वरिष्ठ नेता ने अमेरिका पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कल अमेरिका को सीधी धमकी देते हुए कहा कि यदि ईरान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया गया तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल। स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। मॉरिशस में ऊंची लहर की चेतावनी हटा दी गई है। इस बीच दक्षिण पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आज सुबह और दोपहर बाद पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटों पर बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी। रात को भी बादल घिरे रहेंगे, खासकर ऊंचाइयों पर कुछ हल्की बारिश हो सकती है। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकता है। प्रवाह रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर तथा दक्षिणी और पश्चिमी लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 19 से 21, अधिकतम 22 से 25, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 23 से 25, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह सूर्योदय 6:26 पर हुआ, शाम को सूर्यास्त 5:47 पर होगा।
2: Your weather forecast on RM2
3: Radio Musti।
0: इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार और शुभ दिन।
4: You're listening to RM3 Radio Musti।

तमाम फिक्रों से आज़ादी की दुआ। सैयदना अबू दाऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इस दुआ को सुबह शाम 7 मरतबा पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम फिक्र मुश्किलात के लिए काफ़ी हो जाता है। हसबी अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हसबी अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم। उर्दू तर्जुमा, मुझे अल्लाह ही काफ़ी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी पर मैं भरोसा रखता हूँ और वो बड़े तख्त का मालिक है।

ज़िंदगी की हाजतों और ज़रूरतों के लिए खुसूसी दुआ। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से निकले तो उनके पास खाने की कोई चीज़ न थी, सब्जियां और दरख्तों के पत्ते खाकर सफ़र करते रहे। जब मदीन पहुँचे तो बकरियों को पानी पिलाकर साए में बैठे तो भूख से बुरा हाल था, तो उस वक्त ये दुआ फरमाई कि मैं भूखा हूँ, कुछ खाने को दिल और बेआसरा और बेवतन हूँ, कोई ठिकाना अता फरमा। चुनांचे अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई और सारा बंदोबस्त फरमा दिया।

दुआ ये थी, रब्बी इन्नी लिमा अंजलत इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रब्बी इन्नी लिमा अंजलत इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रब्बी इन्नी लिमा अंजलत इलैया मिन खैरिन फ़कीर। उर्दू तर्जुमा, ए मेरे रब, इस वक्त जो नेमत तू मुझ पर उतारे, मैं उसका मोहताज हूँ।

ख़ात्मा बिल खैर की दुआ। ये दुआ सैदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने की जिसे अल्लाह ताला ने कबूल फ़रमाया। फ़ातिर السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين। فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين। فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين। उर्दू तर्जुमा, ए आसमानों और ज़मीन के बनाने वाले, तू ही दुनिया व आखिरत में मेरा हकीकी कारसाज है, मुझे अपना फरमा बरदार बना के इस दुनिया से उठा और मुझे नेक लोगों में से मिला दे।

वास्त आजे संशक्ति ने बिजी एक तुच्छ प्रवृत्ति ने मन में लागणा मोह करे चढ़या जे जरूरत है मन निशुद्धि ने शब्द सबूत छुटे लखाण शब्दों करे अहि झूठा बखाण तूफान आवे फाटे रमखाण शब्दों बनी रहे बेदिबान आवे आपद शब्दों ने फैण उगड़े जहर शब्दों ने फैण शब्दों चु बेहा काटा नी जैम शब्दों ची रहा कातर नी जैम बोल बता वात सांभड़ शिकोण वात सांभड़ो हवे रही मौन समझा से शब्दों नु षड्यंत्र अति मौन जे वो हवे कोई मंत्र

लगे शब्द सगम जान मौन मलम बात दिल लकू पकड़ी कलम शब्दों समझे दुनिया भरम बड़े शब्द अहम जाने करम छे ख्वाहिश दिल मावात कहवानी हिम्मत न दी बात बोलवानी रहे आतुरता बात जानवानी दुनिया मजा दर्दों ने माने आपे आपद शब्दों ने वैण उगड़े जहर शब्दों ने वैण शब्दों चुपे हा काटा नी जैम शब्दों चिरे हा कातर नी जैम बोल बता बात सांभ शिकोण बात सांभ हव रही मौन समझा

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: भक्ति में शक्ति, भक्ति में शक्ति, ताल FM पर. सभी श्रोताओं को विदिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार. इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भक्ति में शक्ति. इस पवित्र सुबह का आरंभ करते हैं प्रभु के स्मरण से. जी हाँ, सूरज की पहली किरण के साथ आपने ईश्वर का नाम तो जरूर लिया होगा. ईश्वर का नाम लेने से मन शुद्ध होता है. चलिए प्रभु को याद करते हुए अभी हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं. और सबसे पहले हम विघ्नहर्ता से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में आए जितने भी समस्याएं हैं उनको वो दूर करें.

शनिवार का पवित्र दिन, इस दिन हम शनिदेव का स्मरण करते हैं। कहते हैं कि सच्चाई और मेहनत से जीने वालों पर शनिदेव की कृपा सदा बनी रहती है। आइए प्रार्थना करें। हे शनिदेव, हम सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें।

श्रोताओं, भक्ति में वो शक्ति है जो कठिन से कठिन परिस्थिति को बदल सकती है। जब हम सच्चे मन से प्रभु को याद करते हैं तब हर समस्या छोटी लगने लगती है। इसलिए हर दिन कुछ पल भक्ति के लिए अवश्य निकालें।

ना राम का नाम लेने से मन को शांति मिलती है। राम नाम सत्य है, सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन का सार है। आइए मिलकर कहें राम राम और अपने जीवन को पवित्र बनाएं।

प्रिय श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भक्ति में शक्ति और ये कार्यक्रम आप विदिता के साथ सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन पर। तो श्रोताओं, भगवान कृष्ण ने हमें प्रेम और धर्म का पाठ सिखाया। उनकी बांसुरी की धुन हर दिल को सुकून देती है। आज के दिन उनके चरणों में अपना मन समर्पित करें और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे प्रेम और अपनों का साथ मिलता है।

0: चलिए श्रोताओं, आज शनिवार है और शनिवार के दिन अगर आपका मन घबरा रहा है तो हनुमान जी का नाम लेते हैं। हनुमान जी की भक्ति और बल हमें हर संकट से निकलने की शक्ति देता है। चले बोलिए जय हनुमान। कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं।
1: श्री शत्रुंजय हनुमत कवच का विधान के साथ नियमित पाठ करने से प्रबल शत्रुओं के आतंक से रक्षा होती है। जो व्यक्ति शत्रु के भय से भयभीत हो, उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर श्री शत्रुंजय हनुमत कवच का पाठ स्वयं करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त शत्रुओं का विनाश हो जाता है।

तत्सत। प्रिय श्रोताओं, इसी के साथ हमारा कार्यक्रम भक्ति में शक्ति यहाँ पर समाप्त करते हैं। याद रखिए, भक्ति में ही असली शक्ति है। तो फिर एक ऐसे कार्यक्रम के साथ मैं वेदिता फिर उपस्थित होंगी। अभी के लिए आज्ञा दीजिए आप सबों को हमारी ओर से।

暖玉长存，岁月流转，马岛渐渐褪去暑气，缓步走入舒适的初冬，凉风细雨，静谧安然。接下来请欣赏齐秦带来的《大约在冬季》。

不是再次时节变换，心事浅浅，伴着微凉风雨，让温柔的旋律寄托一份绵长想念。一起来听千百惠的《当我想你的时候》。

放下纷扰，尽享午间时光，在微凉的阴雨天气里，用一曲轻柔歌谣舒缓心情，请欣赏杨钰莹带来的《轻轻地告诉你》。

0: श्रुतिया के लिए संक्षिप्त समाचार एक बार फिर से याचना के साथ नमस्कार
1: नमस्कार मनीष मां सभी सुनने वालों को नमस्कार सुनिए संक्षिप्त समाचार बजट 2026-2027 की तैयारी के तहत आज सुबह वित्त मंत्रालय में जूनियर मंत्री धनेश्वर दामही ने बिजनेस मॉरिशस मैक्सा एसोसिएशन दे मैन्युफैक्चरिंग और नन और कृषि तथा व्यापार सदन के प्रतिनिधियों के साथ भेंट की आज दोपहर बाद बैंक और नॉन बैंकिंग क्षेत्र के प्रतिनिधि की बारी होगी बजट पूर्व सलाह मशवरे सत्र बजट की तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं जहां प्रस्तावों पर और सुझावों पर गौर किया जाता है एक कम्युनिके के जरिए सूचित किया गया है कि हज के लिए 15 साल से कम उम्र वाले बच्चों को अब से वीज़ा नहीं दिया जाएगा यानी 15 साल से कम उम्र वाले बच्चे अब हज अदा नहीं कर पाएंगे इस्लामिक कल्चरल सेंटर की को भी इसकी सूचना दी गई खासकर इन बच्चों का वीज़ा रद्द कर दिया गया है जो नए निर्देशों के अनुकूल हैं सऊदी अधिकारियों द्वारा एक कम्युनिके के जरिए इस पर जानकारियां दी गईं मॉरिशस में कार्य परिस्थितियों और औद्योगिक संबंधों को और बेहतर बनाना इसी उद्देश्य से नेशनल ट्राइपार्टाइट काउंसिल हाल में आयोजित श्रम असाइसेस के दौरान प्रस्तुत कई प्रस्तावों की समीक्षा करेगा और ताकि इसमें सुधार लाया जा सके इनमें वर्कर्स राइट्स एक्ट में कर्मचारियों की परिभाषा की समीक्षा वर्क फ्रॉम होम के कानूनी ढांचे का निर्धारण और वर्क फेयर प्रोग्राम के संचालन से जुड़े पहलू शामिल हैं मूसलाधार बारिश की चेतावनी के मामलों में अपनाई जाने वाली प्रणाली पर अंतर मंत्रालयी समिति की रिपोर्ट पर भी उन्होंने बात की विदेश की खबरों में ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध जारी है और इस बीच तनाव भी बढ़ता जा रहा है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को बताया कि यूएस और ईरान के बीच जारी सैन्य संघर्ष समाप्त हो गया है क्योंकि वर्तमान में एक युद्ध विराम लागू है साथ ही उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें युद्ध से संबंधित विधायी मंजूरी के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करने की आवश्यकता नहीं है कानून के अनुसार यदि कोई अमरीकी राष्ट्रपति सैन्य कार्रवाई के बारे में कांग्रेस को सूचित करता है तो उसे 60 दिनों के भीतर कांग्रेस की मंजूरी प्राप्त करनी होगी अन्यथा उसे सैन्य कार्रवाई रोकनी पड़ेगी लेकिन कांग्रेस नेताओं को भेजे गए पत्र में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इस वॉर पावर्स एक्ट का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है ये थी अब तक की खबरें थोड़ी देर में शोक समाचार Engrais martial au coulé mais engrais

0: मौसियाल उकुले में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के श्री विद्यानंद सिचन, श्री विद्यानंद सिचन जो विद्यानंद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके बेटे विकास सिचन के मकान औंघई मौसियाल उकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले भैयों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। वाशेगी रोड मुकामी 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री रामदीन बच्चू जो क्रिसन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 2:15 बजे उनके मकान वाशेगी रोड मुका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताई लॉन्च की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:15 PM। रुथ रॉयल मेजिन कॉन्डेमास्क में 91 साल के 91 ईयर्स ओल्ड के श्री लखीपर सात तिरभुवन जो चाचा सामाला के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 3 बजे उनकी पत्नी सावित्री तिरभुवन के मकान रुथ रॉयल मेजिन कॉन्डेमास्क से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:00 PM। मिशन क्रॉस रोड बोनाकय में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती राधिका नुबिन जो राधिक के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दोपहर 3 बजे उनके मकान मिशन क्रॉस रोड बोनाकय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:00 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: हेलो दोस्तों, घड़ी मिलाते चलिए, दिन के 12:06 हुए हैं।
4: सुहाना सफर।
0: सभी दोस्तों को अनीता का प्यार भरा हेलो नमस्कार है और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ हैं। और कहते हैं ना कि खुश तो होगे बहुत तुम, बिल्कुल खुश होने की वजह है आप लोगों को एक लंबी वीकेंड जो मिली है और हम भी जो हैं बहुत ही जॉली मूड में हैं, क्योंकि आप लोगों से बातें करने के लिए, आप लोगों के मैसेजेस पढ़ने के लिए तथा आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे गाने बजवाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। जी दोस्तों, हम मिले हैं एक ही मंच पर, चैनल है रेडियो मनोरंजन, कार्यक्रम चल रहा है सुहाना सफर, जहां हम आप लोगों के लिए लाए हैं पुराने गीतों का खजाना। तो देर ना करते हुए आए एक प्यारा सा नगमा आप लोगों के नाम अनीता की ओर से। फिल्म है टूटे खिलौने एंड वन एंड ओनली यीशुदास साहब की आवाज़ में।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, तुम दो कदम दो साथ अगर आसान हो जाए सफर, छोड़ो भी ये दुनिया का डर, तोड़ो ना दिल इनकार से। जी दोस्तों, आप भी अगर साथ देंगे तो यह सफर सुहाना ही बनेगा। ऑफ कोर्स यू आर लिसनिंग टू सुहाना सफर रेडियो मनोरंजन पर, और साथ दे रही है अनीता।
2: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: यहाँ गाना जाएगा विशेषकर ज्योति जी के नाम, जो हमेशा साथ देती रहती है शातुर्वनागस से, साथ ही साथ है अश्नी रेखा सुरेखा और पूरे माधव परिवार के लिए यह प्यारा गाना।

0: तो प्यार करने वालों की बात क्या करे, वे तो जो हैं जाम भी लुटा सकते हैं प्यार में।
1: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
0: जी दोस्तों, 12:19 हुए हैं और कटराबोन से सरिता जी साथ दे रही हैं और आप फिल्म बतवारा का गाना सुनना चाह रही हैं आशा जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ों में। तो यह गाना चल पड़ा और इसे एंजॉय कीजिए।

0: ना सफर।
1: जी दोस्तों, आप भी अपने दिल की बात कह लीजिए एंड आपके फोन कॉल एंड मैसेजेस का इंतजार कर रहे हैं। एक छोटा सा मैसेज, एक प्यार भरा पैगाम, एक ऐसी बात जो आप बयां नहीं कर पा रहे हैं और ना ही उससे इनकार भी कर पा रहे हैं, तो रेडियो मनोरंजन वह जरिया है जिसके माध्यम से आप अपना प्यार भरा दिल का पैगाम किसी खास के नाम, अपनों के नाम पहुंचा सकते हैं ऑन 5250-6200 पर या फिर फोन कॉल्स ऑन 4028070 पर। और यहाँ पर गांव गुप से श्यामा जी साथ दे रही है हमेशा की तरह, और आपने फिल्म आर पार का गाना मांगा है, यही गाना जाएगा आप

के भाई के नाम राम प्रकाश जी के नाम नम्रता भाभी नम्रता है, साथ ही साथ नेफ्यूज हैं युधिष केशव और आपकी प्यारी सहेलियां हैं विश्वानी दुखी और अवीना रामफल। तो चलिए बाबूजी धीरे चलना।

0: ना सफर।
1: जी दोस्तों, धीरे धीरे चलना क्योंकि कहीं कहीं पर बारिश हो रही है एंड जो सड़कें हैं स्लिपरी है, तो टेक केयर, टेक योर प्रिकॉशंस। और साथ दे रही हैं अनीता जी पिछली वर्जे से, और आप कहती है कि कल यानी कि 3 मई को आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है और वो भी 45 years, लॉन्ग वे, वाओ, कंग्रेचुलेशंस और ढेर सारी बधाइयाँ। विशेषकर अगला गाना पिघलता आसमान फिल्म का गाना आपके पति बलदेव के नाम, साथ ही साथ आपकी बेटियां हैं शीतल, काजल, दीक्षा, पूरे जरी परिवार, आपके दो दामाद हैं विनीसेन, वितेश, साथ ही साथ दो छोटे बच्चे हैं शिहान और सिद्धार्थ। तो चलिए इन सब के नाम यहाँ अगला गाना जाएगा और आप हमको हम आपको कहेंगे कि ढेर सारी बधाइयाँ और आशा करते हैं कि आप दोनों का साथ यू ही चलता रहे और सालों के साथ साथ, वर्षों के साथ साथ प्यार भी बढ़ता रहे। तो चलिए सुनते हैं ड्यूओ ऑफ किशोरदा और अलका याग्निक। जस्ट फील द सॉन्ग, वन ऑफ माय फेवरेट। थैंक यू इसके लिए अनीता जी।

0: सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, यहाँ पर कटरबोन से अनीता जी साथ दे रही है। एक और अनीता, नई अनीता हमारे कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। और आपको फिल्म बदवारा का गाना बहुत पसंद आया, थैंक यू इसके लिए जी। और आपकी फरमाइश है फिल्म बेटी बेटे का, फिल्म 1964 का यहाँ फिल्म है। और गाने के बोल है गोरी चलो नाई, मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ों में। और यह गाना सभी लिसनर्स के नाम जो पुराने गाने के शौकीन हैं, तो चलिए सुनते हैं।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: जी दोस्तों, पोम्फेया से गीता जी साथ दे रही हैं और आप कहती हैं कि गत रविवार को आपके बेटे रवि का जन्मदिन था, लेकिन आज आप लोग उसके बर्थडे को मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट का मौका है और ढेर सारी बधाइयां पत्नी मनीषा की ओर से। मम्मा गीता हैं, पापा रोहित हैं, उनके बेटे हैं आदित्य आरव, दो भाई हैं राजीव विनय, भाभियाँ हैं, साथ ही साथ प्यारा तनीष है जो अभी 2 महीने के भी नहीं हुए हैं। तो इन सब के की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ और एंजॉय योर डे। इट्स योर डे, योर बिग डे। सो चलिए सुनते हैं एक बर्थडे वाला गीत।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: जी दोस्तों, बुन में अफलाक से शीला जी साथ दे रही हैं और आपने फिल्म सागर का गाना मांगा है और यहाँ गाना आपने हमारे लिए डेडिकेट किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और यहाँ गाना सभी सुनने वालों के नाम और साथ ही साथ बुन में के सभी मकुना परिवार के नाम, तो चलिए सुनते हैं किशोरदा को।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, कोटेज से आशा जानू जी कार्यक्रम को एंजॉय कर रही हैं और आपकी फरमाइश है फिल्म अव्वल नंबर, और यही गाना जाएगा सभी जानू परिवार जो कोटेज के रहने वाले हैं, साथ ही साथ ममा कुमारी हैं, नेफ्यूज हैं, शुभम, ऋषभ, दीदी आरती है, जीजूराज हैं, और सभी परिवार वालों, सुनने वालों और फ्रेंड्स के नाम यह गाना जाता है। तो चलिए यह गाना सुनते हैं अमित कुमार और एस जानकी की आवाज़ों में।

0: जी दोस्तों, सुहाना सफ़र कार्यक्रम चल रहा है और एक बजे में 5 मिनट बाकी हैं। एक गाने के बाद आप लोग सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार और उसके बाद कार्यक्रम जारी रहेगा। और यहाँ पर पॉपलमूस से सचिन जी साथ दे रहे हैं। आप फिल्म तीसरा किनारा का गाना सुनना चाहते हैं, वो भी शब्बीर कुमार जी की आवाज़ों की आवाज़ में, तो चलिए सुनते हैं यह प्यारा तराना आपके नाम।
1: झील

0: आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार करुणा जी के साथ। आपको नमस्कार करुणा जी।
1: नमस्कार हंसिनी, सभी को नमस्कार। बजट 2026-2027 सलाह मशवरे के तहत आज सुबह वित्त मंत्रालय में जूनियर मंत्री धनेश्वर दामरी ने पोर्टली में विभिन्न आर्थिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इनमें बिजनेस मॉरिशस, मैक्सा, निर्माता संघ, कृषि सदन और व्यापार सदन के सदस्य शामिल रहे। इस बैठक का उद्देश्य आगामी बजट के लिए निजी क्षेत्र की प्राथमिकताओं तथा सुझावों को समझना था। दोपहर में बैंकिंग और गैर बैंकिंग क्षेत्रों के साथ साथ वित्तीय सेवाओं से जुड़े कार्यकर्ता भी सरकार के समक्ष अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं। सऊदी अधिकारियों ने हज 2026 के लिए 15 वर्ष से कम उम्र के लिए वीजा रद्द करने का निर्णय लिया है। हज मामलों के लिए जिम्मेदार मंत्री शकील मोहम्मद के मुताबिक ये फैसला कल रात के दौरान लिया गया। मॉरिशस में इस फैसले से 5 किशोर संबंधित हैं। ये कदम केवल मॉरिशस तक सीमित नहीं बल्कि अन्य देशों पर भी लागू किया गया है। मंत्री शकील मोहम्मद इस मुद्दे पर सऊदी अरब के हज मंत्रालय तथा संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सके और संभावित समाधान तलाशे जा सके। विश्व स्तर पर मनाई जाने वाली वर्ल्ड टूरिज्म ऑटिज्म अवेयरनेस डे के अवसर पर ब्राउन सिक्वर्ड मेंटल हेल्थ केयर सेंटर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकारों की प्रारंभिक पहचान को लेकर एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया गया। इस पहल का मकसद आम जनता को ऑटिज्म के शुरुआती संकेतों के प्रति अधिक सतर्क करना है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू के अनुसार फ्लैक में जल्द ही एक विशेष डे केयर सेंटर स्थापित किया जाएगा जो ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों और उनके परिवारों को समर्पित सेवाएं प्रदान करेगा। विदेश में अमेरिका ने जर्मनी से करीब 5,000 सैनिक हटाने का फैसला किया। ये फैसला आने वाले महीनों में नेटो के भीतर नए तनाव को जन्म दे सकता है। इसके साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: नंबर 24 से मोनसेनियर लीन रोटबासें कथबोन में 70 साल की 70-year-old श्रीमती नारायणी बिसेसर पैदाइशी नाम बिरगुनाथ जोमा मालडू से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 3 बजे इनके मकान नंबर 24 मोनसेनियर लीन रोटबासें कथबोन से उठाकर दाह संस्कार के लिए गांधी पालमा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ 3 PM। शोकग्रस्त इस परिवार के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
3: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
4: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
5: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
6: Suhana Safar.
7: जी दोस्तों, सुहाना सफ़र कार्यक्रम जारी है और यहाँ पर 1:04 हुए हैं। अनीता साथ दे रही है आप लोगों के लिए, प्यारे प्यारे गाने बजवा रही है और बढ़ते हैं आपकी फरमाइशों की ओर। यहाँ पर माधुरी जी हैं, माधुरी जी साथ दे रही है और आप सुनना चाह रही है पुरानी फिल्म दाग का गाना और यही गाना जाएगा आपके नाम, एंजॉय इट, और सभी लिसनर्स के नाम यही गाना जाता है।

जी बिल्कुल, आप बता सकते हैं फ़ोन के ज़रिए 4028070 पर या फिर 5250600 पर आपके मैसेजेस पढ़ रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आंटी जी हैं कंफुको से और आप सुनना चाहती हैं ढोल का फूल फिल्म का गाना, और यही गाना जाएगा आपके प्यारे पति ईश्वरलाल के नाम। आपकी पुत्री है मंजूषा, रेन्यून आइलैंड से मित्रा आई है ब्रह्मनी, तो उनके नाम भी यह गाना जाएगा। तो चलिए इस गाने को एंजॉय करते हैं आशा जी और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, प्रथानुसार अनीता जी, मोदालबिया की अनीता जी हमेशा कविता भेजती रहती है और आप कहती है, फूल कितना भी सुंदर हो, फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ उसके खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, इज्जत उसके

गुणों से होती है। थैंक यू इसके लिए जी। और आप डेडिकेट करना चाह रही हैं अगला गाना फिल्म पुलिस पब्लिक का गाना करुणा के लिए, अमृता और सभी दोस्तों के लिए। तो चलिए अमित कुमार और लता जी की आवाज़ों को सुनते हैं और एंजॉय करते हैं।

जी लग रहा है कि प्यार बहुत ही गहरा है, है ना? और यहाँ पर गायत्री जी पिछली वर्ष से साथ दे रही हैं और आपकी फरमाइश है फिल्म हम हिंदुस्तानी का गाना, और यही गाना जाएगा भाभी मीरा के नाम। बेटियां हैं गिरिशा मेधा, कटरबोन की बहन अमृता, उनकी बेटियां हैं नेहा, शीति, दिव्या, बेटे सुधीर, कमलेश, बहु सुधा। साथ ही साथ सभी सुनने वालों के नाम, पुराने गानों के शौकीन और हमारे लिए, थैंक यू जी इसके लिए। सो एंजॉय यह गाना मुकेश जी और आशा जी की आवाज़ों में।

0: सुहाना सफर,
1: सुहाना सफर।
2: दोस्तों, मई का महीना शुरू हो चुका है, वी आर सेकंड ऑफ मई, और आप देख ही रहे हैं कि यहाँ साल कितना जल्दी जल्दी जा रहा है। अगर अभी भी आपने कुछ कंक्रीट नहीं किया हो, इट्स हाई टाइम टू रिएक्ट एंड एक्ट। ऐसा ना हो कि आप जो हैं सही समय का इंतज़ार करते रहे और साल बीत जाए। वैसे तो श्रोताओं, सही समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, वरन सही समय को ढूंढना हम रहेंगे, लेकिन सही समय हमें खुद जो है ढूंढना चाहिए, इंतज़ार नहीं करना चाहिए। इसलिए थोड़ा ठहर जाए, शांति से सोचिए कि आपको जीवन में क्या चाहिए, क्या आपके लिए बेहतर है। अगर शांति से आप सोचेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ हल तो निकल ही जाएगा। अगला गाना जाएगा विशेषकर उषा ग्रीधर के नाम, जो ब्रह्मस्थान से साथ दे रही हैं। वन ऑफ द फेमस सॉन्ग जो अभी जो है वायरल हो रहा है। तो चलिए सुनते हैं घरों दा फिल्म का गाना, एक अकेला इस शहर में।

दोस्तों कहा गया है कि किसी को बड़े ध्यान से याद करना चाहिए। जी हाँ, ठीक से सुना आपने कि किसी को बड़े ध्यान से याद करना चाहिए। कहने का अर्थ है कि हम जिसको याद करते हैं उस व्यक्ति के मन की जो स्थिति होती है वो हमें प्रभावित अफेक्ट करती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बैठे बैठे आप किसी को याद कर रहे थे कि अचानक आपको चिड़चिड़ापन होने लगता है, तो ये उस व्यक्ति की स्थिति थी जिसको आप याद कर रहे थे। इसी को फ्रीक्वेंसी कनेक्शन कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बार बार जो है अच्छी बातों के बारे में सोचें, अच्छी सोच रखिए, क्योंकि जब हम अच्छी अच्छी बातें सोचेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, वही क्वालिटी, वही गुण जो है हमें भी आ जाते हैं। इसे यहाँ एक रीज़न मिल जाता है कि हमें क्यों अच्छी सोच रखनी चाहिए, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हमारे व्यवहार में आ जाते हैं। इसलिए हमें उन चीज़ों को याद रखना चाहिए जो हमें मिला है। वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टुवर्ड द यूनिवर्स जिन्होंने हमें इन सभी चीज़ों को, हमें कई चीज़ें उन्होंने दी हैं। जब हम ग्रेटफुल होंगे, पॉजिटिव होंगे, तभी तो जीवन में और बेहतरीन चीज़ें आएंगी। जी दोस्तों, हरीश जी का कहना है कि उनका दिल जो है वो एक ऐसे सोने की चिड़िया की तरह है जो सातवें आसमान पर उड़ना चाहता है। तो चलिए, आपके नाम फिल्म सातवें आसमान का गाना, विशेषकर अनु के नाम।

0: सुहाना सफर।
1: रिव्या चौहान पोसे माला जी साथ दे रही हैं और आप कहती हैं कि आज आपकी बेटी मनीषा और आपके दामाद अश्विन दोनों का जन्मदिन है। वाओ, रब ने बना दी जोड़ी, सिचुएशन हो गई है और उनके लिए आप जो है एक प्यारा गाना मांग रही हैं, फिल्म वापस का गाना, और साथ ही साथ उन दोनों का एक बेटा है सत्यम। सभी बिसेसर परिवार की ओर से उनको बधाइयाँ आप लोग दे रहे हैं। और साथ ही साथ चांदनी जी, चांदनी पुरुषम जी ब्रिटानिया से साथ दे रही हैं और आप कह रही हैं यू आर सेलिब्रेटिंग योर 20th वेडिंग एनिवर्सरी, तो जो गाना आपने मांगा है वो नहीं मिल रहा है, तो इसी गाने में मैं आपका और आपके पति प्रीतम का नाम जोड़ रही हूँ। सो आपको भी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी चांदनी जी और प्रीतम जी, तो आप दोनों के नाम भी यह गाना जाता है।

जी दोस्तों, एक आपका साथ है तो ही यह सफर सुहाना बन रहा है। और अनीता जी फी कॉम्फ्लेक्स से साथ दे रही है। आप कहती है कि आप शॉपिंग से आ गई है घर पर और हमसे बात करने का मन किया। थैंक यू इसके लिए जी। फिल्म जो है, प्यारा सा फिल्म, प्यारी सी फिल्म की मांग आपने की है। गिरफ्तार फिल्म का गाना जाएगा। पतिराज, बेटे अंकुश, अंतीश, बहुआ सीमा, मनीषा, पोती हिमेशा, धिया पोते लद्दू गोपाल के नाम, सभी लिसनर्स के नाम और पूरी रेडियो मनोरंजन की टीम के नाम जाएगा।

जी दोस्तों, वाकवा से फुलवंती जी का फोन आया था और आप कहती है कि आपके बेटे उषण का जन्मदिन था कल और साथ ही साथ आपकी शादी की सालगिरह भी थी। सो इट्स डबल सेलिब्रेशन करने का मौका है और जो है ढेर सारी बधाइयाँ आपकी ओर से। साथ ही साथ पति आपके पति है देवानंद, आपकी बेटी भावना है, तो सभी की ओर से उषण को जन्मदिन की बधाइयाँ। साथ ही साथ आप दोनों को अर्थात देवानंद जी और फुलवंती जी आपको जो है शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए फिल्म राही बदल गए का गाना आप लोगों के नाम, जस्ट एंजॉय इट।

0: ना सफर, हाँ ना सफर।
1: जी दोस्तों, फिनिक्स से रहना जी साथ दे रही हैं और आप फिल्म एक फूल चार कांति का गाना सुनना चाह रही है और बेशक यह गाना आपके सभी सखियों के नाम जाएगा, विशेषकर मलाफा सुरेखा एंड ऑल लिसनर्स। और आप कहती हैं इट्स नाइस प्रोग्राम, थैंक यू इसके लिए जी। और समय की कमी के कारण हम इसी में एक मैसेज आया है, हाय रत्ना जी, मैं रत्ना जी नहीं हूँ, अनीता जी हूँ, हमारे दोस्त कविता मोहन, रेखा, अंबिका, प्रेमिला और मालिनी के लिए अगला गाना हम बजवा रहे हैं। इसी गाने में आपका नाम जोड़ रहे हैं लेकिन आपने अपना नाम नहीं लिखा है। और इसी गाने में हम किसका नाम जोड़ेंगे, प्रकाशवती जी जो बेल्जियम से साथ दे रही है एंड आप कहती है सैटरडे ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ यू, May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace. Thank you, ji. Lekin Prakashwati ji, इसी गाने में हम आपका नाम जोड़ रहे हैं और साथ ही साथ जितने भी सुनने वाले हैं, सुदेवी जी मौका से साथ दे रही है, अगला गाना जाएगा आपके पति राज के नाम। तो चलिए एक फूल चार कांटे के गाने में ही आप सबका नाम जोड़ते हैं, सभी लिसनर्स के नाम जोड़ते हैं। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता आपसे मिलेगी अब अगले सप्ताह अर्थात अगले शनिवार को हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए साथ जरूर दीजिएगा लता जी और तलत महबूब की आवाजों में।

0: Wishing you all a very good afternoon. To check your time, it's 2 p.m. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था के साथ. आपको नमस्कार आस्था.
1: नमस्कार. 2 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. बजट 2026-2027 की तैयारी में आज पोटली में अहम बैठकें लगाई जा रही हैं. जूनियर मिनिस्टर धनेश्वर दामरी सुबह बिजनेस मर्चेंट्स उन्होंने मेक्सा और एसोसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स एवं कृषि व व्यापार सदन के प्रतिनिधियों से उन्होंने मुलाकात की, जहां बजट से जुड़े मुद्दों और सुझावों पर सीधी बातचीत हुई. साथ ही दोपहर बाद बैंकिंग, गैर बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के प्रतिनिधि अपने प्रस्ताव सरकार के सामने रख रहे हैं, ताकि आने वाले बजट में इन सुझावों को शामिल किया जा सके. हज 2026 को लेकर सऊदी अरब का बड़ा फैसला, 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वीजा रद्द. ये जानकारी रात में सामने आई. हज के जिम्मेदार मंत्री शकील मोहम्मद के अनुसार मॉरिशस में 5 किशोर इस फैसले से प्रभावित. मंत्री शकील मोहम्मद सऊदी अरब के हज मंत्रालय, डिप्टी मिनिस्टर और मॉरिशस में सऊदी राजदूत के संपर्क में, ताकि आधिकारिक स्पष्टीकरण मिले और समाधान तलाशा जा सके. अंतिम समय में लिए गए इस फैसले से प्रभावित परिवारों और आयोजकों में चिंता बनी हुई है, क्योंकि सऊदी अरब के लिए रवाना होने की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं. ये फैसला सिर्फ मॉरिशस तक सीमित नहीं बल्कि अन्य देशों पर भी लागू है. ऑटिज्म को लेकर जागरूकता बढ़ाने की पहल. ब्रांसेको मेंटल हेल्थ केयर सेंटर में इस हफ्ते विशेष कार्यक्रम, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य ऑटिज्म के लक्षणों की जल्दी पहचान पर जोर देना है. स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू ने फ्लक में एक विशेष डे केयर सेंटर खोलने की घोषणा भी की है. मध्य पूर्व संकट के बीच अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जारी. ईरान की ओर से बातचीत का प्रस्ताव सामने आया है लेकिन इसकी पुष्टि अब तक नहीं. वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बातचीत हुई है लेकिन वे संतुष्ट नहीं हैं. उन्होंने साफ किया कि या तो सख्त सैन्य कार्रवाई या फिर एक मजबूत समझौता, दोनों विकल्प मेज पर हैं. इस बीच हुर्मुज समुद्री मार्ग लगभग बंद है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है. इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर.
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: मिशन क्रॉसरोड बोनाकोई में 82 साल के 82 ईयर्स ओल्ड की राधिका नूबिन की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थी आज सुबह 3 बजे उन्हीं के मकान बोनाकोई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 3 PM. मोसेयोलिन खुदबासा कट्रोबोन में 70 साल की 70 ईयर्स ओल्ड की नारायणी बिसेसर की मृत्यु हो गई है. पैदाइश नाम बिरगुनत, लोग उन्हें मालडू के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थी आज सुबह 3 बजे उन्हीं के मकान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 3 PM. रॉयल रोड मेजिन कॉन्दमास्क में 91 साल की 91 ईयर्स ओल्ड की लकी प्रसाद च्यबों की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थी आज दिन के बल्कि सुपहर के 3 बजे उनकी पत्नी सावित्री च्यबों के मकान कॉन्दमास्क से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 3 PM. बुआशेरी रोड मुकामी 69 साल की 69 ईयर्स ओल्ड के रामदीन बच्चू की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें क्रेशन के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थी कुछ ही देर में सवा दो बजे उठाई जाएगी और उनका अंतिम संस्कार मोताई ब्लॉश की शमशान भूमि में किया जाएगा. क्रिमेशन एट 2:15 PM. शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.
2: RM2 Radio Mustang.
3: Center 95.5. North South 95.6. 95.6. East West 98.2.
4: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
5: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
6: इतिहास के झरोखों से
7: इतिहास के झरोखों से नमस्कार श्रोताओं, आपने बहुत से सुंदर सुंदर गीत सुने, तो चलिए अब जरा जिंदगी के गीतों को गुनगुना लें। मैं अलका धनपत और मेरे साथ मेरे तकनीकी सहायक यज जुड़ चुके हैं और हम कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं इतिहास के झरोखों से रेडियो मनोरंजन पर। और आपको हम अपना फ़ोन नंबर देते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 4028070 पर। तो श्रोताओं, आप जब हमारे साथ जुड़ें तो उससे पहले एक विषय की चर्चा करते हैं। अरे कल ही तो 1 मई था, 1 मई लेबर डे, श्रम दिवस, श्रमिक दिवस, कामगार दिवस। सचमुच श्रोताओं, किसी भी देश को, किसी भी जाति को, किसी भी कार्य को बनाने के लिए, खड़ा करने के लिए कामगारों की, श्रमिकों की, लेबरर्स की ज़रूरत हर समय होती है। महल खड़े हो जाते हैं लेकिन नींव की ईंट कौन खड़ी करता है, यही लोग होते हैं। और तो और श्रोताओं, याद करिए कोरोना काल को, हम घर बैठे होते थे लेकिन कुछ लोग तब भी काम कर रहे थे। वे नर्स थे, वे डॉक्टर थे, वे स्कैवेंजर्स थे, वे सब्जी वाले थे, वे किसान थे, वे सब्जी बेचने वाले थे। श्रोताओं, सभी ने जिंदगी को रुकने नहीं दिया। बीमारी आई, दिक्कतें आईं, लेकिन कोई भूखा नहीं मरा। जैसे तैसे सबको साधन उपलब्ध हुए, यहाँ तक कि रोटी देखिए, वह भी सुबह सुबह कोई तो बेकरी में बनाता था ना, और हमारे घर तक किसी भी साधन से कैसे भी पहुँचती थी, वह चाहे टेम्पो वाला था या वह बस के माध्यम से या वह गाड़ी के माध्यम से, तो पहुँची हम तक। तो श्रोताओं, यह जो सारा श्रमिक वर्ग है जिनके साथ पूरा समाज आगे बढ़ता है, चलता है, अपने जीवन को आगे ले जाता है, यह सब श्रमिक और हम सब इनको सलाम करते हैं। श्रोताओं, कल 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस था। इतिहास के पन्नों में वह दिन भी हैं जब गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे, स्लेव्स थे वे, और उनको ऐसे खरीदा बेचा जाता था जैसे कोई वस्तु होती है। एक परिवार के लोगों को अलग अलग खरीदा बेचा जाता था, महिला को अलग, उसके बच्चे को कहीं और, पति कहीं और, प्रेमी कहीं और, माता पिता कहीं और। आप सोचिए जिंदगी कितनी कठिन थी। और जो इन बातों को नहीं मानते थे उनको बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ पहनाई जाती थी। जानवरों के साथ भी ऐसा सुलूक नहीं किया जाता जैसा सुलूक मनुष्य ने अपनी ही जाति के साथ किसी समय में किया। श्रोताओं, इतना काम उनसे करवाने के बावजूद भी उनका उनकी आय कुछ भी नहीं थी, क्योंकि वे तो गुलाम थे, उन्हें काम करना ही चाहिए। काम के घंटों का तो सवाल ही नहीं था, मालिक जितना उनसे काम करवा सकता था उनसे काम करवाता था। और अधिकार, उसे तो आप सोचिए ही मत, सपने में भी वे अपने राइट्स की बात या अधिकार की बात नहीं कर सकते थे। यदि वे मुंह खोलते तो कोड़ों की बौछार थी। तो श्रोताओं, इतिहास के झरोखों में यदि हम चले जाएं, तो जब इन बातों को हम पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि बंधुआ मजदूर तक हम जानते हैं। मान लीजिए पिता कोई कर्ज नहीं चुका पाया तो उसके मरने के बाद उसके बेटे, उसकी पत्नी, उसके बच्चे सभी उस जमींदार के यहाँ बंधक हो जाते थे। बंधुआ मजदूर, अर्थात अब तुम मेरे बंधक हो, मेरे बंधन में हो, जब तक कर्जा पूरा नहीं चुकेगा तुम लोगों को मेरे यहाँ काम करना ही होगा, और कोई अधिकार नहीं। फिर बाल श्रम की बात आई, बाल मजदूर, छोटे बच्चों को इस्तेमाल करना, उनसे काम करवाना कितना गैरकानूनी है। आज हम सोचें तो लगता है कि कितना गलत काम हमने किया, मानवता हमें कभी क्षमा नहीं कर पाएगी। तो श्रोताओं, यह जो 1 मई है जिसे हर साल हम एक तरह से अपने श्रमिकों को, मजदूरों को, कामगारों को हम सलाम करते हैं और सम्मान देते हैं और इस दिन को हम मनाते हैं, और आज यह अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाता है, इसे मई दिवस भी कहा जाता है, श्रमिक दिवस कह सकते हैं, कामगार दिवस कह सकते हैं, लेबर डे कह सकते हैं, लेबर डे कह सकते हैं। वास्तव में इस दिन का क्या उद्देश्य है? क्या केवल एक छुट्टी लेना कि हमको सरकार ने एक छुट्टी दे दी, मज़ा आ गया, फर्स्ट में छुट्टी है भाई हमारी? केवल छुट्टी के लिए नहीं है, पहली मई उन सब श्रमिकों को सम्मान देने के लिए है कि जिनके कारण हमारे घर तक अन्न जल पहुंचता है। अभी देखिए, जल का एक पाइप टूट जाए, हम झट से फ़ोन करेंगे तो कौन जाके उस पाइप को जोड़ेगा? कोई बड़ा अधिकारी नहीं जाता ना, वे लोग जाते हैं जो उस पाइप को जोड़ना जानते हैं और जिनकी वहाँ ड्यूटी है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं जो 24 आवर्स ड्यूटी पर ही रहते हैं और छोटी छोटी समस्याओं को हल करते हैं, यह मई दिवस उनके सम्मान के लिए है। और जो गलतियाँ इतिहास में हमने ताकत के बल पर, पैसों के बल पर, अधिकार के बल पर, गद्दी के बल पर इन श्रमिकों के साथ अत्याचार किए, हम चाहते हैं कि आज उनको भी जीवन जीने का सही अधिकार मिल सके, उनको भी समान अधिकार मिले, वे भी काम को एक ड्यूटी की तरह करें, ना कि इसलिए करें कि उनका मालिक उनसे जितने घंटे जितने पैसे में जो करवाना चाहे करे। तो श्रोताओं, यह जो पहली मई का दिन है, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है, ये वास्तव में उनके अधिकारों की चर्चा करता है। आप सभी को आश्चर्य होगा, गुलामों के तो कोई घंटे ही नहीं थे, लेकिन चलते चलते इन श्रमिकों को कम से कम 15 घंटे काम करना होता था। जब स्लेवरी ख़त्म हो गई और ये मजदूर काम करते थे, आप सोचिए 24 घंटे में 15 घंटे काम करना ज़रूरी था। लेकिन आज जब हम मेडिकल साइंस, मनोविज्ञान के हिसाब से चर्चा करते हैं, तो एक व्यक्ति 8 घंटे से ज़्यादा जब काम करता है तो उसकी शक्ति क्षीण होती है, उसका स्वास्थ्य खराब होता है, वह मानसिक रूप से बीमार होने लगता है। इसीलिए उनके सम्मान को लेकर कि 15 घंटे काम करना, मनुष्य बैल नहीं है, मनुष्य की शक्ति एक बैल से कम होती है क्योंकि उसकी बुद्धि और विवेक भी उसके पास है। तो एक संघर्ष हुआ, इस संघर्ष के कारण अब पूरी दुनिया में किसी भी श्रमिक के जो वर्किंग आवर्स हैं वह 8 घंटे से ज़्यादा लगातार नहीं होते हैं। कभी कभी ज़रूरत है तो ओवर टाइम हो जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि इस ओवर टाइम में उसकी सहमति का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आज किसी को ओवर टाइम के लिए बिना व्यक्ति की सहमति के नहीं दे सकता है। तो 8 घंटे आपके ड्यूटी आवर्स हैं, यदि आप ओवर टाइम करना चाहते हैं तो आप उसके लिए हामी भरेंगे। लेकिन जब अत्याचार होते थे तो कौन पूछता था ओवर टाइम, आपको करना ही होगा। तो इस तरह की स्थितियों से ये श्रमिक गुजरे हैं। तो श्रोताओं, संघर्ष को सम्मान देने के लिए, अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, इसीलिए देखिए आज कितनी यूनियंस हैं उनकी, उनके जो तकलीफें हैं सब मिलके उसके लिए जब लड़ते हैं तो ज़रूर परिवर्तन होता है। 1886 फर्स्ट में 1886 को अमेरिका के शिकागो में एक ज़बरदस्त आंदोलन हुआ था। मजदूरों ने मिलकर हड़ताल कर दी थी और उन्होंने इस बात के लिए स्पष्ट कहा कि हम 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। पहले तो छुट्टी भी नहीं होती थी श्रोताओं, फिर संडे भी इसमें मिलने लगा कि एक छुट्टी ज़रूरी है, और चलते चलते बाद में तो शनिवार अब 2 दिन सप्ताह में छुट्टी मिलती है। अब देखिए, मांग के कारण, लड़ाई के कारण, संघर्ष के कारण, एकता के कारण मजदूरों की स्थितियों में परिवर्तन आने लगा, लेकिन उसके बावजूद भी समस्याएं अभी भी बहुत हैं। तो श्रोताओं,

ये जो फर्स्ट में 1886 है, सबसे पहला जो काम हुआ कि अब 8 घंटे से ज़्यादा कार्य उनको कार्यस्थान पर नहीं दिया जा सकता है। यह उनकी बहुत बड़ी जीत थी, या उनकी नहीं, मैं तो कहूँगी पूरी मानवता की जीत थी। किसी भी मनुष्य को 8 घंटे से ज़्यादा काम करवाना उसके प्रति अन्याय है, क्योंकि इससे वह बीमार होने लगता है, शरीर से भी, मस्तिष्क से भी, मन से भी। बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आजकल देखिए आप प्राइवेट कंपनीज क्या करती हैं, खूब काम कराती हैं, पैसा भी खूब देती हैं, लेकिन हर सत्र में 3 महीने में एक ऐसा गेट टुगेदर रखती हैं जिसमें उनके सभी लोग मिलकर बाहर खाते हैं, खेलते हैं, टीम बिल्डिंग करते हैं, स्विमिंग के लिए जाते हैं। तो फुल डे वे लोग उनको जैसे एक ग्रुप बनाकर एन्जॉयमेंट के लिए टाइम देते हैं। तो ऐसा क्यों दिया जाता है कि काम के भारी घंटों से थोड़ा हटकर वे लोग भी आपस में हंसें, बोलें, क्योंकि कभी कभी काम इतना होता है कि हम मुस्कुराना भी भूल जाते हैं, हम सिर उठाकर सामने वाले को समझना भी भूल जाते हैं। तो आज प्राइवेट कंपनीज देखिए लोगों से काम लेती हैं, पैसा देती हैं, लेकिन उसके बदले उनको महीने 2 महीने के बाद या 6 महीने के बाद या वर्ष में एक बार उनके लिए एक बहुत सुंदर अच्छे स्थान पर गेट टुगेदर भी रखती हैं। तो इस तरह से वे अपने कामगारों को और अधिक प्रेरणा देती हैं। तो श्रोताओं, मैं और रियाज आपके सामने गीत प्रस्तुत करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।

श्रोताओं, इतिहास के झरोखों में जब झांकते हैं तो मनुष्य की यात्रा में कभी कभी लगता है धन संपत्ति अपना ओहदा इन सब का हमने कितना मिसयूज किया, कितना ज़्यादा अत्याचार उन लोगों पर किए जिनके पास शक्ति नहीं थी, संपदा नहीं थी या जो बहुत अमीर नहीं थे। मनुष्य ने मनुष्य पर अत्याचार किए, जानवरों पर तो वह करता ही है, उसकी क्रुएलिटी सभी जानते हैं, यहाँ तक कि उसको जानवरों को खाने में भी बहुत स्वाद आता है। लेकिन मनुष्य ने मनुष्य को भी इतना दबाने की कोशिश की कि पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ वे लोग दबे रहे। श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 4028070 पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरी दुनिया में श्रमिक दिवस को मनाया जाता है। भारत में 1 मई 1923 चेन्नई में सबसे पहले लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान बनी और उन्होंने इस पार्टी के जो नेता थे चेतियार साहब, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और इस लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने किसानों के मजदूरों के हितों के लिए चर्चा की। आज दुनिया के अधिकांश क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश होता, कुछ देशों में नहीं होता है। वे लोग कहते हैं कि नहीं, फर्स्ट में भी काम का ही दिन होता है, लेकिन ज़्यादातर देश 1 मई को मजदूरों के सम्मान में एक पब्लिक हॉलीडे या सार्वजनिक अवकाश देते हैं। 80 से ज़्यादा देशों में पूरी दुनिया में श्रमिक दिवस को मनाया जाता है। इसमें श्रमिकों के अधिकार की चर्चा की जाती है, उनको वेतन उचित मिलना चाहिए, यह नहीं कि उनका काम ज़्यादा और उनको पैसा कम दिया जाए। फिर उनका कार्यस्थल सुरक्षित होना चाहिए। मान लीजिए वे माइंस में काम करते हैं तो पूरे प्रबंध होने चाहिए कि यदि कल को कहीं पर लैंडस्लाइड हो गई, आग लग गई या पानी एकदम से आ गया तो उनको कैसे बचाया जाएगा। श्रोताओं, कभी कभी आप खबरों में पढ़ते हैं ना, अभी पिछले 2 साल में ही आपने भारत में पढ़ा था कि माइंस में कुछ मजदूर फंस गए थे, सरकार ने पूरी कोशिश की थी और उनको निकाला एक चूहा स्ट्रेटजी के माध्यम से कि चूहा कैसे बिल बना के अंदर ही अंदर अपना घर बनाता है। ठीक उसी स्ट्रेटजी को अपनाते हुए नीचे से खुदाई करते हुए उन लोगों को निकाला गया था, क्योंकि अगर माइंस की तरफ से खुदाई करके जाते तो ऊपर से और पत्थर गिरने की संभावना थी, इसलिए नीचे से चूहा स्ट्रेटजी अपनाते हुए उनको बचाया गया था। तो उनका कार्यस्थल सुरक्षित होना चाहिए, फिर सामाजिक न्याय भी उनको मिलना चाहिए। जैसे सबको अधिकार मिलते हैं, मान लीजिए कुछ नुकसान हो जाए या कुछ उनको चोट पहुंच जाए तो उनको एक न्याय मिलना चाहिए, पैसा या उनके परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी, इस सब की सुविधा होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए आर्मी में जब कोई व्यक्ति की मौत कार्यक्षेत्र में हो जाती है तो उसके परिवार के सबसे बड़े सुपुत्र को कहीं नौकरी दी जाती है ताकि उस परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो सके। तो बहुत ज़रूरी है सामाजिक न्याय की व्यवस्था भी उनके लिए होनी चाहिए। और यह दिन हमको याद दिलाता है कि हम श्रमिकों को अपने पाँव के बराबर न समझें। अगर पाँव नहीं है तो हम कहीं नहीं चल के जा पाएंगे। आप मन के घोड़े कितने भी दौड़ाते रहिए लेकिन आप खुद जाकर आनंद नहीं ले सकेंगे। ठीक ऐसे ही ये श्रमिक समाज के पाँव और उसकी ताकत हैं, समाज को आगे लेकर जाते हैं, चाहे समाज का मस्तिष्क हो या कार्य करने की क्षमता हो, श्रमिक ही पहली नींव पहली ईंटों को रखते हैं और आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए यह दिन उनको एक गौरव और गरिमा प्रदान करने का है। हम कभी कभी सोचते हैं कि ये लोग क्या करते होंगे, लेकिन कोरोना ने हमें बहुत कुछ समझा दिया, बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया कोरोना ने कि इन लोगों ने हमारे जीवन को सहज बनाने के लिए जो जीवन की पहली आवश्यकताएँ हैं उनकी पूर्ति के लिए जो कार्य किया उसे हम भुला नहीं सकते हैं। यदि मान लीजिए मैं एक अध्यापक हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, मैंने ऑनलाइन छात्रों को भी जोड़ लिया, छात्रों को और मुझे यदि खाने को ना मिलता एक सप्ताह तो कितने दिन हम पढ़ पाते या पढ़ा पाते।

तो सबसे पहले, और यदि मेरा कूड़ेदान साफ ना होता 15 दिन तो कितनी बीमारियां फैल सकती थी। मैं अस्पताल पहुंचू और वहां पे नर्स और डॉक्टर ये कह देते कि नहीं नहीं हमको भी ये रोग हो सकता है, तो बताइए क्या हालत होती। तो श्रोताओं, इन लोगों ने जितने प्यार से और जितना अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा निभाई, उसे समाज हमेशा याद रखेगा। तो ये जो 1 मई है, उन सबको सलाम, धन्यवाद और उनको आदर देने का दिन है। आइए गीत सुनते हैं।

0: सचमुच इतनी सी आरजू है एक सिपाही की कि बस उसी मिट्टी में मिल जाना चाहता है। श्रोताओं, इससे बड़ा और बलिदान क्या हो सकता है। एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, यज मुझे संकेत कर रहे हैं, हम उनको लेते हैं। हेलो
1: जी, मैं कटे से आशा जाने बोल रही हूँ।
0: हाँ नमस्ते आशा जी, कैसे हो आप?
1: मैं अच्छी हूँ जी। और आप?
0: फर्स्ट क्लास, सुनाइए
1: जी। तो सबसे पहले तो मेहनत की जय बोलती हूँ।
0: सचमुच मेहनत जिंदगी में बहुत जरूरी है
1: जी। और दो शब्द ये कहती हूँ कि मेहनत के दम पे टिका हुआ है यह संसार, बिना किए मेहनत जीवन है बेकार। किस्मत का मोती चमकाती है माथे का पसीना, किस्मत का मोती चमकाती है माथे का पसीना, मेहनत की सदा करो जयकार, मेहनत की सदा करो जयकार।
0: बहुत सुंदर आशा जी, बहुत सुंदर।
1: एक बात ये भी कहना चाहती हूँ बहन जी, जरा सोचिए अगर किसान मिट्टी में बीज नहीं बोता तो घर में सब्जी कहाँ से आती, अन्न कहाँ से मिलता।
0: बिल्कुल।
1: अगर मजदूर काम नहीं करता तो बड़े बड़े शहर में घर,
0: ये सड़कें, ये स्कूल, ये ऑफिस कैसे बनते,
1: कैसे बनते। अध्यापक मेहनत नहीं करते तो बच्चे कैसे
0: बनते
1: होते।
0: बिल्कुल।
1: और डॉक्टर इलाज नहीं करता तो जिंदगी कैसे बचती, जीवन कहाँ से मिलता।
0: बहुत सुंदर।
1: और सबसे बड़ी बात तो ये, अगर रसोई में माँ मेहनत से खाना न बनाए तो पेट भी नहीं भरेगा,
0: पेट भी नहीं भरेगा, स्वास्थ्य भी नहीं बचेगा, दोनों ही बातें होंगी।
1: तो कोई भी काम,
0: सभी माओं को भी, वैसे माओं को तो डबल सलाम होना चाहिए क्योंकि उनकी ना कोई तनख्वाह, ना कोई छुट्टी, कोई छुट्टी नहीं है, वो तो मंडे टू संडे बेचारी तीनों टाइम खाना बना रही है।
1: और अगर हॉलीडे भी होता है
0: तो ज्यादा खाना बनाती है, वो ज्यादा पकाती है बेचारी, क्योंकि कोई बच्चा कहता है आज छुट्टी है मैं तो आज नूडल्स खाऊंगा, कोई कहता है आज बिरयानी खानी है, कोई कहता है पूरी खानी है, कोई कहता है कि मुझे सूप पीना है, तो बेचारी माँ सब इच्छाएं पूरी करती है,
1: है।
0: सचमुच तो बहुत सुंदर।
1: अगर माँ भी अगर माँ भी मेहनत नहीं करेगी तो जानकी घर नहीं चलेगी। तो इसे कहती हूँ ना बहन जी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी काम करने में शर्म भी नहीं करनी चाहिए, न नजरें झुकानी चाहिए न कुछ, क्योंकि छोटा काम करके ही हम बड़ा काम कर पाते हैं। अगर जीवन में छोटे काम को हम महत्व नहीं देंगे तो हम बड़ा काम कभी नहीं कर पाएंगे।
0: बिल्कुल ठीक कह रही है। बहुत धन्यवाद आशा जी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपनी कविता भी शेयर की, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने माओ की मेहनत को इसके साथ जोड़ दिया। सचमुच उनकी तो कहीं छुट्टी होती ही नहीं है। सभी माओ को बहुत बहुत आदर और प्रणाम, बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, आशा जी ने बहुत ही प्यारी बात कही कि सचमुच वैसे तो पहली में मजदूर दिवस एक तरह से उनको सम्मान देने के लिए है, लेकिन कभी कभी हम गृहिणी को सम्मान देना भूल जाते हैं, और कुछ पुरुष तो दे भी नहीं पाते, कुछ बच्चे भी आजकल ऐसे हो गए हैं, उनको लगता है कि माँ को कुछ नहीं आता है, लेकिन वे नहीं जानते कि इतने बड़े जो हुए हैं वे माँ के ही पालन पोषण से हुए हैं। यदि माँ ने बैठ के दूध ना पिलाया होता, जब आप खाने लगे तो आपको खिचड़ी ना खिलाई होती, तो कैसे आप इतने बड़े हो गए होते। आज बाहर की चीज़ों के स्वाद के कारण आप उस रसोई को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। खैर, बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, जो शिकागो में आंदोलन हुआ था ना, उसको हे मार्केट अफेयर कहा जाता था, और ये आंदोलन बहुत ही ज़बरदस्त हो गया था। इसको दबाने की कोशिश की गई, लेकिन इस आंदोलन में हिंसा शुरू हो गई। जब हिंसा शुरू हो गई तो दुनिया के लोगों का ध्यान, अमेरिका का ध्यान इसकी तरफ बहुत जाने लगा। जैसे आपको याद है बांग्लादेश में छात्रों ने किया, तो पूरी दुनिया का ध्यान उधर जाने लगा कि जेंजी क्यों आंदोलन कर रहा है। ठीक ऐसे ही यह जो हे मार्केट अफेयर जो आंदोलन हुआ कि काम के घंटे 15 से 8 घंटे किए जाए, पूरी दुनिया का इस तरफ ध्यान गया, और अंत में 1889 में या 1899 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन ने 1 मई को मजदूर दिवस बना दिया गया, और निश्चित किया गया कि अब किसी को 8 घंटे से ज़्यादा काम, किसी मजदूर को फैक्ट्री में, कारखाने में, घर में, किसानी में, अपनी इच्छा से कोई करता है तो उसका खेत है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। हम सभी जानते हैं हमारा शरीर एक सीमा के बाद

दिखने लगता है, उसको एक आराम चाहिए, उसको एक भोजन चाहिए, उसको एक ब्रेक चाहिए। देखिए, स्कूल में, कॉलेज में, फैक्ट्री में, कारखानों में बीच में एक ब्रेक होता है। उस समय व्यक्ति अपने मित्रों से मिलता है, रिलैक्स होकर बैठता है, थोड़ा खाना खाता है, थोड़ा हंसता है, मजाक करता है, तो फिर से जैसे बूस्ट हो जाता है, फिर से उसे एनर्जी मिल जाती है। तो इस प्रकार से यह ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है। हम एक मशीन को भी लगातार यदि काम लेने लग जाएं तो उसका इंजन गर्म हो जाता है और मशीन ख़राब हो सकती है, तो हमें उसे भी बीच में थोड़ा बंद करना पड़ता है। ठीक ऐसे हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह है, उसे बीच में एक ब्रेक देना बहुत ज़रूरी होता है। तो श्रोताओं, इंटरनेशनल लेबर डे 2026, या जिसे हम कह सकते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, वह हर साल अपना एक थीम देती है। तो इस साल का भी एक थीम है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल लेबर डे 2026 के लिए एक बड़ा ही प्यारा सा थीम दिया है, एंश्योरिंग अ हेल्थ साइको सोशल वर्किंग एनवायरनमेंट। मतलब केवल शरीर की हेल्थ नहीं, आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी देखना होगा। मतलब कार्यस्थल पर अब की साल में किस बात को लेकर श्रमिकों पर फोकस किया जाएगा कि वे जहां काम करते हैं वहां पर मानसिक तनाव और बर्न आउट, इस सब को देखना चाहिए कि कहीं श्रमिकों के ऊपर मेंटल हेल्थ पर तो कहीं इफेक्ट नहीं हो रहा है, कहीं बर्न आउट तो नहीं हो रहा है। ये सब देखना पड़ेगा और देखना ज़रूरी है उनके अधिकारों के साथ, उनके कार्य के घंटों के साथ, और उसके साथ जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन पर भी अब की बार विशेष ध्यान दिया जाएगा कि अपने काम के स्थान पर ये श्रमिक किस तरह की मेंटल हेल्थ से गुजरते हैं। इसमें बहुत सारी बातें होती हैं, कभी बॉस का दबाव है, तो कभी कभी आजकल आपको पता है क्योंकि हमारे वर्क प्लेस पर टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो कभी कभी जो लेबरर है, जो मजदूर है, जो श्रमिक है, वो टेक्निकल चीज़ों को जल्दी समझ नहीं पा रहा है, तो उसकी टेंशन बढ़ रही है। ऐसे में उन लेबरर्स की स्किल को बढ़ाने के लिए क्या उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या उनको सिखाया जा रहा है, या केवल उनसे कहा जा रहा है कि बस तुम अपने आप सीखो और करो। तो ये सारी चीज़ें अब सवाल बनकर खड़ी हो रही हैं। और वर्क लाइफ बैलेंस, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा कि जो वर्क लाइफ है उनकी, उसका अंततः क्या लाभ और हानि इन मजदूरों को हो रही है। मतलब केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं कि आपने उनको ग्लव्स दे दिए, आपने उनको जूते दे दिए, आपने उनको हेलमेट दे दिया, इतना ही नहीं, उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर भी सोचना होगा जो भी ओनर हैं। तो अब थोड़ा सा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक कदम आगे बढ़ रहा है। ठीक है, हम उन्हें साधन दे रहे हैं, कन्वेंस दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर हम क्या कर रहे हैं? क्या कुछ सेशंस हम लगाते हैं उनके साथ? क्या उनको कुछ समय देते हैं चिंतन का? क्या उनके परिवार की, उनके जीवन की प्रॉब्लम्स को सुनने का प्रबंध करते हैं, या केवल उनसे काम ही काम करवाते हैं? तो अब थोड़ा सा यह जो ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था ना, उसको लेकर काफ़ी इस पर विचार विमर्श हो रहा है। तो चलिए श्रोताओं, एक गीत सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

श्रोताओं, पहली मई का दिन वास्तव में कोई त्योहार या उत्सव की बात नहीं है, यह एक सामाजिक संदेश का दिन है। इसीलिए इस दिन देखिए आप, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो रैलियां निकालती हैं, अपने फंक्शन करती हैं, या किसी को बैज देती हैं, कुछ देती हैं। मतलब ये एक सामाजिक संदेश है कि हम आपके किए के प्रति ऋणी हैं। आप इस समाज के निर्माता हैं, आप इस समाज को बनाते हैं, क्योंकि श्रमिकों के योगदान को यदि हम सम्मान नहीं देंगे श्रोताओं, तो हम समाज को कैसे आगे ले जा सकेंगे। जो समाज कृतज्ञ नहीं है, जो समाज काम करने वाले के प्रति विनम्र नहीं है, वह अपनी अकड़ में, अपने अहंकार में क्या जतलाना चाहता है। एक मिनट को सोचिए, आपके पास पैसा हो, घर हो, सब कुछ हो, यदि आपके व्यवहार के कारण कोई आपके पास टिके ही ना, कोई आपका सिक्योरिटी गार्ड नहीं बनना चाहता, कोई आपके खेत में काम ना करना चाहे, कोई आपके घर में ना करना चाहे काम, तो आप कितने दिन तक अपने पैसे को खाएंगे या अपने पैसे से काम चलाएंगे। मतलब आपको व्यक्तियों की आवश्यकता है, आपने पैसा कमाया, आपकी बुद्धि तीव्र थी, आप कर पाए। लेकिन जो लोग समाज को देखते हैं, पूरे समाज के पहिए को चलाते हैं, पहिए की एक एक तीली हैं, उनका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। तो पहली मई श्रमिकों के योगदान को सम्मान देने के लिए है, और दूसरा, उनको वेतन की सुरक्षा होनी चाहिए। यह नहीं कि उनका वेतन कभी हम देर से दें, कभी जल्दी दें, उनको उनका हक ज़रूर देना चाहिए। और अधिकारों की चर्चा होनी चाहिए कि उनको भी, यदि वे कार्यस्थल पर बीमार होते हैं तो अस्पताल जाने की, या उनको कितनी मेडिकल सुविधा मिल सकती है, मतलब क्या उनके अधिकार हैं, इसकी जानकारी हमें उन्हें खुले तौर पर देनी चाहिए। कभी कभी कुछ संस्थाएं, कुछ फैक्ट्रीज उनके अधिकारों की बात को छिपाती हैं, लेकिन ये छिपाने वाली बात नहीं है। इसीलिए फिर यूनियंस बनती हैं और यूनियंस खुल कर बात करती हैं, इसीलिए रैलियाँ निकाली जाती हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, और बहुत से ट्रेड यूनियंस के जो नेता होते हैं, जो उनके जिसे लीडर कहते हैं, वे लोग भाषण देते हैं, समस्याओं की बात करते हैं। जैसे मॉरिशस में देखिए, चाय और कॉफ़ी की खेती होती है, मॉरिशस में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मॉरिशस में टूरिज्म इंडस्ट्री है, सी बीच सब है। तो इन सब चीज़ों की अपनी अपनी यूनियंस हैं, जो अपने हकों की बात खुलकर चर्चा करते हैं। यदि किसी का कहीं किसी कोने में शोषण हो रहा है, तो उसे सरकार तक लेकर आते हैं, सरकार ताकि एक्शन ले सके। तो जागरूक करते हैं उन लोगों को कि तुम लोग काम करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे कुछ अधिकार भी हैं, अपना शोषण मत होने दो। लेकिन कभी कभी कुछ लोग अधिकारों के नाम पर गलत व्यवहार भी कर बैठते हैं, उसका हम सबको ध्यान रखना चाहिए। जहाँ एक और जागरूकता अभियान चलाया जाता है, वहीं पर बहुत सारी ट्रेड यूनियंस या बहुत से संस्थाएं या बहुत से ऑफिस के बॉस या बहुत सी मैनेजमेंट, वे सब सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी उनके लिए आयोजन करते हैं, और इस आयोजन में उनके बच्चों को, परिवार को बुलाया जाता है, और एक मेले की तरह से उनको अपनेपन की अनुभूति होती है, और वहाँ के कॉम्पिटिशन्स में उनके बच्चे, उनकी पत्नियाँ सब भाग लेते हैं, तो एक अलग तरह का हल्का फुल्का वातावरण तैयार होता है, जो एक अच्छे समाज की निशानी है। आज जो समस्याएं हैं, जो मई का महीना है, मजदूर दिवस को लेकर, समस्याओं को लेकर, उसमें सबसे बड़ी समस्या माइग्रेंट्स की है, अप्रवासी लोगों की है, जो बिना कागज़ पूरा किए, बिना शर्तों को देखे, दूसरे देशों में कभी चुपके से नाव द्वारा, तो कभी डोंकी वे द्वारा पहुँचने का प्रयास करते हैं, और इनकी समस्याएँ फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कभी कभी पूरे कागजों के बावजूद भी जब वे एक्स वाई जेड देश में पहुंचते हैं, तो उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता है। तो आजकल इस समस्या को भी श्रमिक दिवस के अंतर्गत लिया जा रहा है। फिर घरेलू कामगार, अब जो व्यक्ति घर में काम करता है, आपके झाड़ू पोछा, बर्तन या बच्चे को देखना, बेबी सीटर, गॉड मालाद, ऐसे लोगों की भी अभी यूनियंस नहीं है, और इनकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, कितना इनको देना चाहिए, कितने घंटे काम, कहीं कहीं पर उनका शोषण होता है, विशेष रूप से घरेलू नौकर के रूप में। तो ये शोषण जो है, वो किसको जाकर वे बोले। तो अब
श्रमिक दिवस के ऊपर इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, अब उनका कॉन्ट्रैक्ट का एक पेपर है, उनको रखा गया है, आपने 6 महीने 2 साल 4 साल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ तोड़ के उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया, उनसे काम कराते हैं, और जब परमानेंट रखने की बारी आती है तो हम किसी थर्ड पर्सन को रख देते हैं। तो भाई अगर एक व्यक्ति नहीं अच्छा था तो हम कॉन्ट्रैक्ट क्यों रिन्यू कर रहे थे? 6-6 साल तक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, और जब परमानेंट जॉब होती है तो किसी और को उस समय मिल जाती है। तो इन सब बातों को लेकर भी श्रमिक दिवस के साथ इसको जोड़ा जा रहा है कि ये जो 3 तरह की समस्याएं हैं माइग्रेंट्स की हैं, कि उनका शोषण होता है, वे उस देश की भाषा नहीं जानते, उस देश की संस्कृति नहीं जानते हैं, कभी कभी तो उनका पासपोर्ट तक लोग छुपा लेते हैं ताकि वे जा ना सके। आप सोचिए कितना बड़ा अत्याचार है। एक आदमी की मर्जी, वह जाना चाहता है तो लौटेगा, लेकिन आप मालिक होकर उसका पासपोर्ट छुपा ले, और फिर यदि मान लो एक्सीडेंट हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसी समय सारी सुविधाएं ओनर को देनी होती हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। तो कभी कभी वे लोग देर करते हैं, बहाने करते हैं, घरेलू कामगार हैं, उनके आवर्स कितने होने चाहिए, उनको समय पर पैसे ठीक से नहीं देते हैं, उनको बोनस नहीं देते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के साथ भी इसी तरह की समस्याएं हैं कि छुट्टी कितनी मिलेगी, सिक लीव कितनी मिलेगी उनको, क्या कभी परमानेंट नौकरी मिलेगी, या हर साल उनको 10 महीने 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट देते जाएंगे। ये सारी समस्याएं व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व नहीं ला पाती हैं। अब एक आदमी कॉन्ट्रैक्ट पर जिएगा तो कब घर बनाएगा, कब शादी करेगा, कब परिवार खड़ा करेगा? तो ये सारी समस्याएं जो हैं वो आज श्रमिक दिवस पर सोची जा रही हैं। देशों में कोड ऑफ वेजेस बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो, वे काम करें, उनको ड्रेस ठीक मिले, उनको जूते ठीक मिले, ग्लव्स मिले, हेलमेट मिले, जो जहाँ काम करता है वहाँ जिस चीज़ की सुविधा या जो आवश्यकता है वो उनको मिल सके, किसी से ज़बरदस्ती काम ना करवाया जाए, यहाँ तक कि बच्चों से किसी भी तरह का श्रम ना करवाया जाए। कम से कम 14 से 18 साल तक, मतलब लगभग 18 साल तक, जब तक वे बालिग नहीं हो जाते, उनको पढ़ाई का अधिकार मिलना चाहिए, उनको स्कूल जाना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, उनको खेलना चाहिए, उनको परिवार में हंसना चाहिए, यह उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वास्तव में गुलामी, बंधुआ मजदूर, बाल श्रम, ये तो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी समस्याएं खड़ी हैं। इसीलिए यूनियंस उन समस्याओं के लिए आज भी लड़ती हैं, क्योंकि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। काम और उचित वेतन का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का है। और आज जो श्रमिकों के सामने एक और समस्या खड़ी हो रही है वह है नई तकनीक और AI की। अब इसको लेकर श्रमिक मंडल या ट्रेड यूनियंस कैसे सोचेंगी, कैसे करेंगे, या हम अपने श्रमिकों को कितना स्किल दे सकेंगे, कितना ट्रेनिंग दे सकेंगे ताकि वे अपने कार्य को और अधिक अच्छी तरह से कर सकें। और अब तो जगह जगह पर रोबोट की भी बात हो रही है, तो अभी तो रोबोट भी आने वाले हैं, उस समय श्रम की परिस्थितियाँ, श्रम दिवस की चीज़ें और बदलेंगी। तो श्रोताओं, वक्त बदल रहा है, लेकिन इस चाहे कितना बदल जाए, चाहे कितने रोबोट्स आ जाएं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, जो श्रमिक का महत्व है उसे कोई नहीं भुला सकता। उनके सहारे ये समाज, देश, लोग सब प्रगति करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे बच्चे हों या हम हों या हमारे माता पिता हों, जो भी इस देश से हम इतनी सुविधाएं प्राप्त

करते हैं, चाहे हम टैक्स देते हों, लेकिन जो मानव श्रम है, श्रमिक जो है, हमें उनको सदैव धन्यवाद देना चाहिए और उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। आप सभी को श्रमिक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मुझे और यज को अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ संध्या।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: ठीक 3 बजे हैं। सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था के साथ। आपको नमस्कार आस्था।
4: नमस्कार। 3 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। बजट 2026-2027 की तैयारी में आज पोटली में अहम बैठकें लगाई गई। जूनियर वित्त मंत्री धनेश्वर दामरी सुबह बिजनेस मर्चेंट्स मेक्सा एसोसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स और कृषि व व्यापार सदन के प्रतिनिधियों से उन्होंने मुलाकात की, जहां बजट से जुड़े मुद्दों और सुझावों पर सीधी बातचीत हुई। साथ ही दोपहर बाद बैंकिंग, गैर बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के प्रतिनिधि अपने प्रस्ताव सरकार के सामने उन्होंने रखा, ताकि आने वाले बजट में इन सुझावों को शामिल किया जा सके। हज 2026 को लेकर सऊदी अरब का बड़ा फैसला सामने आया है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वीजा रद्द, ये जानकारी रात में सामने आई। हज के जिम्मेदार शकील मोहम्मद के अनुसार मॉरिशस में 5 किशोर इस फैसले से प्रभावित हैं। मंत्री शकील मोहम्मद सऊदी अरब के हज मंत्रालय, डिप्टी मिनिस्टर और मॉरिशस में सऊदी राजदूत के संपर्क में हैं, ताकि आधिकारिक स्पष्टीकरण मिले और समाधान तलाशा जा सके। अंतिम समय में लिए गए इस फैसले से प्रभावित परिवारों और आयोजकों में चिंता बनी हुई है, क्योंकि सऊदी अरब के लिए रवाना होने की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। ये फैसला सिर्फ मॉरिशस तक सीमित नहीं बल्कि अन्य देशों पर भी लागू है। ऑटिज्म को लेकर जागरूकता बढ़ाने की पहल, ब्रांसिक्वा मेंटल हेल्थ केयर सेंटर में इस हफ्ते विशेष कार्यक्रम। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य ऑटिज्म के लक्षणों की जल्दी पहचान

0: वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: कालीमाई रोड लाहौजा न्यू ग्रोव में 89 ईयर्स ओल्ड की सावित्री सिन्हान की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम चितामन, लोग उन्हें सुशील के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल सुबह के 10 बजे उन्हीं के मकान न्यूकोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मौदालबिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: नमस्कार। आज की चर्चा कार्यक्रम में मैं किरण आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की चर्चा आज आधारित रहेगा श्रम दिवस पर। कल 1 मई को दुनिया भर ने श्रम दिवस फेजुथावाई लेबर डे मनाया। लेकिन इसके पीछे क्या संघर्ष रहा है, श्रम दिवस का अर्थ क्या है और मॉरिशस में श्रम दिवस को मनाने की प्रथा कब से शुरू हुई, मॉरिशस में श्रमिकों ने उनके साथ साथ मजदूर वर्ग ने किस तरह से इस देश का निर्माण किया है, किस तरह से उन्होंने कार्य किया है, किन परिस्थितियों में उन्होंने मजदूरी की है, इन सभी बातों पर आज हम ध्यान देंगे। और आज के इस कार्यक्रम में हमने के दूगो खास मेहमान हवन जा। एक तो हवन आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड, मतलब कि आप्रवासी घाट वर्ल्ड हेरिटेज साइट के जिन संचालन करेला उनकर चेयरमैन श्री सुखेंद्र रामदास जी। नमस्ते सुखेंद्र रामदास जी।
1: नमस्ते किरण जी।
0: और साथ में श्रमिक वर्ग मजदूर वर्ग के एगो प्रतिनिधि श्री तहल रामदीन जी। चाचा जी नमस्ते।
2: नमस्ते जी।
0: आज के हमने के ये दोनों मेहमान हमने के श्रम दिवस के से जुड़ल जो बात बा, कैसे मजदूर वर्ग इस देश में काम कर ले हवन जा, काहे जरूरत पड़ल एगो आम छुट्टी के दिन हमने के देश में भी, छोटा देश टापू देश रहल, एगो कॉलोनियल देश रहल, हैजा भी काहे हमने श्रम दिवस मनावे के शुरू कर ली जा, एकर पीछे कौन कौन संघर्ष चलल, ऐसने नहीं मिलल रहल इस दिन हमने के छुट्टी के दिन, तो इस सब पर बातचीत करब जा। सबसे पहले तो सुखेंद्र रामदास जी आपके बहुत बहुत स्वागत बा आज के इस मंच पर और आपके उपस्थिति खातिर बहुत धन्यवाद। हमने के देश में आप्रवासी घाट ट्रस्ट वन एगो ऐसा जगह है जहाँ पर मजदूर वर्ग के जब बात करते हैं जा तो हुए से गुजर के वो लोग मॉरिशस ऐलन जा, और आप्रवासी घाट में जब मजदूर वर्ग लोग ऐलन जा तो ये लोग पहला काम करवा लोग रहन जा, जिन लोग के अब पगार देवल जाए, ये लोग से आगे हमने के देश में दास लोग रहन जा, गुलाम बनावल लोग रहन जा, जे लोग मुख्यतः अफ्रीकी मूल से रहन जा। और उकर बाद जब हमने के देश में श्रमिक वर्ग जब मजदूर वर्ग स्थापित होल तो वो लोग मुख्य रूप से भारत से रहन जा, और ये लोग जब काम करे के शुरू कर लन जा तो ये लोग में और दास लोग में बहुत अंतर नहीं रहल। वो लोग के संगे जो वो लोग के मालिक हवन सब शक्कर कोठी मालिक, शक्कर प्रतिष्ठान मालिक कौन सुखिए जो बाओं लोग रहन जा, रातों रात ये लोग के बर्ताव नहीं सकत बदले। आज वो लोग गुलाम संगे काम करत हवन जा, रातों रात काल से अब शर्तबन मजदूर गिरमिटिया मजदूर लोग आके काम करे के शुरू कर लन जा, तो उ लोग के बर्ताव लगभग वैसे ही रहल, उ लोग संगे खाली थोड़ा पगार उ लोग के मिलत रहल, मतलब कि काम करके जो कोजिशों शर्त रहल बहुत कठिन रहल, बल्कि शर्त ही नहीं रहल, उ लोग गुलाम जैसन काम कर लन सा। फिर बहुत लंबा संघर्ष के बाद 1834 में ये मजदूर लोग ऐलन जा मॉरिशस में, 1936-38 में जाके श्रम दिवस मनावल गल पहला हला 100 बरिस बाद। तो ये दिवस के आज हमने के देश में कौन अर्थ बा, काल भव्य रूप से ये देश में ये दिन मनावल गल, सब कोई शुभकामना प्रकट करलक सब कोई के मजदूर दिवस के शुभकामना, थोड़ा ये दिन के जो अर्थ बा ओकर पर हम

0: के बोला।
1: किरण जी, जैसे आप बोला हमने के पूर्वज लोग जब आ रहे जा भारत से तो अप्रवासी घाट पर उतर लंजा और उस समय बहुत कठिनाई रहा जौन स्थिति से आ रहा लंजा जौन स्थिति में लोग रह रहा लंजा तो एक पाछे बहुत कठिनाई बहुत दुख भरी बात रहा
0: जी।
1: और जैसे बनीला जा कि जिस हिसाब से थोचित में बहुत
0: संघर्ष के बाद
1: बहुत संघर्ष के बाद सौ दिवस में पहला हाल एगो जुटाव लग रहा आई तो
0: मजदूर लोग के सम्मान में
1: जैसे तू ही बोला कि बाँव सुखिए कोलों बोले तनी सा उल्ली पोक में तो लोग बहुत दुमिनय कर रहा हर
0: कहे कि उन्होंने तो गुलाम संगे काम कर ले हमन सा
1: एग्जैक्टली हाँ तो मोरिस किरे रहल ग्यूरोजमेंट अंकेचिल पंडित सहदेव साथ साथ हमने के जोन फजब नेशन बोली ला जा शशि सौगाराम गुलाम तो वो लोग एगो एगो जुटाव लगेलन जा और वहाँ पर जितना हमने के देश के कम करवा रहल सब लोग वहाँ अलन जा और एगो मिसाज पास करलन जा जोन मिसाज पास हो रहल कि चाहेला हमने के संगठन से रहे के
0: एकजुट होके रहे
1: एकजुट के रहे के
0: एकता के साथ
1: जब एकजुट के रह सा एकता के साथ रह सा तब ओके जैसे बोलीला जा लीडियो
0: एकता में शक्ति है
1: एकता में शक्ति है तो जब एकता में शक्ति है तो उसे सकब जा हमनी हाउ जोन भाव सुखिए बतनी सा ओकर फास करी
0: ओकर सामना करी
1: तो जब सामना होल तब जाके लिपोमी में कि एगो पब्लिक हॉलीडे जैसे बोलीला सा दिखते होल
0: जी हाँ
1: तो लिपोमी में जोन है हमने के चाहेला श्रद्धांजलि अर्पण करके हमने के जितना कम करवा मजदूर लोग है बहुत देखो बड़ा दिन है जितना आदमी के नाम लेनी बहुत बड़ा काम करल जा मजदूर लोग खातिर बस कि है लिपोमी में जो है हाउ लिपोक में कोंजे नहीं रहल जैसे अभी कोंजे है
0: लोग के सातों दिन काम करते
1: सातों दिन रात आठ घंटा काम जैसे हो भी बोला सबसे खुश नहीं रहा हाउ लिपोक
0: तो सूरज उगे से आगे काम शुरू हो तो सूरज ढलला
1: के बाद तब लोग घर जाइए जा तो है कठिनाई से और मजदूर लोग आके काम कर ले जा और आज हम के देश इस स्थिति में बाटे
0: जरूर
1: तो हम तो बोलो कि बहुत बहुत धन्यवाद है जितना जितना बड़ा बड़ा आदमी लोग है जो डिसीजन ले जा तो हमने के जितना थावाई लोग बाटे मजदूर लोग बाटे वो लोग खातिर नहीं आके कर लन जा
0: जरूर। और अभी श्री सुखेंद्र रामदास जी हमने के बोलन कि कैसे हमने के देश में मजदूर वर्ग के इंसाफ दिलावे खातिर बड़ा बड़ा हस्ती लोग बल्कि आम हस्ती लोग रलन जा जे लोग सामने अलन जा इ लोग खातिर लड़लन जा और आज हमने खातिर बड़ा हस्ती होवन जा कहे कि एगो बहुत बड़ा संघर्ष लालित जेके बोली ला जा वो लोग अनलन जा और आज हमने संगे मजदूर वर्ग के एगो नेता होवन मजदूर वर्ग के एगो बुजुर्ग होवन जे हमने के उ बखत के अपन खुद के अनुभव सुनयन कि काम कैसे होवत रहल आगे जब काम करे चाहबा तो कौन नियम रहल कब सकबा काम शुरू करे कौन उम्र से सकबा काम शुरू करे आज हमने के कितने ऐसन रेगुलेशंस बा ऐसन कानून बा ऐसन मंत्रालय बा जोन इस सब बात पर नियम लगेले हवन सा। लेकिन चाचा जी नमस्ते।
2: नमस्ते जी।
0: आज हमने के बोला कि तू जब काम करे के शुरू करला तो कौन उम्र से शुरू करला उ बखत काम करे के कौन उम्र रहल और काम कैसे होवत रहल थोड़ा हम जाने चाहब जा।
2: बहुत ठीक। सबसे पहले श्रोता लोग के हम नमन करत हैं और आपको भी आभार प्रकट करते हैं कि हम किस जुनबा अपन प्रोग्राम में आए के आमंत्रित कर दा। तो सबसे पहले हम जुनबा हमने के जौन पुरखन लोग हजारन सब में बहुत मेहनत तो लोग करलन सा और जितना कामगार लोग हैजा पर मोरिस के उत्थान के लिए आगे विकास के लिए आगे बढ़ाए खातिर मेहनत करलन सा सबके

0: प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे जीवन में माने जाए हम लगभग 12 बरिस से लाबुरेर काम करके शुरू सीजीएम पास होली तो आ डिब्बे लेके, लेकिन हमारे बाप कॉलेज नहीं भेज लग हमके सतान्द्रे तब इसमें में भेज दिलक हो जाओ कॉलेज में।
1: चाचा जी अभी थोड़ा कौन उम्र हो बा
0: अब का तो हुआ थोड़ा
1: और जब बात करा था सीजीएम की तो कौन उम्र के कौन
0: बरिस के मिलने सा सेकंसिस में पास हो रही मिलने सा सेकंसिस से काम में हिल गई हो जा सतान्द्रे
1: कौन उम्र है बोल
0: ला 12 बरिस के।
1: अच्छा
0: तो हाउ वक्त अभी जन ऐसी सुप्रमा से लोलोबा हौजा पर मिशियालय के लाखों रहल और भीतरवा में एगो बीरो रहल। हाँ एगो बीरो रहल तब बीरोवा हौजा मिशियालय लापे ही करे तो हौजे लाहो में बंजर जमीन पड़ रहल तो हौवे में सैदा जुड़वा कोड़ा तहल तो हमारे बाप दादल का काम करे के हौजा तो वो वक्त कौन काम करे हम हेल्ली जनरल जब सैदा कोड़ा ला तो जौन मरद रहला जोम वो फुर्सत मारेला फुर्सत मार के मठिया नरम कर दे तो मदाम लोग वो लोग हाउ मठिया के घींच के जितना बुचिया रही सैदा के तो वो लोग निकाल निकाल आगे फेंक ले जान सा।
1: अब हमें के समझावा सैदा का हाथ ढेर क्यों नहीं जाने
0: गाजों गाजों सैदा जो बा गाजों के बोया तो वो बुचिया हो लोग बुचिया तो जितना बुचिया हुआ मिली वो लोग के तो लोग आगे फेंक ले जियन सा। तब आगे जब फेंक ले जियन सा तो अब एक जना को मजिर हाउ सब बुचिया हुआ उठा के वो एक जगह रखी तो हाउ वो कमवा के बोले था काम लेगा के काम तो हवे लेरा के काम हम करते थे हम एगो गुनी में हाउ बुचियावन उठा के ले जाके दूर फेंकी। अब जैसे जैसे वो लोग फेंक ले जैसे हम रमास के हो गए थे तो हाइये हमारे काम रहा तब बाद में अब जब तनी हेथी होली तब हम रोज सैदा कोड़े के अब डाल दिलन सब पियूस से अब हमू लगली कोड़े तब बुचिया कोड़ा फेंका हेथी कर लेकिन वो बखत और परिस्थिति जो रहा एकदम दयनीय रहा जाने ला उस सैदा जब कोड़ दिला तो मान ले जाए 2 बजे काम समाप्त होल तो मान ले जाए अब सदार खड़ा होके अब ऐसे के गोद्रे कोड़ाई जेकर पौची में जे गो बुचिया मिल गल तो मारू होगल।
1: मारू होगल मतलब उस दिन के पगार नहीं
0: मिली, मिली मारू होगल
1: दिन भर जो काम कर लो पानी
0: मारू होगल ऐसा पोजिशन रहल तैसन परिस्थिति में जब काम गए तब बहुत सावधानी से पर हमने के काम करे के भर सक बचाए के जमे एगो जैसे मटिया खींचला तब मान ले जाए बुचियावाल तो ओके हाथ से थे करके बस आगे फेंक दो ऐसे ऐसे करके कर ले गई सा। तो उ बखत हम के हमार लापे रहल एन 60 जूने
1: एन
0: 60 एन 60 एन रूपी 60 हाँ एन रूपी 60 सब एजा ने रूपी 60 हमारे एक समय के लापे होता बीरो में पे करी मिशियाल है तो जाके पैसा लेके घर जा। अब तनि सुन होशियार हो ली और मैडम लोग के पे होता देजिस
1: जोम के पे
0: हाँ देवपी जीस और जोम लोग के थोड़ा रूपी सैकौत वो लोग के जूने रहू बखत तो काम करत करत करत करत अब जब तनि होशियार हो गई सा तो अब हमनी के जूने मौते होल हमनी के जूने होल दे सोसानदूज दे ओपी सोसानदूज अब हमनी के लापे ही मिले लगल काम करे अब सैदा नहीं प्लौताशियों भी करी सा कान रोपाई लेकिन छिट के जोन बाटे लाते बिछाओ बिछा के तोपा ओकर लताश दिया था तो हमने के परे लगभग 5 बजे कारों में चल जाए कि हमारे को भौजी रहल और एगो बहन रहल झुनिया का नाम रहल तो उन लोग हमको बुनेरे जगा दिए सब लोग के संगे चले के तो जाके हाउ लेकिन के ढेरी से अब छीटे के शुरू कर दे सब
1: मतलब भौजी बहन सब कोई मिल के जथा जा काम करे।
0: हाँ तब हाउ काम कर, अब जे लेकिन छिटा गल अब लाते थाली आली फाने करके ओके बिछाओ अब सरियाव सरिया के तोप तो तोहर 3 लालिन के लताश बत तोप दिला तब से चल घरे है हमने के काम रहल।
1: चाचा जी अभी जो बात बोलत हवा हम के नवा पीढ़ी लोग सुनत हुए जा तो वो लोग के अचरज होत हुए कि ऐसा कौन जिसों में काम होल बा ये विषय के गहराई में अभी हम थोड़ा और जाप जा और सुखेंद्र रामदास आप भी एक जन राजनीतिक पहलू आज चलाल बा ओकर पर थोड़ा हमने के आगे बोल बा फिलहाल ले जा एगो छोटा सा विराम।

0: आज की चर्चा कार्यक्रम में हम किरण आप सबको एक बार फिर स्वागत करत है। आज हमने श्रम दिवस पर बतिया थे जा श्रम दिवस जेके 1 मई फिर जो थवाई लेबर डे इस सब नाम से हमने मॉरिशस में जाने ला सा। और ये एगो ऐसा दिन है जेकर सम्मान जेके मनावे खातिर दुनिया भर में कितने गतिविधि चलेला। और ये एगो बहुत ही प्रतीकात्मक दिन है श्रमिक वर्ग और मजदूर वर्ग के सम्मान करे के। ओकर साथ साथ जो ट्रेड यूनियनिस्ट हवन जा और जो नेता हवन जा जे लोग ई मजदूर वर्ग खातिर लड़लन जा संघर्ष करलन जा ई लोग के हक में कितने पिटिशन प्रस्तुत करलन जा ई सब हस्ती लोग के सम्मानित करे के भी एगो दिन है। अभी हमने संगे हवन आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के चेयरमैन श्री सुखेंद्र रामदास जी और साथ में मजदूर वर्ग के एगो प्रतिनिधि श्री तहल रामदीन जी। और ये दोनों व्यक्ति हमने के थोड़ा समय के ऊपर ले जाता हवन जा जहाँ पर ये सब बात पर हमने ध्यान देवे थे जा कि कैसे ये देश में मजदूर वर्ग काम कर ले हवन कैसे मजदूर वर्ग खातिर श्रमिक संघ के साथ साथ नेता लोग आगे बढ़लन जा उन लोग के हक में काम करे खातिर। और अभी सुखेंद्र रामदास जी कितने बड़ा हस्ती के नाम लेलन ये विषय पर अभी थोड़ा घड़ी में आवब जा। लेकिन सबसे आगे अभी चाचा जी हमने के एगो बहुत भावुक आँखों देखा हाल अपन स्वयं के अनुभव सुनैलन तो श्री रामदास जी आपका जोड़े चाहब जब ये विवरण सुनला चाचा जी के था।
1: जब चाचा जी बोलन अपन लिपो के बात तो हमरो चाचा जी बहुत बड़ा हवन हमारे ले फिर भी याद आल कि जैसे बोलन मुसलमान समुदाय में एगो ब्लॉक के नाम तो हमके याद चलल अभी एगो नाम तो असिनाल बोला सर वो लिपोक में पता नहीं रस चला हो रसनाल चलिए
0: भोजपुरी में सब जन नाम रहल ओके भोजपुरी बना दिले रहल जा।
1: हाँ चला रसनाल चला कातमिल जो नबी सेंट जोसेफ बोलला सर चला कातमिल

0: हुआ पर एगो ताबिस में रहल मसिलिया तो पोतपीमा से थ्रियोले से मोसेलमा से तेरू से सब कम कुआर कम करवा लोग मजदादन सब मसिलिया में कान काटी जब कान कटा तो हर तो अंतरिकूप बोला तनी सर तो अंतरिकूप में कोई तमाकू रोपी जो ताबा बोली ला सभी तो वो तमाकू बोलते नहीं सर और कोई लेगिम करी
1: क्या कि कान तो कटा गल बा जमीन इसने पड़ल बा तो नहीं इसने छोड़बा ओके एक एक अगर पॉजिटिविटी और बढ़ाई
0: और बढ़ाई बा
1: दूसरा कुछ रोप के
0: कानवा हुए रही सीमा
1: करदरी के
0: अंतरलीन अंतरलीन बोलते नहीं सर राइट दोनों कान जहां रोप लो बा बीच में जो बा अंतरलीन तो ओके ओकर में फोसे कोड़ के तब कोई मिलोंदू डाली कोई पोमडामू रोपी कोई बैंगन रोपी जैसे जिकर विचार होता
1: है आलू भी
2: मकई भी
0: नहीं आलू कान में आलू नहीं सब डाली
1: अच्छा।
0: आलू के जब
2: आलू
0: जब प्लॉट पर तो चला पूरा आलू रही
1: अच्छा।
0: हाँ हाँ तो उस समय में तो आलू देखे में नहीं रहना
2: चाहिए
0: उस समय में आलू नहीं रहा उस समय में कान रहल तम्बाकू रहल और लेगिम रोप तो हाउ लिपोक हम याद चला आर हाउ लिपोक में हमार पिताजी जो रहन उ सोफे कामियों रहल सोफे कामियों काम करता हर कान दिखाला था हर सोफे कामियों में तो हमके याद आवा था कि सुरुचित एगो गांव है थ्रियोले के लॉन्च जैसे थ्रियोले जब शुरू होला था सुरुचित से शुरू हुए तो वहाँ पर मूला रहल मूला सुरुचित तो कबो पापा जब जाए बनोरे तो कबो देरी हो जाए तो खाई के लेके नहीं जाए तो अब हमें यहाँ बिसिकलेट नहीं रहल हमार दादा यहाँ को बिसिकलेट रहल हाउ लिपोक बोलता सब बिसिकलेट फिलिप सब बिसिकलेट खाली ना चाचा हाउ लिपोक में हाँ फिलिप खाली हाँ तो दादा यहाँ जाओ बोला कि दादा बिसिकलेट तो देता कहाँ जाइबे बोला लिखा हो रही कहाँ जाइबे घूम जाते हुए कहा नहीं दादा पापा के खाए के जाए छोड़े के पापा भुला गल बा खाए के लेके जाए के तो हम बिसिकलेट पर लेके जाते नहीं खाए के मुला हुआ आतान करब सर जब ओकर कामियों आई तो के खाए के देव सर तो वो मोमाम हमारे खातिर एगो एक्सपीरियंस हुआ हमके अच्छा लगे जब मोला जाब सर या जब हमारे कान पेराला तो हाउ जन पफेवा होला आए हाउ चीनी के तो हम सब अच्छा लगे और सगप से मुला घूमे जाते नहीं सर वहाँ के जन गार्जियन हल तो देखे आप पीछे हो जाता हर तो के स्प्लिक करे हमने के बोले जाए बोले कि भितरी धीर नहीं जाइए सर बस प्रिकॉशन ले सब ले तो नहीं सर तो ऐसे हो यादगार हमके चलाल जो चचा जी बोलन तो
1: हाँ बहुत सुंदर और अभी बात कर लीजा कैसे ये सब मजदूर वर्ग देखा अभी तू ही बोलना कि आप लोग के जन खुशी के पल रहल जन आनंद के घड़े रहल वो भी काम से जुड़ल रहल वो जन वातावरण रहल वो बखत जन सुगंध आपके मिला था कान के पेरल रस के ये सब मतलब काम से ही जुड़ल बा एकर से बाहर आपके आप लोग की कोनो दुनिया ही नहीं रहल तो अभी हमने श्रमिक संघ लोग के बारे में नेता लोग के बारे में बताता लीजा काल पहला में ही रहल हमने के देश में कितने जना के श्रद्धांजलि प्रस्तुत होल हुई थोड़ा एकर बारे में बोला आज जब पहला मई के बारे में नौजवान लोग देखे लन जाता कैसे देखे लन जाए के और जब संघर्ष चलल तो आदोल्फ दुप्लेविट्स के भी नाम आवेला कहे कि एगो पिचिशो कर ले रहलन ये सब मजदूर लोग के भलाई खातिर तो थोड़ा ये श्रद्धांजलि के दिन पर बात कर रहा और एक जो राजनीतिक पहलू बा आज मॉरिशस में एगो राजनीतिक दिन है थोड़ा एक पर बोला
0: पहला तो किरण जी हम बोला आदोल्फ दुप्लेविट के जब नाम लेला तो है हमने के कबो नहीं चाहना भुलाई के हमने कबो बोली ला जा कि जो हकीकत तो हकीकत है कि जन बाँ सुखिए जन बोली ला सर तो आदर्श प्रेवित जब नाम बोलब तब तो बाँवे रहल सिलमा उकर में रहम रहल
1: रहम
0: बहुत रहम रहल हमने के कम करवा खातिन तो उ बहुत जोर लगैलन अपन सोसाइटी में कि है जन हमने के मजदूर लोग बा तो वो लोग पर ढेर दुमीने नहीं चल नागरिक के ठीक बा तो बहुत बेगो
1: पेचिशो करन
0: हाँ शब्द नहीं आओ तक कैसे हो गमी ऐसे करब सा
1: हाँ।
0: आदर्श प्रेवित के है जो नाम है
1: हाँ।
0: हमने के नवा पीढ़ी जो है तो है सब लिस्टो नहीं चलना भुलाई के
1: और उनकर पेचिसियों के ही लेके और बाकी नेता लोग एक आगे बढ़े
0: आगे बढ़न जा
3: प्रभावित हो जा
1: जरूर
0: तो कैसे काल देखला जा टेलीविजन में कि सगरो सगरो शहर में गी गुजमो रहल आई हुआ जाके श्रद्धांजलि होल सैजों में हुओं पर जाके श्रद्धांजलि होल शहर में फिर सौदय कोंपाई में पंडित सहादेव हुओं पर श्रद्धांजलि होल अंजलि कुपेन पर जाके श्रद्धांजलि होल कुतेज गांव में तो है लिपोमि में जो है असली में थावाइये के दिन है
1: जी
0: और जैसे भी प्रश्न करला कि अब भी के लिपोक में कैसे होगा तो है थोड़ा सकब बोले कि थोड़ा पूरी चीजें हो गल जैसे जैसे दुनिया
1: बदलेला
0: परिस्थिति बदलेला तो हवे पर हमने के पहला चले के
1: आजकल लड़का लोग सोचे लंजा नौजवान लोग सोचे लंजा पहला मई मीटिंग के दिन
0: हाँ तो बिल्कुल नहीं ये हो गल जैसे हम बोलने की जो हमने के पोलिटिकल पार्टी लोग रहल तो एगो सेटन फासों ओ लोग के विचार से ओ लोग सोचता चलन जा कि हाई जब कर दे सब को जब
1: को छुट्टी के दिन
0: छुट्टी दिन हो गल बाटे
1: सब कोई
0: लिब्बा तो ये ओ लोग के फासों पहुंचे
3: रहे रोज बात बोलते जा भतीजा कि मान ले जाए वो बखत ओ लोग सोचा तलन सर एक खातिर में नहीं जुटा होता अपन शक्ति प्रदर्शन खातिर करत है सब पॉलिटिक में कि हाई लेबर है तो लेबर का एक शक्ति इतना कोई जुटा के मिला
0: हाँ नहीं हाँ भाई तो हर विचार है हमारे विचार से हमारे अपन लोग बताएं कि जो मैम जन पहुंची पॉलिटिक रलन जा तो वो लोग वो जुटाव करता हर कि अरे कोई संदेश वहाँ मिला था ना संदेश मिला था हर कि देखा किरण जी चाहब नहीं चाहब देश जो चलेला तो पॉलिटिक्स से चलेला
1: जरूर
0: पॉलिटिक नहीं रही तो
1: महात्मा गांधी वे अइलन तो बोलन आपके अगर चाहे अपन स्थिति सुधारे के तो दो गो बात पर ध्यान दा एक तो शिक्षित हो पढ़ा लिखा और दूसरा राजनीति में कदम रखा जब ले तोहर प्रतिनिधि तोहर रिप्रेजेंटेशन नहीं करी तोहर आवाज नहीं उठाए तब ले तोहर स्थिति नहीं सुधरी
0: तो ये खातिर ढेर कोई सोचेला कि पॉलिटिक जो है मारो चीज है
1: नहीं
0: अगर राजनीति नहीं रही जैसे हम बोली तो देश नहीं चली और जब देश नहीं चली तो कुछ नहीं चली तो ये खातिर वो लोग सोच रहे कि लिपोमी में कि सब कोई के जुटाव करी सा और एगो संदेश देला सा तो ये वो लोग के फासों पहुँचे रहल और जो आगे रहल जो हमने के जो थ्रुबे लोग रहन जा तो नहीं वो लोग के सोच दूसर रहल बस कि हाउ जो कठिनाई रहल हाउ समय अभी कठिनाई कहाँ किरण जी
1: तो शायद यही वजह है शायद नहीं बल्कि यही वजह है कि आज के भी नेता लोग हमने के देश के प्रधानमंत्री बड़ा बड़ा नेता मंत्री सब कोई मिलकर कहे श्रद्धांजलि देवत हम जा यही लोगे के बदौलत हमने के देश यहाँ पर पहुँचल बा ये लोगे के बदौलत गिरमिटा के बेटा लोग आज देश के नेतृत्व करत हम जा देश के सरकार चलावत हम जा
0: गिरमिटिया के बेटा प्रधानमंत्री बा
1: वही
0: गिरमिटिया के बेटा डुकेर बा गिरमिटिया के बेटा
1: राष्ट्रपति
0: बा
1: जी
0: और फिर भी जब हमें इंडियनचा भरेला जा तो हवो नहीं भरेला जा जो स्लेवरी तो ओ लोगों में बहुत बहुत बड़ा बड़ा आदमी बा
1: जरूर मतलब कि मजदूर वर्क के जब बात करत है जाता एक में खाली गिरमिटिया नहीं बा बल्कि जितना कोई भी देश में काम कर ले बा चाहे वो कोनो भी मूल के रही चाहे वो कोनो भी परिस्थिति में रही सब काम करवा लोग खातिर सब मजदूर लोग खातिर ये दिन है और चाचा जी अभी आप बतावत हवा कि आगे कैसन स्थिति में काम होत रहल अभी तो हमने के श्रम मंत्रालय बा लेबर मिनिस्ट्री जहाँ पर 18 उम्र से कमती कोई के काम करत देखला तो मंत्रालय एक बार हस्तक्षेप करके सकी आपके सजा भी होवे कहे कि यहाँ हमने के नियम के अनुसार 18 बरिस के बाद ही आप सब काम करें लेकिन आपके समय में तो आपके बचपन बीत गया काम करते थोड़ा उ कठिन परिस्थिति के बारे में हमने के एगो और एगो नक्शा हमने के प्रस्तुत कर रहा
3: बहुत ठीक उ बखत माने जाए लाज के कोनो अथी नहीं रहल
1: पाबंदी नहीं रहल
3: कोनो पाबंदी नहीं उ कैसे हम ढुकली काम में 12 बजे से हम काम करके शुरू कर देली कोनो रोक टोक नहीं जाके साहब से भेंट कर या सरदार से भेंट कर बस वो बोल दे आओ काम करे काम शुरू कर दे तो ऐसे शुरू हो जाता काम और हमने जैसे कि हम बोल ली कि मान ले जाए काम के परिस्थिति जो बटे सहज नहीं रहल बहुत परे के मान ले जाए सह के काम करे के काहे ओकर में सरदार के डांट बा गोरा के हम जोन कोलो रह वो लोग के डांट बाटे जहाँ तनि सुन चुकला तो सुनबा लगता ना। अब हम जब बड़ा होली तो कान काटे के शुरू कर ली। 4 लाखों करना है सैतानवे में, 2 लाखों हम कान कटना है वागों में काट कान काट के ला देता हूँ। कैसे होता है फजी के देखभाल रेल वागों लेके आई वागों, अब हमने कहती मैं क्लासे कर दे वागवान में निमेरो रहे तब हमर नाम के है निमेरो। कान कटागल लदागल मुला जाए पेजाज हो जाओ जब जब पेजे कर दियन सा तो हाई निमेरो के वागों में इतना तो रहा।
1: रेलगाड़ी की बात कर रहा था।
3: हाँ
1: रेलगाड़ी
3: हाँ रेल वो वागवान के छोड़ देवे अब वागों भर देवे तो रेलो आके फिर लेके चल रही मुला तब हो जा बनौस लग पास हुई तो अब उतौलाई तो हर निमेरो के पेजाज जोन बाटे वो लिखाई तब हमनी के जो नौतने रही उ जाके और पेजाज लेके अब बिहान हमनी के बोली तोर इतना तो रहल दे तो सा रहल दे तो दिशा रहल ऐसे सबके दे दी तब हवे के आधार पर सामजी के लापे हुई। अब एगो बात है जा यदि मान ले जाए तू 2 टन कान नहीं कटल एक दिन तो उ दिन के हाउ तो नाज एन काटो वह कैंस एन ओपी काटो वह कैंस पर गंती हुई और जे 2 टन से ज़्यादा कर ला तो दब दे ओपी जीस गनाते हल ऐसे और जो कमती रहे तो नहीं तो ऐसे काम कर ली सर।
1: मतलब कि आपके चाहे उज़ेफो करके
3: 2 टन से दस्ती हाँ, ज्यादा करके
1: नहीं कर पता नहीं मिली हाँ, नहीं मिली
3: तो अब ये कर ली सा हो जा पर कान कटाई लदाई अब हम निकल लापे हो जाए। अब ये अब एगो बात हम यहाँ पर जोड़े के रही जैसे कि हमने के जो मजदूर लोग आ रहे हैं माले जाए है भारत से वो लोग क्या इससे पहले मॉरिशस में हम वो लोग से पहले दूसरा कोई रहल आल रहल दूसरा हाँ। देश से हाँ। लेकिन कुछ नहीं कर रहे पहलन सा वो लोग से कृषि उद्योग में कोनो अथी नहीं होल तब फ्रांसीसी सरकार उस सोचलक कि भारत से वो लोग चल गए रहन सा भारत में दक्षिण में स्थापित रहन सा मद्रास में तेलंगाना बॉम्बे में वो लोग रहन सा हौजा पर सिड में तो हौजा से वो लोग अब मजदूर अनले रहन सा एक पर्ची अब हौजा जितना बाचिमा बा पोलवी में लिपुक लाबुदोने के गोवेने लाबुदोने के लिपुक में बनल बा तो हाउ सब जो कारीगर आना सा वो दक्षिण के कारीगर बने ले बा।
1: हाँ ई देश में जब निर्माण कार्य होल बा त इतिहास में जब वापस जाइबा तो हम देखिला जा कि हमने के देश के निर्माण में गुलाम बनावल गल लोग के बहुत बड़ा योगदान रहल। उ लोग के जब आनल गल तब मुख्यतः ई देश के निर्माण होल शहर में अभी चचाची बोलत हवन कि जोन पत्थर से बनल इमारत बा जोन पेवमेंट बा जोन पुराना पुराना चिमनी देखबा लक्ष्मीया जे के बोलबा ई सब हमनी के देश में गुलाम बनावल गल लोग बनेलन जा लेकिन उ लोग के प्रशिक्षित करे खातिर दक्षिण भारत से जे के स्किल्ड वर्कर्स बोली जा पोंडिचेरी से लाबुदोने अनले रलन ई लोग प्रशिक्षित करलन तब उ लोग सब कोई मिलके ई बनेलन जा और फिर कृषि के क्षेत्र में चाचाजी जैसे बोलत हवन की ढेर कुछ नहीं हो रहा जब हमनी के भारतीय मूल के मजदूर
3: कि उ लेपोक में जब एगो पहला थी ऐलन जा तो लोग जब काम करे लगलन सा तो है जाके जोन शकर कोटे के अथी रहन सा मालिक लोग बहुत प्रभावित होलन सा देखलन सा लोग न गाल चलावे हो मुँह चोरा न कुछ नहीं ये लोग बहुत सुधार व्यक्ति
1: होन सा
3: ये लोग जो काम करे सा मेहनती होन सा तब देख बात दूसरा कब 1 लाख 1.5 लाख भारत से मजदूर मंगावल गल और वो लोग जोन बाटे मॉरिशस के जोन आज माने जो स्थिति बा तो वो लोग के याद करी जाए वो लोग के मेहनत के आधार पर मॉरिशस बनल बा
1: एकदम। अब ये जब चाचा जी बोलत हवन कि हमने के देश में जब पहला खेप आ सकब जहाँ ये शब्द हाँ। इस्तेमाल करे कहे कि जहाज में खचाखच भर के जब हमने के देश में शर्तबंद मजदूर लोग के आनल जात रहा तो इ लोग के जन सफलता मिलल इ देश में उस सफलता के बल पर ही और मजदूर लोग के आने लगल और मॉरिशस एगो टेस्ट केस एगो लैबोरेटरी की तरह प्रयोग करल गल और यही कारण है कि मॉरिशस में जब बरतानी कॉलोनी जोन रहल बरतानी सकल ई प्रयोग करे ई सफल हो तब अपन अन्य कॉलोनीज में एक आगे बढ़े लन जा और यही कारण है कि आप्रवासी घाट आज एगो विश्व धरोहर बनल बा।
3: किरण जी वही लिपुक से शुरू हुए चीनी उद्योग में अधिक काम हो लगल अधिक चीनी पैदा हो लगल तो चीनी कैसे बिचाता हल चीनी अब जोन जहाँ जाने हमने के मान लीजिए आटा दाल चावल तो वो लोगे किन के ले जाके बिचाता लन सर है जब स्तुके करके रखा सा तो चिनिया वो लोग ले जाता ऐसे बातों नहीं आवे वो लोग हैती करा सा वो लोग उगेले जा और वो बखत एगो कान रहल निमो कानकात लाल कान रहल हवे कनवा मोरिस के आज उठाई लेवा मोरिस के उठैलक हवे कनवा
1: मतलब जब ब्रथवा कान के नाम रहल निमो थानकात मतलब अलग अलग किस्म के कान रहल
3: कान रहल हाँ में हव थानकात वा लाल कान नरम कान रहल और ओकर में ओकर निचोड़ में चीनी अधिक पैदा होता है तो ऐसे बहुत बहुत फायदा हो मोरिस के और विकास बल वो कनवा मलाद हो मलाजी हो में तो ओके हेती करके एगो दूसर कान निमो कान से में बहुत कठिन रहा काटे के वो कड़ा रहा काटे के तोरा कुतो परी जोर से चलाएगी और ओकर रोइया बड़ी गड़ी
1: सब रहल
3: हाँ रोइया गड़ी और उ कनुआ जैसे थी रिकासियों कहती में रहे तो उ जैसे कनुआ ढगल तो उ रासिन फेंक दी अब तू काट के दोनों हाथ से घींच के तब अब ओके दुबूत करा
0: हम एक चीज बोलते किरण जी जब चचा जी बोलन चीनी के बारे में तो हमने के दुकस फ्लैट जोन बोली ला जा अभी के समय में अभी तब नहीं बा मैं जब रहल तो नहीं चहना भुलाई के बस कि हम मजदूर मजदूर जब बोली ला जा तो जैसे कान रोबत हुआ तो मजदूर हुआ आई जब चीनी हो गल तो चीनीवा की विदा करे के
3: लादे के
0: लाद बस्ता में जब दला रहा आई तो हाउ जो मजदूर रहल तो वो लोग वो गाँव में भी जितों बहुत हुआ पर लोग रह थलन सा तो हुए पर नाम रहा दुकस फ्लैट तो वो लोग लादी तो हयो एगो बहुत बड़ा चीज रहल बस कि हम हाउ लिपोक में हमने के मुख्य इनकम जोन बोली ला से कौन चीज रहल चीनी
1: चीनी हाँ?
0: चीनी चीनी बेचाय तब भी तोहरा पैसा मिली तब तोहर देश के प्रगति हुई
1: हमने के इकोनॉमी के कोलोन रहा
3: कोलोन बैकबोन रहा हुई बैकबोन रहा हुई चीनी
0: हाई जोन दुकस बुला दिया बोला थे जा तो ये लोग के हमने के नहीं चाहना भुलाई के ये लोगों के चाहना एगो पासे रह के हमेशा हमने के लिस्टो में
1: जरूर
3: हाँ ये जज से भाई हेटी बोलन सुखन कि दुकस फ्लैट दुकस लोग चीनी ला दे तो ये लोग बाद में एगो लागे कर ले रन सब बहुत प्रॉब्लम हो रहा तो वाक जोन बाटे तब चचा काम गुलाम हाउ वाक बने ले रहा अब नहीं ला देखो सर चीनी नहीं जाता
0: काम कर तनखा नहीं मिला पैसा नहीं मिले तब जब लेबर डे बतिया थे जा तो ये सब परिवर्तन होल बा अभी लालवा नया नया लालवा आल बाटे जैसे जैसे बनी सकी स्थिति सौंसे होल तैसे फिर से यहाँ पर राजनीति आवेला
1: जरूर
0: अगर राजनीति नहीं रही तो लालवा कैसे आवी आई तब संचिकालीस होल लालवा आल तब जब लालवा आल तब जब मैं प्रॉब्लम में हुई तब एगो सिस्टम उगाने एथी कर लंचा उ समय के जो गवर्नर रहल तो वाक
3: हाँ स्थापित करके
0: फर्क स्थापित होल जिमें अर काम भी जोन रहल हाउ लादे के फासिल नहीं रहल मजदूर नहीं मिला था अभी की स्थिति देखा ना काम कान कान तो दूर के बाद बा कौन लीजिन में भी थोड़ा लीजिन तो थोड़ा कौन रगल बा अभी तो लोतेल है सगरो लोतेल में काम करे के जनता नहीं बा तुहार घर में भी जैसे कबू कबू बोलन सा सेवांत खोजे के नहीं बा तो हाउ स्थिति होकर रहल हाउ लिपोक जब भाई कम करवा नहीं मिले लादी खातिन तो एगो दूसर मुआये चाहत जिमें हमने के चीनी लादाई बेचाय आई तो पैसा मिली हमने के
1: जरूर
3: आज लाइजिस्त के बखत जब है जा पर बने लगल तो इसे माने जाए काफ़ी महिला लोग वो लोग लगल से जाए लीजिन में काम करे तो अब हमने के खेत में काम करे लगा काम करवा बहुत कमती
1: हो गई
3: कोई नहीं काम करे खोजे
1: खेत में काम बहुत कड़ा रहा
3: बहुत कड़ा रहा तब लोग होने चल गए से तहने कम ही होगल और अभी तो और कम होगल बस कि हमने के जनता जो मैं काम करे नहीं चाहता काम करे नहीं
0: चाहता और कुछ चीज
1: हो जाए दूसर समस्या चाचा जी आज हमने जाने चाहते जा कौन कौन परिस्थिति में आप लोग मजदूरी कर ले हवा जा, आप जो देखले हवा जो कर ले हवा, अब आपके पिताजी के जो करत देखले हवा, थोड़ा उ परिस्थिति में बोला आगे ढाका रहल सगरो सगरो ओकर बाद गांव स्थापित होल। अब ढाका में भी आप 12 उम्र में काहे काम करे के शुरू करला, परिवार में जे सब सदस्य काम नहीं करे तब घर नहीं चली, घर में ढेर लड़का रहे, घर महंगाई भूला जा महंगाई पैसावे नहीं रहा घर में, तो ई वजह से सबके सब सदस्य के औरत लड़का सबके

0: काम करे के थोड़ा इस
1: स्थिति
0: थोड़ा इस स्थिति पर हमने के बतावा जो हमने नहीं जानी ला सा
1: तो उ बखत माने जे को व्यवस्था रहल कि चाहे लस काम करे के जितना हाथ बा घर में काम में लगा दे जिससे इनकम होए पैसा मिली जिससे माने जाए घर के राशियों चली बस महंगाई रहल न सहज नहीं रहल बखत ऐसी राशियों निकाले के तो ई खातिन करल जाता है। अब देखा तब हमरे तक कॉलेज हमारे बाप कहा नहीं भेजक बस ओके 8 रुपया पिए करके नहीं रहल कॉलेज के चाहत हुई तो भी ओके फीस पिए करे तो नहीं रहल तो नहीं भेजलक हमके डाल दिलक उन्हें अब हम लगली काम करे तो एक से घर में इनकम आए लगल तो एक से हमारे बाप सुलाजो ही लगल और वो काम करे तो लेको प्लौते के काम ए भर बड़ी सोकरे काम करे होता है ना तो ओके कातो भी जिस्सू मिलत रहा कातो भी जिस्सू ओकर जूने रहल तो वो पे करे वो अपन जीवन ले जाए इससे।
0: और फिर मजदूर लोग का खात रहलन जा कौन पर्व मनावत रहलन जा का पहनत रहलन जा शॉपिंग के जमाना बा आज आगे शॉपिंग कैसे होवत रहा
1: आगे शॉपिंग नहीं रहल किरण जी वो मानी जाए कैसे वो लोग काजो मिलल तो माले जाओ मौसम इसके लोग ऐलन सला तो लेके तो लिया गल तो सिया गल को पौता लो को सेमी सही हो गल फिर नहीं हो गल बनाने के सोच लो हुई हो गल और अब कैसे एगो दूसर बात ले बा माले जाए और है फेत के थी और हमने का त्यौहार बटे तो त्यौहार के अवसर पर थोड़ा सुन माने जाए आदमी हैती करके मना ले कि माने दिवाली बा तो मिठाई पकाएगा तो बताता आदि पका के वो दिवाली मना ले चिराग चिराग मिट्टी के चिराग भी खरीदे के पैसा न पपाई काट के फाड़ के आधा ओकर में बत्ती डाल के चिराग बनाता हम कर ले है ना तो बखत ये गरीबी के फगुआ ऊ तो खेली से ऊ तो माने जाए कमती खिलाए लेकिन खेली सा निम्ने से निम्ने से खेली सा फगुआ फूल निवा से और हमके याद हुआ हर फगुआ में हमर बाप पूजा करे रोट और है पुआ पकायू चढ़ावे ऊ हमके इतना याद है खाली खाली खाली होली
2: होली के अवसर पर पुआ पके
1: पुआ और रोट पकावे अभी हमके याद होगा रोट पकावल रोट बहुत बढ़िया रहे
0: पिताजी पकावे
1: हमारे पिताजी पकावे पूजा करके बचरा दी
2: किरण जी को बात बोला हम के इतनी छिटकल ढाका
0: ढाका
2: ढाका हाँ तो उस समय जितना मुला रहल जितना मुला रहल तो सब मुला के बगल में एगो ढाका चाहत रहे
0: के हौजे रहत रहन सा
2: हाँ
0: वहाँ के काम करे
2: जितना कोई मुला में काम करे तो वो लोग ढाका में रहे हम तो नई जिला है ढाका में सिलमा जब हम हमारा सुसंदेश जब हम जैन रहनी तो सुरक्षित गांव में रहल हौलीपोक और लाभुद्दीने गाँव है आए काफ़ी काफ़ी हम हमार लाश होकर रहल तो लाभुद्दीने गाँव हुआ पर वो ढांका रहल तो हुआ जब जहाँ घर नहीं तो वहाँ दिखले ही हुआ आपके कैसियत भी लोग रहा था तो बहुत कठिनाई रहा
0: बहुत कठिन रहा तो जिले हवा ढाका में
1: जियल नहीं है लेकिन हम सार रहा था लाभुद्दीने के ढाका में तो हम गल है जा वो लंबा लंगार हर एगो के कुप के माने हर एगो परिवार के एगो लसाम
0: एगो लसाम में पूरा परिवार
1: हां लसाम और आगे में लाक्विजिन लोग अपन से बना लेते रहन स ओ लोग रहे हवे में हम सार रहतल त हम जाए बनाने में जाए स त जाए हम देखे कौन परिस्थिति में लोग जेतो और सब के टॉयलेट में कोर एगो रह
0: एक ही गो ढाका में कोना में एगो शौचालय रही
1: शौचालय
0: सब कोई ओकरे इस्तेमाल कर
1: सब को इस्तेमाल कर हवे
0: अब जे नहीं
1: पानी के ओकर प्रबंध ने रहलो का अलग है थी ट्रैक में पानी रहे त उ एक जगह अब जाके सब भर के आना अरे को बुटीक रहे
0: चिनवा बुटीक
1: हाँ चिनवा बुटीक
2: जन जन चचा बोला जब इतनी बजा रहे जा टॉयलेट के बारे में तो माल गए बाहर मेरा घर में इजन रहा लो
1: हाँ
2: हमने
0: समझ ढेर को ये भी बोले हों जाके ढाका उतना साफ सुथरा नहीं रहा कहे कि एक तो टॉयलेट देखेंगे रहा
1: एकदम एकदम
0: हाँ अभी नहीं कर अथहर पुबेल कोई खाली करे नहीं आए ढाका उतना साफ सुथरा भी नहीं रहा शायद तुम बाद के बात बोला था शुरू में चाचा
1: जी आप नहीं सच्चे के बोला था कीचड़ से भरा रह जाए बात तो तुम्हारा मन नहीं करे थी करके
0: सुदबत और गोनी में पीस उड़ी से भरा
1: सब रहे
0: शुरू में नहीं रहा साफ सुथरा बाद में समय के साथ
2: उलेपुक में जिक बदला की खाई के बारे में तुमके याद चला लिट्टी
0: लिट्टी खाए
2: लिट्टी जब ढाका हम

0: जैसे जेल है जहाँ गाँव में थियोली गाँव में तो ढाका हुई कि आदमी लोग गति गति धीरे काम कर लन जा तो जमीन के लन जा तो अपन अपन घर बने लन जा रही पुख में तुल के घर हल और माटी गोबर से लिपात हर
1: जरूर
0: हाँ तो जब एगो आर लाखुजीन सिपाही रहे तो जब लाखुजीन सिपाही रहे तो ठंडा के लिए पुख में दादी दादी बोले आवा सर सब कोई बैठा सर आए सब कोई बैठब सर चूल्हा आग रही और लिट्टी पके लिट्टी पके हाँ तो हमको बहुत बढ़िया चीज रहा
2: हमर हमें वो बात है जबर जुड़ती हमर जो भी माता रहल कठमा तो वो जब पराठा पका दे ना चार पांच गो लो या छोड़ दे ए आवो सर अपन अपन लिट्टी पका ले सर
1: आकर अपन पकावा
2: हाँ तो वो है थी करके अब वो चूल्हे में अंगोरा में लिट्टिया सेंक के हमने चा संगे रोज रोज लिट्टी खाते ली रोज
1: चाचा जी सुखेन रामदास जी हमने के जो चर्चा बा बहुत दिलचस्प हो गल बा ई चर्चा के हमने आगे बढ़ावा जाए एगो अन्य प्रोग्राम में समय अब समाप्त हो गल आप दोनों जना के आपके उपस्थिति खातिर बहुत बहुत धन्यवाद और हमने के सुने होला और देखे होला लोग के भी बहुत बहुत धन्यवाद हम वादा कर रहे कि ई बातचीत के हमने एगो अन्य कार्यक्रम में जरूर जारी रखब जा धन्यवाद नमस्ते।

0: 4:33 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार टीना से। नमस्कार।
1: नमस्कार, संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। बजट 2026-2027 की तैयारी के तहत वित्त मंत्रालय के जनरल मिनिस्टर धनेश्वर दामरी ने आज शनिवार सुबह बिजनेस मर्चेंट्स, मेक्सा और कृषि एवं उद्योग सदन के प्रतिनिधियों से बोर्डवी में मुलाकात की। बाद में बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सेक्टर और वित्तीय सेक्टर के प्रतिनिधियों ने भी अपने सुझाव सरकार को पेश किया। सऊदी अधिकारियों ने फैसला लिया है कि हज 2026 के लिए 15 साल से कम उम्र के बच्चों के वीज़ा रद्द किए जाएंगे। मर्चेंट्स में हज के जिम्मेदार मंत्री शाकिल मोहम्मद के अनुसार ये फैसला रात के समय लिया गया। वे सऊदी अरब के हज मंत्रालय, वहां के डिप्टी मिनिस्टर और मर्चेंट्स में सऊदी अरब के राजदूत के साथ संपर्क में है ताकि आधिकारिक जानकारी मिल सके और सभी संभावित समाधान देखे जा सके। यह अचानक हुआ बदलाव प्रभावित परिवारों और आयोजकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि सऊदी अरब के लिए रवाना होने की प्रक्रिया आने वाले दिनों में तय थी। देश के बदलाव को मजबूती देने के लिए शिक्षा को आधार बनाने की दिशा में नेशनल हायर एजुकेशन स्ट्रेटेजी 2025-2035 गुरुवार को बलाक्लावा के इंटर कॉन्टिनेंटल होटल में लॉन्च की गई। ये 5 मुख्य स्तंभों, शिक्षा की किस्म, शोध और नवाचार, जीवन भर सीखने के अवसर, वैज्ञानिक सहयोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ डिजिटल बदलाव पर आधारित है। विदेश में माली में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। अप्रैल के अंत से सुरक्षा स्थिति गंभीर हो गई है। जिहादी समूहों और विद्रोहियों के समन्वित हमलों ने राजधानी बमाको समेत कई अहम शहरों को निशाना बनाया है। रक्षा मंत्री की मौत हो चुकी है और उत्तर के कुछ इलाके सशस्त्र समूहों के कब्जे में चले गए हैं। हालात के चलते लोगों को का पलायन बढ़ रहा है और बमाको के आसपास जरूरी सामान की कमी भी देखी जा रही है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हमें आगे आ दीजिए। नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. You're listening to RM3 Radio. Man.

रेडियो मनोरंजन के सभी भाई बहनों को संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब और स्वागत है प्रोग्राम गीत गाथा देश की में। आज के इस प्रोग्राम के जरिए हम चाहेंगे कि आप सभी लोग इसमें भाग लें जो श्रोता गणी समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो आपसे कहना चाहते हैं कि हम एक ऐसे गांव को ढूंढ रहे हैं, हम एक ऐसे गांव के को ढूंढ रहे हैं जिसके बारे में हम समय समय पर आपको एक टिप देते रहेंगे। आपको अपने जवाब, आपको अपना जवाब हमें भेजना है ऑन व्हाट्सएप ऑन 5250 6200 या तो आप हमें कॉल करके भी बात कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर 402-80-70-402-80-70 पर। तो जो पहला संकेत, जो पहला टिप हम आपको दे रहे हैं, हम एक ऐसे गांव को ढूंढ रहे हैं जिसकी आबादी लगभग 4000 लोगों की है और जो समुद्र तट पर पाया जाता है। आप अनुमान करके अपना जवाब 5250-6200 पर भेज सकते हैं या तो कॉल कर सकते हैं ऑन 402-80-70 पर। थोड़ी देर में हम उस गांव के बारे में आपको दूसरा टिप देंगे।

0: सो आज का कुछ आज का हमारा ये प्रोग्राम कुछ बदला सा है क्योंकि हमने एक सवाल रखा पहली में. हम सब एक गांव का नाम ढूंढ रहे हैं, एक ऐसे गांव को ढूंढ रहे हैं जिसकी आबादी लगभग 4,000 लोगों की है और जो समुद्र तट पर पाया जाता है. चले हम इनसे मिलते हैं. हेलो.
1: हेलो, नमस्ते संजय जी, मैं कतेज से आशा जानू बोल
0: रही हूं. कतेज से आशा जानू जी. आशा जी, आप तो कतेज में रहती हैं और कतेज गांव का नाम एक ऐसे शख्स के साथ जुड़ा हुआ है जिनका योगदान मजदूरों

0: के कल्याण के लिए बहुत ही सुप्रसिद्ध है। उनका नाम आप जानती हैं?
1: मेरे ख्याल से बागदेव विश्वविद्यालय
0: पंडित सहदेव। अच्छा, हम जिस गांव के बारे में आपसे आपसे बात कर रहे हैं, आपके हिसाब से वो कौन सा गांव है?
1: पोस्टिफ्लैक।
0: इनफैक्ट हम जिस गांव के बारे में प्रश्न कर रहे हैं वो पोस्टिफ्लैक नहीं है, लेकिन आपने आपने दिमाग दौराया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में आप इंतज़ार कीजिए, हम अपना दूसरा अपनी दूसरी जानकारी अपना दूसरा टिप देंगे तो शायद आपको ज़्यादा ज़्यादा संकेत मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, नमस्कार। सो जो पहला संकेत हमने दिया कि लगभग 4000 की आबादी है वहाँ पर और वो समुद्र तट पर पाया जाता है, आशाजनों के जवाब से आपको पता चल गया है कि ये पोस्टिफ्लैक नहीं है। दूसरा संकेत जो हम आपको देते हैं कि वहाँ से एक ज़माने में वहाँ से शक्कर नाव के ज़रिए पोर्टविस भेजा जाता था, शक्कर नाव के ज़रिए पोर्टविस भेजा जाता था निर्यात के लिए।

0: 4:22 मिनट आज का हमारा प्रोग्राम कुछ बदला सा है द प्रिंसिपल हैज चेंज्ड हम आपको समय समय पर एक टिप दे रहे हैं और आपको ढूंढना है कि हम किस गांव के बारे में बात करें हम एक गांव को ढूंढ रहे हैं जिसकी आबादी लगभग 4000 की है जो समुद्र तट पर पाया जाता है और एक जमाने में वहां से शक्कर नाव के जरिए पोर्ट्स भेजा जाता था निर्यात के लिए कुछ समय पहले आशा जानू जी ने पोसिफ्लक कहा जी नहीं वो उस गांव का नाम पोसिफ्लक नहीं है चलिए हम इनसे मिलते हैं हेलो
1: हेलो जय सियाराम भाई जी
0: जय सियाराम आप है माला जी
1: जी हाँ
0: फ्रॉम कैटरबोन खुद बास है कैटरबोन
1: जी हाँ
0: सो आपके हिसाब से हम किस गांव के बारे में बात करें
1: व्यू ग्रांपो
0: हो सकता है कि व्यू ग्रांपो से नाव निकल कर पोर्टिजिया करता था शक्कर लेकर लेकिन जिस गांव के बारे में हम बात कर रहे हैं वो व्यू ग्रांपो नहीं है अच्छा किसी और ने भी एक भाई ने भी मैसेज किया केश जयराम जी ने कहा व्यू ग्रांपो नो इट इज नॉट व्यू ग्रांपो जो हम ढूंढ रहे हैं थोड़ी देर आप वेट करते रहें हम थोड़ी देर में अगला संकेत अगला टिप देंगे बहुत बहुत धन्यवाद जय सियाराम माला जी

रेडियो मनोरंजन की लहरों पर गीत गाथा देश की। आज हम एक ऐसे गांव को ढूंढ रहे हैं जिसकी आबादी लगभग 4000 की है, जो समुद्र तट पर पाया जाता है। एक जमाने में वहां से शक्कर नाव के जरिए पोर्टरीज भेजा जाता था निर्यात के लिए, एक्सपोर्ट के लिए। अभी तक दो जवाब आए, एक ने कहा पोसिफ्लक, नहीं ये पोसिफ्लक की बात नहीं है। दूसरा जवाब भी आया व्यूगोपो, नहीं ये व्यूगोपो की बात नहीं है। जो तीसरा संकेत, जो तीसरी टिप हम आपको देते हैं, 1st January 1787 को, 1st January 1787 को जब देश इल डी फ्रांस के नाम से जाना जाता था, तो उस गांव का नाम, जी हाँ उस गांव का नाम वहां पर रहने वाले एक जाने माने विकोंत पर रखा गया। एक जाने माने बहुत ही रईस व्यक्ति जो वहां के उस गांव के विकास में उनका योगदान बहुत ही भारी था, बहुत डेवलपमेंट कर रहे थे उस गांव में, तो उसी विकोंत के नाम पर उस गांव का नामकरण हुआ। दैट वॉज इन 1st January 1787। अगर आप अनुमान लगा सकते हैं हम किस गांव के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें मैसेज कीजिए, या तो हमें फ़ोन कीजिए 402-4200 पर, या तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 52 50 62 00।

0: कभी तो हंसाए।
1: मिनट आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन की लहरों पर गीत गाथा देश की। हम एक गांव का नाम ढूंढ रहे हैं और कुछ लोगों को सही जवाब मिल भी चुका है। माला जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो कैटरबोन्स से आपने फ़ोन करके हमें सही जवाब दिया और फ्लक्स से उमा जी ने भी हमें सही जवाब दिया। एक मैसेज आया अनिता जी की ओर से, वो कह रही हैं फैनी जी, नहीं हम फैनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी और गाँव के बारे में बात कर रहे हैं। सो जो लोग अभी तक अपनी दिमाग को दोहरा रहे हैं कि हम किस गांव के बारे में बात कर रहे हैं, एक सो पहला संकेत हमने आपको दिया कि उस गांव की आबादी 4000 लोगों की है। दूसरा संकेत वो समुद्र तट पर पाया जाता है। तीसरा संकेत वहां से शकर नाव के जरिए पोर्ट्रीज भेजा जाता था। चौथा संकेत 1 जनवरी 1787 को जब देश इल डी फ्रांस के नाम से जाना जाता था तो उस गांव का एक वरिष्ठ व्यक्ति विकोंट जाने माने व्यक्ति पर रखा गया जिन्होंने उस गांव में बहुत विकास किया। जो अगला संकेत हम आपको दे रहे हैं और इसको सुनकर आपको यकीनन पता चल जाएगा कि हम किस गांव के बारे में बात करें, उस गांव में आज एक हॉस्पिटल भी पाया जाता है।

0: हमारे श्रोतागण की रुचि से ये प्रोग्राम खूबसूरत बनता है और इसलिए हम उनको वेट नहीं करवाते हैं। लाइन पर चले हम मिलते हैं हमारे अगले श्रोता से। हेलो
1: हेलो सुनिए भैया।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते, अच्छा ना
0: बोला। अपन हाल सुनावा।
1: सब ठीक बा।
0: सब चला था। आप हवा मेलरोज के रंजन जी?
1: हाँ जी।
0: बताओ तो हरिया मौसम कैसे बात है?
1: पानी बरस रहा भैया।
0: अच्छा बा ना? अच्छा बा।
1: अच्छा बा।
0: हम भी अभी गंगा तालाब से आवत हैं, वहाँ पर बहुत बारिश होता और जब हम मौवाका पर से गुजरे तो थोड़ा सा कम दिखल वहाँ पर, लेकिन हम तो चाहते कि मौवाका में और ज्यादा बारिश हुई।
1: पानी कम थी बा ना?
0: बहुत ही कम थी बा। अच्छा बोला रंजन जी, हमने कौन माइबू तू बोला तो माइबू तो हमने के जो पहले संकेत रहल जो पहला टिप बोल रहे निजा कि उ गांव की आबादी उ गांव के पॉपुलेशन 4000 की है तो तोर अनुभव से माइबू में सिर्फ 4000 लोग रह निजा जा
1: बिरी बिरी ढेर गांव बना
0: नहीं माइबू ही में सिर्फ 4000 लोग रह निजा
1: सकेला
0: नहीं बहुत ज्यादा बा माइबू में बीस नहीं सिर्फ एक ही जवाब हाँ माइबू में लगभग 20-22 हजार लोग आ रहे हैं लंजा कम से कम तो रंजन जी कोई बात नहीं सुनते रहा बहुत आपको धन्यवाद भाग लेने के लिए। So, ये मेबक भी नहीं है न पोजेफ्लाक है न व्यूगोंपो है न माइबू है और हमने हाँ ये सच है कि मेबक में एक हॉस्पिटल भी पाया जाता है। So, अगला संकेत जो हम आपको देंगे उससे आपको यकीनन ही पता चल जाएगा कि हम किस गांव की बात करेंगे। थोड़ी देर में हम आपको देंगे आज का आखिरी संकेत।

बहुत सारे जवाब आए हमारे लिसनर्स की ओर से, कुछ सही भी और कुछ गलत भी। कुछ लोगों ने कहा मेबर, कुछ लोगों ने कहा व्यूगोंपो, किसी ने कहा फेनी, किसी ने कहा पॉजिटिव फ्लक, किसी ने कहा बेनोम्ब, किसी ने कहा फिकॉन फ्लक, किसी ने कहा ग्रांड बे। अब जो आखिरी संकेत हम आपको देते हैं, जो आखिरी टिप देते हैं, फिर से रिकाप करते हैं। 4000 लोगों की आबादी, समुद्र तट पर वो गांव पाया जाता है। वहाँ पर से एक ज़माने में शक्कर नाव के ज़रिए पोर्टुगीज भेजा जाता था। उस गांव का नामकरण 1 जनवरी 1787 को हुआ, जब देश फ्रांसीसी कॉलोनी था, और वहाँ पर एक विकोंत रहते थे, विकोंत दे। तब वो नाम आता है जिस नाम पर आज ये गांव जाना जाता है। उस गांव में एक हॉस्पिटल भी पाया जाता है। अब जो आखिरी संकेत हम आपको देते हैं, जिसके जरिए आपको पता भी चल जाएगा कि हम किस गांव के बारे में बात करें, उस गांव में आज एक म्यूजियम पाया जाता है, और वो म्यूजियम आधारित है ऑन रॉबर्ट एडवर्ड हार्ट।

गीत गाथा देश की। ये प्रोग्राम रेडियो मनोरंजन के लिए ऊपर शाम 4 बजे से लेकर अभी तक चला और काफ़ी रोचक था। बहुत से लोगों ने भाग लिया, बहुत से फ़ोन कॉल्स आए, बहुत से व्हाट्सएप मैसेजेस भी आए। आज हमने एक गांव की तलाश की जिस पर हम आपको समय समय पर संकेत देते रहे, टिप्स देते रहे। जो पहला टिप था वो कि उस गांव की आबादी लगभग 4,000 लोगों की है। दूसरा टिप वो समुद्र तट पर पाया जाता है। तीसरा, एक ज़माने में वहाँ पर शक्कर नाव के ज़रिए बोट भेजा जाता था निर्यात के लिए। फिर हमने आपको बताया कि 1 जनवरी 1787 को जब देश एक फ्रेंच इल डे फ्रांस के नाम से जाना जाता था तो उस गांव का नाम वहाँ पर रहने वाले एक विकोंट पर रखा गया जो उस गांव में बहुत विकास कर रहे थे, डेवलपमेंट कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने आपको टिप दिया कि उस गांव में आज एक हॉस्पिटल पाया जाता है। और अंतिम टिप जो हमने आपको दिया, उस गांव में आज एक म्यूजियम पाया जाता है, रॉबर्ट एडवा हार्ट मेमोरियल म्यूजियम। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया अंत में और गांव का नाम है सुयाक, और सुयाक नाम रखा गया है ऑन विकोंट दे सुयाक 1787 को। जिन जिन लोगों ने भाग लिया बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारे प्रोग्राम में भाग लेते रहें। जिन लोगों ने सुना और जिनको ये प्रोग्राम अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। अगले शनिवार को फिर से एक ऐसा ही रोचक प्रोग्राम लेकर हम हाजिर होंगे। थोड़ी देर में आपकी मुलाकात होगी पूनम जी से। अभी के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय मॉरिशस।

0: पुराने नगमे।
1: 5:06 हो चुके हैं। नमस्ते आदाब, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपके साथ पूनम, और आज एक प्यारा सा घंटा जो है हम एक ऐसी आवाज़ को देने वाले हैं जो दिल को छू जाती है, मिठास साथ की और सुरों का जादू जिसकी ज़ुबान पे इतने अच्छे से है कि वो हमारे को मिठास चखाते रहते हैं, क्योंकि ऐसी आवाज़ बहुत ही रेयरली किसी के पास होती है। तो चलिए इन खूबसूरत गीतों के साथ शुरू करते हैं हम अपना नया ऐसा प्रोग्राम जिसमें श्रेया घोषाल को हम ऐड करते हैं, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है इसमें ऐसे लोगों को बीच में हम लेकर आएंगे जो उनकी ज़िंदगी को संवारते चले गए और उन्होंने हमारी ज़िंदगी को खूबसूरती से संभाला। तो उसे कहते हैं श्रेया घोषाल।
2: RM3 Radio.

0: पुराने नगमे।
1: 5:11 हो चुके हैं और हम बात कर रहे हैं श्रेया घोषाल का जन्म। जी हाँ, उनका जन्म हुआ 12 मार्च 1984 को। बचपन से ही उनको संगीत का बहुत ही मतलब क्रेज़ था। कहते हैं कि उनको बहुत सीखने का दिल इच्छा हमेशा करती थी कि काश मुझे कोई संगीत सिखा जाए। और उनकी ज़िंदगी में ऐसा ही हुआ, जैसे उन्होंने चाहा उनको वो ही मिलता चला गया। तो उन्होंने ज़िंदगी में बचपन के ही टाइम से संगीत सीखना शुरू किया छोटी सी उम्र में, और अपनी पहचान बना ली आज बॉलीवुड में एक बहुत बड़ी स्टार यानी कि सिंगर स्टार की।
2: RM3 रेडियो।

0: पुराने नगमे।
1: हम बात कर रहे हैं श्रेया घोषाल की। श्रेया घोषाल ने सारे गावा पा जीतकर अपने सफर की शुरुआत की और फिर संजय लीला भंसाली ने उन्हें मौका दिया फिल्म देवदास में। बस वहीं से हिस्ट्री बन गई क्योंकि उनकी आवाज़ में इतनी सॉफ्टनेस थी और पावर भी थी, इसलिए उनका हर गाना दिल को छूता चला गया और आज वो इतनी फेमस है पूरे वर्ल्ड में कि जहाँ भी जाती हैं कोई भी उनकी आवाज़ अच्छे से पहचान लेता है कि ये श्रेया घोषाल है। कई लोग उन्हें सेकेंड लता मंगेशकर भी कहते हैं।
2: RM3 Radio.

से बम फटे, एटम बम हो जाए विस्फोट। आशिकों की है शामत,

0: पुराने नगमे।
1: 5:29 हो चुके हैं दोस्तों। तो श्रिया घोषाल की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेंड यानी कि शीलादित्य मुखोपाध्याय से शादी की। उनकी लव स्टोरी बहुत ही सिंपल और दिल को छू लेने वाली है, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ना थोड़ा सा प्राइवेट रखा, कभी किसी को पता ही नहीं चलने दिया कि उनकी ज़िंदगी में कोई है, और वो आराम से बस कॉन्सेंट्रेट करती रहीं अपने काम पर, अपनी फैमिली पर, अपने माँ बाप पर, और सबसे ज़्यादा कहते हैं उन्होंने अपना काम किया अपने गले पर, मतलब अपने गलों के जितना उन्होंने अपने गले को टाइम दिया, जितने रियाज किया, जितनी मेहनत की, साथ साथ उन्होंने अपनी जिंदगी को भी बहुत खूबसूरती से सवारा।
2: RM3 Radio.

0: पुराने नगमे।
1: दोस्तों 5:38 हो चुके हैं और हम बात कर रहे हैं श्रेया घोषाल की। जी हाँ, ऐसी सिंगर, ऐसी जो आवाज़ जिसमें इतनी प्यार और इतनी खूबसूरती बसती है, तो वो नाम है श्रेया घोषाल का। कहते हैं कि श्रेया घोषाल जो म्यूज़िक की दुनिया है ना, उसमें पूरी तरीके से एक्टिव हैं। यही नहीं कि सिर्फ लाइव कंसर्ट्स करती हैं, वो रियलिटी शोज़ भी करती हैं, उसमें नज़र आती हैं और फिल्मों में लगातार गाती रहती हैं। और ख़ास बात ये भी है कि सिर्फ फिल्मों में ही वो गाने नहीं गाती हैं, भजन भी गाती हैं, गज़ल भी गाती हैं और अलग अलग तरह के भाषाओं में गीत गाती हैं। उनकी आवाज़ उतनी खूबसूरत लगती है जैसे हर अंदाज में हर दिल के करीब उनकी आवाज़ हो जाती है।
2: RM3 Radio.

0: पुराने नगमे।
1: 5:46 हुए हैं और हम बात कर रहे हैं श्रिया घोषाल की, बात जो कि ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने कभी एक्टिंग तो नहीं की, बट फिर भी वो जब लाइव प्रोग्राम्स करती हैं तो उनकी एक्टिंग भी साफ नज़र आती है। उन्होंने बहुत सारे सुपरहिट मूवीज़ के अंदर सुपरहिट गाने दिए हैं, जैसे कि देवदास, परनीता, जवी मेहताश की 2, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, सिंह किंग, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, और आगे बढ़े तो रासलीला, रामलीला, ये जवानी है दीवानी, चेन्नई एक्सप्रेस, बॉडीगार्ड, कॉकटेल्स, राज 3, और लेटेस्ट में तो वही उन्होंने पठान, जवान, तो झूठी मैं मक्कार जैसी फिल्मों में गाने गाए हैं। और उनका ये जो स्पेशली गाना है ना, घूमर, क्या बात है, इसको सुनने में तो और आनंद आएगा। चिल्ली जी, सुनते हैं ये गाना।

0: कई फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं और अलग अलग भाषाओं में कई सम्मान मिले हैं। उनकी आवाज़ ने सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं पूरे देश का दिल जीता है और कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में ही उनका नाम चलता है, उनका सिक्का बोलता है और आज भी वो म्यूज़िक की दुनिया में एक खास आवाज़ों में से गिनी जाती हैं।
1: RM3 Radio.

तो दोस्तों बस यहीं तक रखते हैं आज का ये सुरीला साज। श्रेया घोषाल के गानों ने दिल को फील दिया हो तो ऐसे ही साथ रहिए। मैं हूँ आपके साथ पूनम, आप कहीं मत जाइएगा। इसके बाद आप सुन पाएंगे विस्तार से समाचार, उसके बाद नई सोच, और रात को 9 बजे तक दिलों की आवाज़ में तक मैं आपके साथ हूँ।

0: Club Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सऊदी अरब ने हज 2026 के लिए 15 साल से कम उम्र के बच्चों के वीजा रद्द किए। मॉरिशस में 5 किशोर प्रभावित, मंत्री शकील मोहम्मद संपर्क में। पब्लिक प्राइवेट सहयोग और निवेश पर जोर, जूनियर मिनिस्टर धनेश्वर दामगी ने पोल्ट्री में निजी क्षेत्र से बजट पर चर्चा की। शिवाजी जयंती पर इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय स्तर पर शिवाजी दिवस, महाराष्ट्र दिवस भी मनाया गया, प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि। विदेश में माली में हालात बिगड़े, जिहादी हमलों के बीच कई शहरों में हिंसा, रक्षा मंत्री की मौत से संकट गहराया। अरब समाचार विस्तार से। सऊदी अधिकारियों ने फैसला लिया है कि हज 2026 के लिए 15 साल से कम उम्र के बच्चों के वीजा रद्द किए जाएंगे। मॉरिशस में हज के जिम्मेदार मंत्री शकील मोहम्मद के अनुसार ये फैसला रात के समय लिया गया। वे सऊदी अरब के हज मंत्रालय, वहां के डिप्टी मिनिस्टर और मॉरिशस में सऊदी अरब के राजदूत के साथ संपर्क में है ताकि आधिकारिक जानकारी मिल सके और सभी संभावित समाधान देखे जा सके। यह अचानक हुआ बदलाव प्रभावित परिवारों और आयोजकों के लिए चिंता का विषय।

0: और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बाधाओं को दूर करना शामिल रहा।
1: Les gros challenges que fait l'industrie en ce moment, notamment l'augmentation des prix des produits importés, qui a directement le coût de la construction. Nous avons évoqué la nécessité de revoir les fixed price contracts, parce que ça impacte beaucoup d'entreprises, particulièrement dans le contexte actuel. Le problème de main-d'œuvre a été évoqué et nous avons fait des propositions aussi par rapport à la facilitation de la main-d'œuvre étrangère pour pallier au manque de compétences.
2: Aujourd'hui, quand un navire arrive et que nous devons recevoir un permis, nous devons courir, l'expression, à gauche, à droite, pour pouvoir avoir ce permis et livrer la marchandise. Donc, cela retarde tout simplement le dédouanement et le process de retrouver la marchandise sur les rayons où il faut. Donc, nous avons mis l'emphase dessus, accentuant encore une fois qu'il y a ce besoin d'urgence de régulariser cela afin que les différents government agencies soient intégrés avec la douane comme il y a une provision déjà.
3: Secteur privé, il a pas investi. Mais secteur privé, il peut demander l'espace, il peut demander on lève bah, tout ça, une contrainte administrative qui est là. Aujourd'hui, nous avons un problème de travailler. Alroden PMI pour amener travailler dans Maurice. Voilà ce qu'il nous demande. Pas le gouvernement donne l'argent. Le gouvernement peut pas casse pour donner. Mais le gouvernement, ce qu'il est capable de faire, il est capable de faire élimine tout ça, un obstacle qui nous est là.
0: निजी सेक्टर के साथ इस बैठक के बाद जूनियर मंत्री धनेश्वर दामरी ने सकारात्मक उपलब्धियों की बात कही।
4: The way forward qu'il nous trouvait, qu'il nous proposait, c'est-à-dire le gouvernement nous facilite l'investissement à travers un partenariat public-privé dans quatre majeures connectivités. C'est ça un catalyse pour l'économie. Un, c'est l'aéroport. Deuxième, c'est le port. Troisième, c'est digital connectivity, numérique. Et quatrième, c'est financial connectivity.
0: Budget pour le salam mashwari agle hafte jari rakhe jayenge.
5: वृहद योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की वर्षगांठ के अवसर पर आज इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय स्तर पर शिवाजी दिवस का आयोजन किया जा रहा है। मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन, मराठी स्पीकिंग यूनियन और मॉरिशस मराठी कल्चरल सेंटर ट्रस्ट के सहयोग से रंगों से भरे त्यौहार का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर महाराष्ट्र दिवस को भी मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम खास मेहमान है। मराठी समुदाय के जरिए महाराष्ट्र राज्य से मॉरिशस लाई गई विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को उजागर किया जा रहा है और इन्हें भविष्य की पीढ़ियों में प्रोत्साहित करने पर बल दिया जा रहा है। तमारन समुद्र तट पर इस शनिवार अधिकारियों की वापसी देखी गई, जहां पर्यावरण मंत्री भी मौजूद थे। समुद्र तट का एक हिस्सा इरोजन से प्रभावित हो रहा है। इसकी वजह पास की कई नदियां और नाले हैं जो नदी के मुहाने के पास मिलते हैं। कुछ महीने पहले इन जल प्रवाहों को बिना अनुमति बदल दिया गया था, जिससे पानी का रुख अपने प्राकृतिक रास्ते से हट गया। अब काम जारी है ताकि पानी के तेज प्रवाह को कम किया जा सके, जो समुद्र तट पर टकरा रहा है। अब राजनीति की बात करते हैं। आज दोपहर रोजल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉल बेरांजे ने घोषणा की कि जल्द ही वाकुआ फिनिक्स नगर पालिका में एक संस्थापक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने इस बैठक के उद्देश्य को स्पष्ट किया और साथ ही कई अन्य राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी बात रखी।
0: अपने नए राजनीतिक दल के 9 में से 7 सदस्यों के साथ पॉल बेरांजे ने एम्ब्रोस गली रोजिल में प्रेस से मुलाकात की। देश के 20 चुनाव क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बन कमरों की बैठक के बाद पॉल बेरांजे ने अगले सोमवार को अपने नए दल फ्रों मिलिटेंट प्रोग्रेसिस्ट के पहले जुटाव का ऐलान किया।
6: Nous vous donne nous à sa congrès fondateur là nous vous donne nous 3 mois pour qu'il nous a une vraie l'assemblée de délégués. Congrès fondateur donc 2h30 samedi prochain à la salle des fêtes de la municipalité de Vaqua Phoenix. Quant à nous, nous parlons le nom Front Militant Progressiste. Mais le logo nous donne un petit peu de temps. Parce qu'il nous parlait, c'est une archique ambiguïté, une possibilité de confusion, nous pas intéressés. Donc nous pouvons finaliser là, nous prenons rencontre avec le commissaire électoral.
0: प्रेस के सवालों के जवाब में उन्होंने समसामयिक विषयों पर भी बात की, खासकर भावी बजट के

0: सलाह मशवरे के संबंध में उन्होंने अपनी ये राय दोहराई कि देश को एक स्थायी वित्त मंत्री की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही वे शाग उस मुद्दे पर बात करेंगे।
1: और जैसे कि हम बता रहे थे, वृहद योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की वर्षगांठ के अवसर पर आज इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय स्तर पर शिवाजी दिवस का आयोजन किया जा रहा है और वहां पर मुख्य मेहमान है डॉक्टर नवीन राम गुलाम। प्रधानमंत्री को सुनते हैं।
2: Nous avons tout bonne disposition nécessaire. Nous avons fait l'économie plus résiliente encore. À cause de ça, nous avons fait preuve de solidarité. C'est dans ce contexte, ça m'a dit nous qui m'ont pas le fait bidier là. Pourquoi vous pouvez trop content faire bidier là, là, moi? Moi, je suis pas passant le djoun. Et là, je peux dire. Mais moi, pas passant quand l'époque difficile. Moi, je laisse le djoun là, 6 euros là. Moi, je pas 6 euros là, c'est bien. Parce que c'est bizarre qu'on est que même pour régler. Il ne fallait pas tout l'économie là aussi. Nous avons besoin qu'on fait balance. La cause ça qui nous besoin d'être bien, qui met pour faire pour qu'on faire nous gouvernement bien résilient. Si on gagne ça pétrole de Congo là, et nous gagne de laine, il y a un avantage pour nous. Moi convaincu moi. Si nous mettons la tête ensemble, nous travaillons dans l'unité, nous fait, nous comprend, nous gagnons une différence. Mais là nous avons danger devant. Danger là, il n'est pas pour moi, il n'est pas pour X, c'est pas pour Y, c'est pour tout Mauricien qui peut vivre là. Nous devons qu'on adapte et faire des morts, trouver une solution contre les difficiles.
1: इस समारोह के दौरान मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन के प्रधान बलराज नारू ने फेडरेशन के विस्तार कार्य के लिए सरकार द्वारा 50% जमीन दान करने के लिए उसके प्रति आभार जताया। यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। उनको सुनते हैं।
3: Le gouvernement, à la requête de la fédération, nous paye un lopin de terre de 50 pièces à côté le Maharaj Tabawan. For parking facilities, beaucoup d'Anyavar Prime Minister ou gouvernement qui croient dans l'unité de la diversité, nous à côté, du monde un peu oublié parfois, en 2002, quand nous recevons nos lettres Vintent, dans sa fameuse Triangle Square là, nous touchons, les bons, vous étiez sa première ministre, parce que c'est moi ça. Nous touchons ce choc culturel qui se démord nos bâtiments.
1: ऑटिज्म जागरूकता दिवस के अवसर पर जो इस सप्ताह ब्राउन से क्वाड मेंटल हेल्थ केयर सेंटर में मनाया गया, एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है ताकि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की जल्दी पहचान के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने यह भी घोषणा की कि फ्लैक में जल्द ही एक विशेष डे सेंटर स्थापित किया जाएगा।
4: ब्रांसेक्वा के डेकिया सेंटर में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से प्रभावित बच्चों के लिए विशेष देखभाल की जा रही है। फिलहाल करीब 170 बच्चों को यहां सहारा दिया जाता है, जहां हर बच्चे के लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन है ताकि उसके विकास और रोजमर्रा के जीवन में सुधार हो सके। यहाँ डॉक्टर बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, नर्स, एजुकेटर आदि की सेवाएं इस केंद्र में बच्चों के लिए मौजूद हैं।
5: Nous avons un psychologue, nous avons un infirmier aussi, un éducateur qui nous est dans le centre là.
4: माता-पिताओं को अपने हाल पर नहीं छोड़ा गया, उन्हें भी मनोवैज्ञानिक सहायता और नियमित मार्गदर्शन दिया जाता है ताकि वे रोजमर्रा की चुनौतियों का बेहतर सामना कर सके। हम परिवारों की भी मदद करते हैं, अभिभावकों के लिए कई सपोर्ट ग्रुप्स हैं ताकि वे अपनी समस्याओं और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सके। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने फ्लैक में ऑटिज्म के लिए एक नए डे केयर सेंटर खोलने की घोषणा की। सरकार के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी वर्ग के लोगों की जरूरतों को पूरा करें। हम मानते हैं कि अभी ऑटिज्म के बच्चों के लिए इतनी सुविधाएं मौजूद नहीं है, अध्यापकों की भी कमी है, इसका समाधान ढूंढा जाएगा। अनुमान के अनुसार मॉरिशस में करीब 13,000 लोग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से प्रभावित हैं।
1: और चेस मेमोरी सर्किस स्कूल में 43 बच्चों के लिए खास पहल, उन्हें 3D डोमिनोज का पहला सेट दिया गया जो सीखने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। इस पहल के जरिए इन बच्चों को

0: निक्षमता बेहतर ढंग से विकसित करने का अवसर मिलेगा। संदेश साफ है, हर बच्चे को आगे बढ़ने के लिए सही साधन मिलना चाहिए। और एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जो जवान लड़कियों को ही हो सकती है। ये एक वास्तविक चिंता का विषय है, क्योंकि ये बांझपन का एक बड़ा कारण भी बन सकता है। हमारी टीम जीटीओ अस्पताल गई थी, जहां रोज लगभग 50 से ज़्यादा मरीज अपना इलाज करवाते हैं, मुख्य रूप से दवाइयों के माध्यम से, और ज़्यादा गंभीर मामलों में जटिल सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। समान अवसर प्राप्त करना और भेदभाव के खिलाफ लड़ना, यही विषय था उस कार्यशाला की जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन द्वारा रिजवी में आयोजित की गई। इसमें 20 से अधिक स्कूलों ने भाग लिया और विद्यार्थियों ने कविता, सलाम और गीत के माध्यम से अपनी प्रस्तुतियां दी। इसका उद्देश्य युवाओं में समान अवसर और बिना भेदभाव के समाज के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। और एमजीआई के सुब्रमण्यम भारती लेक्चर सेंटर में आज 2 मई को हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा मंच संचालक यानी मास्टर ऑफ सेरेमनी कौशल पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये इस श्रृंखला का दूसरा बैच था, जिसमें हिंदी के विद्यार्थी सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े अनुभवी संचालक और उभरते हुए उत्साही एमसी ने भाग लिया। दोनों सत्रों को मिलाकर कुल 250 प्रतिभागियों ने इस पहल से लाभ उठाया। ज्यादा जानकारी आशीता रखो के साथ।
1: चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को
2: मंच संचालक या कहें मास्टर ऑफ सेरेमनी, वह एक व्यक्ति जो पूरे कार्यक्रम का चेहरा और आवाज होता है, और भूमिका दर्शकों का स्वागत करने से माहौल बांधे रखने तक पूरी जिम्मेदारी उठाता है, तथा अपने शब्दों, हाव भाव और कभी कभी हल्के फुल्के हास्य के जरिए दर्शकों को सक्रिय और रुचि बनाए रखता है। इसी विषय पर आधा दिन चली एक कार्यशाला में प्रतिभागियों को भावभंगिनी, मंच पर नियंत्रण, प्रोटोकॉल की समझ और आत्मविश्वास बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया।
3: पहले से तैयारी करना एक अत्यंत आवश्यक चीज़ होती है, लेकिन ऐसा कई बार होता है कि तैयारी करने का समय नहीं मिलता, तो क्या हम अच्छे एमसी नहीं हैं? ऐसा नहीं होता, चाहे वह शैक्षिक कार्यक्रम हो या मनोरंजक, कुछ भी। जब आप वहाँ पर जाते हैं, परिस्थिति को देखते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है।
2: देश के सामाजिक संगठनों के अनुभवी एंकरों ने भी नई टेक्निकों पर नियंत्रण लाने की बात की।
4: हाफ दी सेशन चला, वो मास्टर ऑफ सेरेमनी के जो स्किल में वो बहुत लाभदायक हैं। जैसे हमें पता नहीं था कैसे पब्लिक को हम एंगेज रखें, और हमारे जो बॉडी लैंग्वेज होता है और वो जो टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है, किस तरह से हमें उसको लेकर चलना चाहिए।
5: मैं समाज सेवा में बहुत रुचि रखता हूँ। कभी कभार मुझे मंदिरों में बुलाया जाता है प्रवचन करने के लिए, और यहाँ पर हमें काफ़ी सारे टिप्स मिले हैं जो शायद यूट्यूब, गूगल या चैट जीपीटी पर भी उपलब्ध नहीं है। इससे अभ्यास के पश्चात मैं बहुत अच्छी तरह से संचालन कर पाऊँगा, विशेषकर जब मुझे प्रवचन करने के लिए बुलाया जाएगा।
2: कार्यशाला के माध्यम से मंच संचालन का डर व इस वाक कौशल पर पकड़ बनाए रखते हुए प्रभावशाली संप्रेक्षण की आवश्यकता पर भी बल डाला गया।
6: इसका मूल उद्देश्य यह है, लोगों को उचित तकनीक सिखाना, कि अगर आपको कोई हिंदी का कार्यक्रम, चाहे सांस्कृतिक, चाहे धार्मिक, चाहे कहीं भी आप खड़े हो जाएं मंच पर और आपको हिंदी में बोलना है, तो उचित भाव भंगिमा के साथ उचित शब्दों का चयन करते हुए आप उस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चला सकें। हम बता रहे हैं कि किस तरह से बोलना है, किस तरह से खड़े होना है, आपको किस तरह से अपनी भावनाएँ व्यक्त करना है, क्योंकि मेरा मानना है बिना ट्रेनिंग, बिना उचित शिक्षा के आप कहीं ना कहीं मर्यादा का पालन नहीं कर सकेंगे।
2: कुल मिलाकर ये कार्यशाला प्रतिभागियों के लिए एक समृद्ध अनुभव साबित हुई, जिसने उन्हें एक सफल और आत्मविश्वासी मास्टर ऑफ सेरेमनी के लिए नई दिशा दी।
0: आपको विदेश में माली में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। अप्रैल के अंत से सुरक्षा स्थिति गंभीर हो गई है। जिहादी समूहों और विद्रोहियों के समन्वित हमलों ने राजधानी बमाको समेत कई अहम शहरों को निशाना बनाया है। रक्षा मंत्री की मौत हो चुकी है और उत्तर के कुछ इलाके सशस्त्र समूहों के कब्जे में चले गए हैं। हालात के चलते लोगों का

ने पाकिस्तान के माध्यम से जो प्रस्ताव दिया था उसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बातचीत और अपने परमाणु मुद्दे पर चर्चा के बदले अमरीका के प्रतिबंधों में राहत की मांग शामिल थी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नाव डूबने से हुए हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। शुक्रवार को बचाव दल ने एक माँ और उसके 4 साल के बेटे के शव बरामद किए जो एक दूसरे को आखिरी बार गले लगाए हुए थे। क्रूज बोट के पलटने से कुछ ही पल पहले रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पर्यटक ठंडे मौसम और तेज हवाओं का मजा लेते हुए दिख रहे हैं। बोट पर मौजूद लोगों को आसपास मंडरा रहे खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। देश विदेश की खबरों के बाद आइए अब मौसम का हाल सुनते हैं। दक्षिण पूर्व में पाए जा रहे सक्रिय बादलों का असर भी अभी हमारे मौसम पर पड़ रहे हैं। पूर्वानुमान आज रात देश के पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल पार्टों पर बादल घिरे रहेंगे और रहकर वर्षा होगी। अन्य जगहों पर भी बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों में कोहरे भी छाए रहेंगे, खासकर ऊंचे इलाकों पर। और कल दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। तापमान सेंट्रल पार्टों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ प्रभावित जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की तरफ 3 मीटर 50 सेंटीमीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है। वैसे रात्रि के समय लहरें कम ऊंची रहेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है, खासकर पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी लगूनों में। कल सूर्योदय 6:26 पर होगा।

इसी के साथ ही समाचार समाप्त हुए। इसे आप तक पहुंचाने में हमें फैजान और कोविला का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। सेक्शन 18B द्वारका भारत में, सेक्शन 18B द्वारका भारत में 74 साल के 74 years old के श्री बाल्मीकि किशन जो दत्त नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल शाम पाँच बजे भारतीय समय अनुसार कल शाम के 5 बजे सेक्शन 18B द्वारका भारत के वेंकटेश्वर अस्पताल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली भारत की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 5 PM। गीतांजलि रोड थ्रॉ बुटीक ट्रियोले में, गीतांजलि रोड थ्रॉ बुटीक ट्रियोले में 74 साल के 74 years old के श्री जगदीश बिगू जो जगदीश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर गीतांजलि रोड थ्रॉ बुटीक ट्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टर्मिनस ट्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। कालीमाई रोड ला रोजा न्यू ग्रोव में 89 साल की 89 years old की श्रीमती सावित्री सिन्हान पैदाशी नाम चितामन और जो सुशील नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर कालीमाई रोड लाहौसानी ग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मौदालबिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। देवानी रोड सामौता बिजुकाप में 83 साल के श्री राजेंद्र प्रसाद गुहा जो गाँव सो नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे उनके बेटे श्री शेखर गुहा के घर देवानी रोड सामौता बिजुकाप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बैलोम की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 12:30 PM। बॉशेरी रोड मुकामी 69 years old के श्री रामदीन बच्चू

0: रामदीन बच्चू जो कैसन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल। उनकी अर्थी वैसे आज उठ चुकी है आज दिन की 2:15। Mon Mascal Road Petit Raffrémi, Mon Mascal Road Petit Raffrémi. 67 साल के, 67 years old के श्री सूर्यदेव बोहला, श्री सूर्यदेव बोहला जो बाबुआ नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के 10:30 बजे। कल दिन के 10:30 बजे उनकी बेटी श्रीमती नेहा लोचन के घर मोमास्कर रोड पर चिराफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दफनाने के लिए कब मालूम होगी शमशान भूमि ले जाया जाएगी। फ्यूनरल टुमारो एट 10:30 AM। रॉयल रोड ग्रैंड पॉइंट ऑफ इमामी, रॉयल रोड ग्रैंड पॉइंट ऑफ इमामी 59 साल के, 59 years old के श्री राजेंद्र कुमार चातौर सिंह, श्री राजेंद्र कुमार चातौर सिंह जो सूरज नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे। कल दिन के 11 बजे उनके घर रॉयल रोड खान पॉइंट पीमा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉइंट पीमा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 11 AM। पावे रोड रिविया जुरान पॉमे, पावे रोड रिविया जुरान पॉमे 82 साल की, 82 years old की श्रीमती फुलमत बांटू, श्रीमती फुलमत बांटू पैदाइशी नाम रोसुन, पैदाइशी नाम रोसुन जो सेवंती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे। कल दिन के 11 बजे उनकी बेटी श्री विनय बांटू के घर पावे रोड रिविया जुरान पॉ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए उत्तरी रिविया जुरान पॉ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। नंबर 9 शादाक रोड एब्सन सरी इंग्लैंड में, नंबर 9 शादाक रोड एब्सन सरी इंग्लैंड में 79 साल के, 79 years old के श्री सोमा सुंदरम कॉपेन, श्री सोमा सुंदरम कॉपेन जो राजू नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, वैसे उनकी अर्थी भी इंग्लैंड में उठाई जाएगी। उन ये शोक समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। नंबर 9 शादाक रोड एब्सन सरी इंग्लैंड में 79 साल के, 79 years old के श्री सोमा सुंदरम कॉपेन जो राजू नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी शुक्रवार 8 मई को, शुक्रवार 8 मई को उनके घर नंबर 9 शादाक रोड एब्सन सरी इंग्लैंड से उठाकर सुबह साढ़े नौ बजे उनके घर नंबर 9 शादाक रोड एब्सन सरी इंग्लैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रानदास पॉक सरी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन फ्राइडे 8 मई एट 9:30 AM। शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: On NBC Play,
2: NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: Continuous music,
2: RM3. You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
3: Nee so, nee so, nee so, nee so.

नई सोच। नमस्ते दोस्तों, आदाब, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज की नई सोच एक ऐसी आदत पर है जो हमें अंदर से थका देती है, यानी कि जी कंपैरिजन,

0: करना, कभी मार्क्स, कभी जॉब, कभी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स, और किसी ने ये बना लिया, किसी ने वो बना लिया, और कभी हम खुद को ही छोटा महसूस करने लगते हैं। तो लेकिन सच तो ये होता है कि हर इंसान की कहानी थोड़ी सी अलग होती है, तो तुलना कैसे एक जैसी हो सकती है। ज़िंदगी कोई भी किसी भी तरह की रेस नहीं है, किसी सफ़र के लिए ऐसा सफ़र नहीं है जहाँ पे बस भागना है, दौड़ना है। मैं हूँ आपके साथ पूनम, चलिए इस नई सोच को अपनाते हैं, खुद को किसी से नहीं, खुद से बेहतर बनाते हैं।
1: RM3 Radio.

नई सोच। दोस्तों मैं बात कर रही हूँ आज नई सोच में बहुत ही प्यारा सा सिंपल कॉन्सेप्ट, दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल छोटा मत समझिए। जो आपके पास है ना, हो सकता है वो किसी और का सपना हो, शायद उनके पास वो चीज़ बिल्कुल ना हो और वो चाह रहे हो आपके जैसा बनना, क्योंकि कंपैरिजन हमें आगे कभी नहीं बढ़ने देता, ये सिर्फ धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस कम करता है और हमें ज़ीरो पर ला के खड़ा कर देता है। तो किस बात का कंपैरिजन किसी से करना, क्योंकि ज़िंदगी तो सबकी अलग अलग है, सबकी अलग तरह से चल रही है, ज़िंदगी अपने तरीके से हर कोई चला रहा है, तो बस अपने तरीके से चलाइए और अपनी मेहनत पर पूरा कॉन्फिडेंस रखिए।

0: नहीं सो।
1: दोस्तों 6:46 हो चुके हैं और मैं हूं आपके साथ पूनम। दोस्तों हम अक्सर जो नहीं होते हैं उसी पर ध्यान देते रहते हैं और जो है उसकी वैल्यू करना भूल जाते हैं। ज़रा रुकिए, एक नज़र अपनी ज़िंदगी पर डालकर देखिए कितनी चीज़ें आपके आसपास होंगी जिनके लिए आपको शुक्रगुजार होना पड़ता है और शुक्रगुजार होना चाहिए। यकीन मानिए, जब नज़र बदलेगी ना तो नज़रिया भी बदल जाएगा और आपको सब कुछ अपने आसपास बहुत ही सुंदर और बिल्कुल बिखरा हुआ नहीं लगेगा, सब कुछ सिमटा हुआ लगेगा। अगर आपने उस चीज़ का एहसास कर लिया तो आप समझिए बिल्कुल सही राह पे हैं। और अगर आपको कहीं बिखरा हुआ सब कुछ लगे तो समझिए कहीं रुक जाइए, कहीं थम जाइए, किसी का हाथ थाम लीजिए, किसी के पीछे चल दीजिए और कहिए मुझे सवार दो, मुझे ठीक कर दो और मैं ठीक हो जाऊंगा।
2: RM3 रेडियो।

0: नहीं सो।
1: दोस्तों, हम अक्सर अपनी जिंदगी को दूसरों के एक्सपेक्टेशंस में जीने लगते हैं और धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। लेकिन याद रखिए, आपकी जिंदगी है तो फैसले भी सिर्फ आपके ही होने चाहिए। लोग क्या सोचेंगे ये सोचते रह जाएंगे ना हम, तो शायद आप कभी वो बन ही नहीं पाएंगे जो आप कभी बनना चाहते थे या बनना चाहते हैं। और बस इसी सोच के साथ मैं हूँ आपके साथ पूनम, बनी रही मेरे साथ। इसके बाद थोड़ी देर बाद जुड़ पाएंगे आप दिलों की आवाज़ कार्यक्रम में मेरे साथ 7 से लेकर 9 बजे तक। तब तक इन्जॉय कीजिए आपका ये नई सोच का कार्यक्रम। ये बहुत ही प्यारा है क्योंकि इसमें वो सीखने को मिलता है, वो बातें होती हैं जो आपके दिल में कहीं ना कहीं, दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही होती है। तो जुड़े रहिए इस प्यारे से रेखा भारद्वाज के गाने के साथ।
2: RM3 रेडियो।

0: मौलवी साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।
1: अच्छा।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4 ला।

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: 7:10 हो चुके हैं दोस्तों, शाम शुरू हो चुकी है। मॉरिशस के प्यारे सुनने वालों को और दुनिया भर से जुड़े सभी दोस्तों को नमस्ते और आदाब। और आप सुन रहे हैं RM3 रेडियो मनोरंजन में ये दिलों की आवाज़, जहां दिल की बातें दिल तक पहुंचती हैं। अपने एहसास आप भेज सकते हैं 5250620 पर और या कॉल कर सकते हैं 4028070 पर। चलिए इस शाम को शुरू करते हैं और जीते हैं आपके नाम से। और मेरा नाम है पूनम।
2: RM3 Radio.

0: की आवाज, की आवाज, की आवाज।
1: 7:20 हो चुके हैं दोस्तों, और अगर किसी का नाम दिल में है और गाना भी किसी खास के लिए याद आ रहा है तो बस वो दिल इंसान जो है ना आपके दिल के बहुत ही करीब है, और ये गाने सिर्फ उसी इंसान को डेडिकेट किए जाते हैं जो बिल्कुल अपने पास होते हैं। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ी हैं ललिता जी, और वो जो सुनाना चाहते हैं एक प्यारा सा गाना सुदेवी जी को, जो कि दिल अपना और प्रीत पराई से था, जो अभी हम चला चुके हैं। देवना जी, ज्ञानी जी, दादी जी, प्रभावती, छोटी दादी, हरीश भैया, आत्माराम भैया, सुखलाल सी, और सारे सभी परिवार को और सभी RM3 की टीम और सभी लिसनर्स के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय सूरज शर्मा साजदा जी, जो कि अपने बेटी निशाल के लिए बस इतना कहना चाहते हैं कि तुम हमारे बनो या ना बनो, पर हम सिर्फ तुम्हारे हैं। ये बात सच है, माँ बाप का जो दिल होता है सिर्फ अपने बच्चों के बीच में ही धड़कता रहता है कहीं ना कहीं। ललित जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ USA से, हरविंदर जी जुड़े हुए हैं इंडिया से, और बहुत सारे लोग जो अभी अपने मैसेजेस भेज रहे हैं, हम एक एक करके लेंगे और सभी के गाने एक एक कर कर बजेंगे। बस आप अपना मैसेज हमें भेजते रहिए 5250 6200 पर।
2: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज़ की आवाज़ दिलों की आवाज़।
1: शाम जितनी शांत होती है दिल उतना ही खुलकर सुनता है। बस ऐसे ही सुनते रहिए, सुकून मिलता रहता है। मुझे पता है जब आप लोगों के मैसेजेस आते हैं या आप कॉल करते हैं तो उम्मीद भी करते हैं कि आपके मैसेजेस पढ़े जाएं, आपके फ़ोन उठाए जाएं और आपके दिल की बात वहां तक पहुंचाई जाए जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं। तो हमारे साथ जुड़ी हुई है इस समय अनीता जी फ्लिक ऑफ फ्लाक से और एक प्यारे से गाना सुनना चाहती हैं सभी परिवार और फ्रेंड्स के लिए, और कहती हैं कि रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो सुबह ज़रूर आती है। सच बात है, सुनीता जी भी जुड़ी हुई है हमारे साथ और एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही हैं। बस कह रही हैं कि जितना मन मौजी होता है उतनी ज़िंदगी अच्छी होती है। जितने चंचल रहोगे खुश रहोगे, जितना ज़्यादा अपने आप के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे वहाँ पर ही तकलीफ़ें शुरू हो जाएंगी। फुलवंती जी जुड़े हुई हैं और वो भी एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही हैं और इतना कह रही हैं कि सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस दुनिया में, यहाँ पर इस संसार में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है, यहाँ पर हर किसी की इंपॉर्टेंस है। याद रखना, ये ना हो कि कल कोई ये सोचे कि अरे हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमें कोई पूछता नहीं है। सबकी वैल्यू है, सब एक ना एक दिन बस चमकेंगे। अपने बारे में सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए। थैंक यू फुलवंती जी इतना प्यारा मैसेज देने के लिए। और आप सबके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना जिंदगी के, जो लाइफ के टाइम्स होते हैं, जो आप लोग इतना बताते हैं दिल खोल के और कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, सच में ये बहुत बातें इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे ही मैसेजेस करते रहिए 5250-6200 पर। गाने आप सबके लिए
2: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की
1: आवाज। अगर इन गानों ने आपको मुस्कुराहट दी हुई है तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। ये गाने आप सबके हैं, आपकी पसंद के गाने हैं। मैं तो बस सिर्फ चलाने वाली हूँ यहाँ पे। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बीना जी काथोबोन से, जो कहती हैं कि पूरे परिवार और दोस्तों के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती है और कहती हैं कि जैसे भी दिन हो अच्छे से कट ही जाते हैं। सच बात है। ज्योति जी जो कि आशनी रेखा सुरेखा AMD मधु फैमिली को गाना सुनाना चाहती हैं, साथ में बाबू अनंतवा जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और सर कहते हैं एक बात बहुत छोटी सी कि मैं काम तो कर रहा हूँ दुकान पे, पर मेरा दिल जो है ना रेडियो में अटका हुआ है कहीं पर, और ये जो पुराने गाने चलते हैं ना ये तो बहुत ही दिल के पास जुड़े रहते हैं। माला जी साथ में हैं कथबोन से और वो भी यही कह रही हैं ओल्ड इज गोल्ड, जैसे ही पुराने गाने चलते हैं तो मैं पता नहीं क्यों दौड़ी दौड़ी भागी भागी रेडियो के पास आ जाती हूँ और रेडियो से इतना ही कहती हूँ कि क्या तुम मेरा गाना चलाओगे। और सच है, हम आपका गाना बिल्कुल चलाएंगे। मनीषा जुड़ी हुई हैं और सुनाना चाहती हैं अपने हैंडसम हस्बैंड विमल को एक प्यारा सा गाना, डॉटर स्पेशली वैष्णवी को भी, कि कह रही हैं कि जैसा मर्जी कर लो रेडियो जो है हमारे गाने ज़रूर बजाता है। पता है क्यों? क्योंकि हमारा दिल उसके साथ जुड़ा होता है। तो बस हम इस चार दीवारी में हैं, आप उस चार दीवारी में, पर हमारा दिल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। इंजॉय कीजिए आपके गाने और थोड़ी देर में सुन पाएंगे आप दिलों की आवाज़ की एक ऐसी चीज़ जो आपने बहुत मुश्किल से सुनी होगी। चलो इंजॉय करते हैं ये गाना।
2: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की
1: आवाज। 8:10 हो गए हैं और कभी कभी बस सुनते रहिए, क्योंकि हर जवाब शब्दों में नहीं होता। ज़िंदगी की भाग दौड़ में कुछ पल सिर्फ अपने लिए निकालिए, क्योंकि हम हमेशा यही सोचते रहते हैं, अरे हमने ये करना है, वो करना है, सब कुछ अपने आप होगा। और हम कभी होंगे या नहीं होंगे, तब भी सब कुछ होता आ रहा है, होता हुआ चलता रहेगा। तो ये टाइम आपका है, बस रिलैक्स हो जाइए। रात का समय है, कुछ सोचना नहीं, कुछ भागम दौड़ नहीं करनी, एक जगह बैठ जाइए, सिमट जाइए, थोड़ा टाइम अपने लिए निकालिए। तो चलिए भाई, हमारे साथ इब्राहिम जी जुड़े हुए हैं पुटलुई से, और कहते हैं कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। ना जाने कौन सा दर्द किसके दिल में होता है, और कभी कोई दर्द भी नहीं होता तो ऐसा एहसास ज़रूर होता है। किसी का घर तो है जिसके यहाँ पर गुजरे थे हमारे वो समय, और हम उस समय जाने को फिर से दिल करता है कि काश वो समय वापस लौट के आ जाए। रिहाना जी जुड़ी हुई हैं साथ में और कहती हैं कि कब से रेडियो मुझे इतना अच्छा लगने लगा मैं नहीं जानती, पर गाने बहुत पसंद आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सब इंजॉय कीजिए, आपके गाने इंजॉय करते रहिए। ये है आपका दिलों की आवाज और मैं हूं आपके साथ पूनम।
0: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो

0: दिलों की आवाज।
1: 8:24 हो चुके हैं शाम के और आप जुड़े हुए हैं आपके ही फेवरेट दिलों की आवाज़ प्रोग्राम के साथ और मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सचिन जी और जो कि बहुत ही प्यारी सी गज़ल का एक फरमाइश की है ज़रूर चलाएंगे जी। ललिता जी जुड़ी हुई हैं और साथ में गुलशन जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ और कह रहे हैं कि मेरी मामा जो है ना सबसे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं क्योंकि हमेशा उन्होंने हर दुख सुख में मेरा साथ दिया है। तो प्रभा मामा के लिए, सिस्टर दीक्षिता एंड भूला फैमिली के लिए और गॉर्जियस गर्ल आयशा के लिए और स्पेशली आरजे हंसनी के लिए जिनको बहुत ही वो ज़्यादा पसंद करते हैं उनके लिए एक प्लीज़ एक ज़रूर ये वाला गाना ज़रूर चलाइएगा। तो ये मुझे लगता है सबसे आखिरी गाना होगा गुलशन जी आपके लिए क्योंकि उस गाने का मूड ही ऐसा है जैसा आप एकदम जाते जाते मूड बना सकें। उसके साथ में हमारे साथ जुड़ी हुई है स्विनल जी और वो पूरे परिवार के लिए और सभी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के लिए और पूरी RM3 रेडियो मनोरंजन के लिए सभी टीम के लिए गाना सुनना चाहती हैं। साथ में ही रिहाना जी कह रही हैं कि गाने तो बहुत अच्छे चल रहे हैं और मैं मूड में आ गई हूँ पर हमारे एक दोस्त ऐसा है जो कि थोड़ा सा उदास है तो क्या कर सकते हैं। उदासी को दूर करने के लिए कोई गाना है तो ज़रूर चलाएगा। तो हम बिल्कुल चलाते हैं आप सबके लिए गाने आपके पसंद के।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज।
1: दोस्तों ये गाना बस सुनाई नहीं दिया, दिल में उतर गया। कभी कभी ऐसे ही सुर हमें खुद के करीब ले आते हैं। बस यूं ही जुड़े रहिए दिलों की आवाज़ के साथ, मैं हूँ आपके साथ पूनम। तो स्वेनल का मैसेज आया कि उनके एक कज़न है सत्यम और उनकी कल शादी है विद्या के साथ और उनको बहुत सारी बधाइयाँ दे रही हैं और उनको यही कह रही हैं कि भाई हम हैं तो आपसे छोटे पर इतना ज़रूर कहेंगे कि आप खुश रहो, सुखी रहो, ज़िंदगी में हमेशा सारी जो आपकी विशेज़ हैं वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छी बात है, सब एक दूसरे को चाहे ब्लेसिंग्स दें, विशेस दें, आशीर्वाद दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए उसके साथ में प्रिया जी जुड़ी हुई हैं और कह रही हैं कि आज मेरा मूड बहुत ख़राब था इसलिए मैंने आपको मैसेज किया था, पर ये गाने सुन के थोड़ा सा मूड चेंज हो गया और मुझे इतना कूल लग रहा है ना, इतना अच्छा सा लग रहा है मेरे को। अब ऐसा एहसास नहीं हो रहा कि मैं बहुत दुखी हूँ। हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं भाई अबू भी और कह रहे हैं कि गाने बहुत ही अच्छे हैं और उनकी भी कुछ ना कुछ फरमाइश होगी, इसीलिए वो गानों के साथ में, फ़ोन के साथ में, मैसेजेस के साथ में जुड़े हैं। और बाकी सभी वो लोग जो भी मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं और जो सुन रहे हैं ये प्रोग्राम आपका अपनी पसंद का दिलों की आवाज़, तो बस जुड़े रहिए, इंजॉय कीजिए एक गाना आप सबके लिए।
0: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: 8:54 हुए दोस्तों, अब विदा लेने का समय है। ये शाम आपके नाम रही, ऐसे ही जुड़े रहिए दिलों की आवाज़ के साथ। मैं थी आपके साथ पूनम। नमस्ते, शुभरात्रि, गुड नाइट। बस जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बस आराम से सोइएगा। और जो लोग जहाँ पे हैं, जहाँ पे दिन हो रहा है, बस आपको ये कहेंगे हैव अ नाइस डे। आप अपना ख्याल रखिएगा। ये लास्ट गाना अपनी मस्ती का मैं चला के जा रही हूँ आप सब के नाम।
0: RM3 Radio. Radio. Radio.
2: Na din din na, taka taka tun na. Na din din na, taka taka tun na. Na din din na.

हदीस शरीफ में है कि लोगों से कोई चीज़ मत मांगो और अगर तुम्हारा कूड़ा गिर पड़े तो उसको भी खुद घोड़े से उतर कर उठाओ। बहवाला मसनद अहमद शरीफ। ऐ पाक परवरदिगार, हमने जो अहदीस समात फरमाई हमें उन पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं, आप तमाम सामीन ने हमारा साथ दिया, हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: भोजपुरी तड़का,
3: भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खाती
1: गमन जलसा हंगामा।
4: भोजपुरी धमाल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
2: भोजपुरी तड़का,
1: भोजपुरी तड़का
5: रात के 9:11 हो गए। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुने होला जितना कोई श्रोता लोगन हवन रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के लहरों पर आप सब कोई के साथ देवे खातिर आज हम चलाल हैं। आप सब कोई के साथ है देवा बा बहुत प्यार से आशा है ये करब जा कि जहाँ कहूँ से भी आप साथ है देवत हवा रात के 11 बजे ले हमनी के संगे जुड़ल रह और मजेदार कार्यक्रम के बीच जे तोरा मन बा कोनो गीत सुने खातिर जे तोरा मन बा कोनो खातिर एगो गीत सुनावे खातिर तो जरूर हमनी के टेलीफोन करे सकब 402-808-5 402-808-5 नंबर बा रेडियो मॉरिशस के और तू मेसास विदा करे खोजा था वह तो 5251-7005 पर हमनी के मेसास विदा करे सकब। तो चला आज के हई कार्यक्रम के शुरुआत रामभराम तो हल्के आवाज़ में रखल 2025 के बरिस के हई गीत के साथ शुरुआत करब जा हई बहुत मजेदार गीत संगे तो चल साथ देते रहिए जा और गुनगुनाव जा हाई बहुत मजेदार गीत।

0: भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम बहुत मजेदार कार्यक्रम और चल है जा पर ढेर कोई हमनी के संगे जुड़ गल हवन और मजेदार कार्यक्रम संगे जितना कोई साथ देवत हवन बस ऐसने साथ जुड़ल रहियो। 11 बजे ले चली भोजपुरी तड़का कार्यक्रम तो चला आगे बढ़े के आगे बताओ अब जा सब कोई के आज के जितना कोई हमनी के सुनत हवन आज के जो पहला गीत है संतोष महादेव के आवाज़ में रखल है गीत सुनीता जी पसंद कर ले हवन और हमनी के बोले बहिन लोग सब जितना सुनत हवन उन सब कोई खातिन चला द है गीतवा और है जोन गीत है खासकर उनकर बहिन कोंगोमा से जिस साथ देवत हवन और साथ देवत हवन अमृता जी कोंगोमा से हवन विमला जी और वीना जी साथ देवत हवन गाँव गोब से ही। तो चला आज के रात के कार्यक्रम बहुत मजेदार कार्यक्रम संगे बस इसने जुड़ल रहिए साथ देते रहिए जा और मजेदार कार्यक्रम के साथ साथ मजेदार चुटकुला। पप्पू बोले चचा के चचा जी हाई सुनाना तनी जीवन में सब कोई बोले हाँ खुशी रहे के चाहिला ता खुश रहे खातिर कौन ची करे के चाहिला ता चचा बोले देखा हम बहुत अनुभव से तोरा बतलावत हई हमर अनुभव में हाई ये बोलीला बोलब जा कि जे तोरा खुश रहे के मन कराता ता खुश रहे खातिर एक के गो चीज करियो जानत हवा ना कौन ची करे के बोले नहीं चाचा हाइये तो पूछा था ही तोहरा कौन ची करे के चाहेला एगो हाथ में चूना रखिया और दूसर हाथ में मक्खन रखिया। बोले है कौन ची करे के बोले देखा एगो हाथ में

चूना चूना रखिया और एगो हाथ में मक्खन ले लिया, मक्खन रखिया जहाँ जोन चीज के जरूरत पड़े, जहाँ जोन चीज के जरूरत पड़े उहू उही लगाते रहिए आदमी लोग के तो हर काम निमन से हो जाए। अच्छा मतलब इतना करब त जीवन खुश खुशहाल रही। हाँ जीवन खुश खुशहाल रही, तू बहुत समझदार हो गल हवा पप्पू। देखा ठंडा बढ़ गल बा, मरमिट में तनी गर्म पानी चढ़ा देवत हई।

पूरी तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और मजेदार कार्यक्रम संगे बहुत मजेदार गीत जितना तू हमनी के गीत चुन चुन के आने ल बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत मजेदार कार्यक्रम चलेला रात के 11 बजे ले हैजा पर भाई नवीन हमनी के संगे जुड़ गल हवन। भाई नवीन लक्ष्मण हवन रोज बैल बगल से, उनकर पत्नी चित्रा जी और परिवार हवन मेबग से निवेदिता और सच्चिदानंद जी, साथ देवत हवन ललिता और धनराज चरण जी मोडाल बया से, बेटी स्वीटी संगे और घोंबुआ से हवन राज और अमृता उबिलक घोंबुआ से रमी

ईश और प्रीति जी, तो चला साथ देते रहिए और शिव के महिमा है अगला गीत के वो मांग कर ले हवन और लीलो माथुर सुकन की आवाज में रखल बहुत है मजेदार गीत संगे आउरी पप्पू भैया के का बोलब उनकर आंगन में वो कुत्ता कुत्ता रहल बैठल रहल।

हवा हो बेचारा कुत्ता के का लिखत हवा ओकर पिठी पे। बोले नहीं हमर जोन मास्टर जी है ना, हमर मास्टर जी हमने के बोलले बा कुत्ता पे निबंध लिखे के तो हल्के कब से बोला था निमन से बैठा हमर हमर मास्टर जी बोलले बा ओकर पिठी पे जाके तू हम निबंध लिखा था। बोले अरे बुड़बक तोरा मास्टर जी है नहीं बोलले बा हो। बोले कुत्ता पे निबंध नहीं लिखे के एगो पापिये पे कुत्ता के ऊपर निबंध लिखे के तू का बोलत हो। पप्पू तो पप्पू ही रहे।

0: पुरी तड़का।
1: नौ बजकर 28 मिनट हो गल बाटे और ही मजेदार कार्यक्रम संगे बस साथ देते रहिए जा और हई जा पर भाई आत्माराम हमनी के जुड़ गल हवा ना बिली अगी व्यस्य से और ही अगला गीत लागी ना ही छूटे राम आज तो बहुत लागी ना ही छूटे राम के बहुत मांग पर गीत चलावत हई और हई गीत चाची ललिता खातिन और छोटी खातिन पोलाव जैसे साथ देवत हवन दादी प्रभावती खातिन और जितना कोई सुनत हवन हमनी के उन सब कोई खातिन और

हाइये गीत करब जा गायत्री जी खातिन। गायत्री जी भी हमनी के साथ है देवत हवन नुएल फ्रांस से, बेटा अजय मामी कल्याणी मोहन मेबग से, भौजी हवन शकुंतला मोथाइलोंग से, और खास सखी गीता बाई खातिन। तो चला लागी ना ही छूटे राम बहुत मजेदार गीत संगे साथ देते रहिए जा और मजेदार गीत संगे संगे। चाची कौन दिन खिसिया के हमनी के ऐसन बोले बोले ऊपर वाना के बहुत मेहरबानी है हम पर। हम बोलनी अरे वाह चाची कौन मेहरबानी है बोला था बोले हाँ शिव जी के बहुत एक कृपा है हम पर, एगो ऐसन बढ़िया पति मिलल बाकी का बोलब। हमनी के कबो कौनो दुश्मन के जरूरत महसूस नहीं होला है बुढ़वा जब घर में रहेला था। ई बाबा कौन जी बोल दिलक चाची।

भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 9:31 हो गल बातें मजेदार कार्यक्रम संगे हाइजा पर जुड़ गल हवन बेनी प्रसाद परिवार विजय बेनी प्रसाद शामुनी से संगे हवन दूली परिवार और शास्त्री बुनवाली उनकर खास दोस्त मोहताबा से तो चल अगला गीत किशोर खेमिया की आवाज में रखल है एक बढ़िया गीत बोले आज तो सामदी के रात है और सामदी के रात तो जलसा हुएला तो सगरो सगरो जितना कोई जलसा करत हवन जितना कोई शादी में मगन हवन अभी बहुत कोई जगह पर शादी हवन हल्दी में गल हवन और जलसा करत हवा तो बस हाई गीत के संगे तनी ठुमका लगा दिया नाच दिया थपरी बजा दिया मजेदार कार्यक्रम

संगे हंसते हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ब सा और चचा हमनी के संदेश देवे खातिर हमेशा तैयार रहेला। जाने ल हमनी के बोले आदर पति पत्नी जाने ल कौन होला। हम बोलने आदर्श पति पत्नी आज के जमाना में कहाँ आदर्श पति पत्नी मिलेला हो। बोले नहीं देखा हम बहुत पुराना जमाना के आदमी है। हमार बड़का आदमी जोन रहल दादा नाना उ सब हमनी के बोले रहल आदर्श पति पत्नी उ ही कहाला जेकर में पति अपन पत्नी के कबो उदास नहीं देखे सके और पत्नी जोन रही वो अपन बूढ़ा के कबो खुशी नहीं देवे सकी कबो खुशी नहीं देख सकी ओकर पर बुढ़वा के। चचा पाछे से चाची देखता तोरा

0: तड़का
1: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम रात के 9:40 जितना कोई रात के काम करत हवन गार्दी के काम करत हवन सुफिया के काम करत हवन बस साथ देते रहिए जब मजेदार कार्यक्रम संगे संगे रात भी निमन से कट जाए और चला आगे बढ़ब जाए अगला बढ़िया गीत रंभा राम तोहल के आवाज में रखल और हाई जुन गीत हाई गीत बाय आबू पसंद कर ले हवन भाई आबू उनकर बेगम हवन आफेज और संगे हवन आयाज आयान जहीरा रईस खाला छोटी और उनकर खास दोस्त आपी और उनकर पत्नी खातिर तब मजेदार गीत संगे साथ देते रहिए जा और हईजा पर हमनी के साथ देवत हवन सुदेवी जी वाकवा से और उनकर बहिन हवन त्रियोले से दीदी ललिता सब कुशल परिवार खातिन मालेगा से हवन राम रतन परिवार और खासकर वैभव वंश वीर वर्षा विमल और निया खातिन अगला गीत करब जा तो चला जुबे दाल तो लेके जाए है बढ़िया गीत संगे साथ देते रहिए जा आउरी चाची चचा के किस्सा का बोलब चाची कौन दिन चचा के बोले आज वाइन लेके आइयो तो चचा के तो आँख ऐसे फाट गल और चचा बोले का बोलत हुआ आज तू मूड में चलाल हुआ का बोले का मूड में चलाल है बोले हाँ चला रात के आवब तो लेके आवब तू तरह कौन चीज तो तू एकदम मूड में कैसे चलाल हुआ बोले का मूड में चलाल है तू नहीं ले लेके आई बत हम जाके ले अब बोले धत हम जाके लेके आओ अब तो हर खातिन वाइन बोले अरे बुढ़वा वाइन के नहीं बोला था हो अजवाइन के बोला था अभी ठंडा चलाल बात अजवाइन पिए के बहुत अच्छा है पेट के दर्द चल जाए जब देखा शराब के बात करेला

0: भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम 9:50 और चला अगला गीत जन है अगला गीत चलाओ अब जा भाई राफिक मोहित खातिन जी हमने के सत्तायाक से जुड़ गल हवन और हईजा पर चाची शांता सुकागी हमने के साथ देवत हवन से जमील फोर साइड से उनकर पतो हवन किरण बेटा सुदेश साथ है देवत हवन उनकर बेटा गाविन सुजीत और अशोक और नातिन हवन संजना और नाती प्रवेश और चाची बोले हमने के बहुत दिन से विनोद शिवदत्त जी के आवाज़ नहीं सुन ले हाँ संगत करे जान के पानी पिया छान के हई गीत बहुत मजेदार गीत है तो चला आज के कार्यक्रम के संगे हई गीत तनी हमर खातिन जरूर चला द काहे नहीं मजेदार गीत और चला आगे बढ़ब जा बढ़िया बढ़िया गीत संगे चाची चाचा के किस्सा जाना था वह चाचा हमने के कौन ची बोले चाचा हमेशा अपन अनुभव से बहुत बहुत कोई लोग के सीख देवेला तो चाचा कौन दिन पप्पू के बिठा के जीवन के हई जन संदेश देवत रहलन बोले जय जीवन जैसे जाता जे उड़े नहीं सकब त दौड़ दौड़े नहीं सकब त चल और जे चलते भी नहीं बनी चले नहीं सकत हव त रेंगते रेंगते आगे बढ़ पर जीवन में कबो रुकेगे नहीं कबो नहीं और हमेशा आगे बढ़ते रह तब पप्पू अपन कपार खजवाईते खजवाईते बोले चाचा एगो बात पूछे के रह तब से तू आगे बढ़े के बात करत हवा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा पर जाए के कहाँ बा है तो नहीं बताइले तू हम कैसे जानब कहाँ जाए के बोलत हवा कहाँ आगे बढ़े के बोलत हवा

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भोजपुरी तड़का,
2: भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खाती
1: कमर जलसा हंगामा
3: भोजपुरी की रत्ना के संगे MBC रेडियो पर भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का
4: रात के 10:12 और भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के एगो घंटा बीत गल और एगो घंटा बाकी रह गल बाते और जे बात और हियाँ कोनो खास मौका त जरूर हमनी के जनैया 4028085 पर और पसंदीदा गीत के मांग करे के नहीं भूलैया। तो चला अगला गीत जो है गमट करे के रात है तो गमट करे खातिर है अगला गीत बिस्वानी दीपवा के आवाज़ में रखल चाची ललिता कुशल के ओर से चलावा जा। ये थ्री ओले से हमनी के साथ देवत हवन और उनकर बहिन सुदेवी ज्ञानी देवीना और साथ देवत हवन छोटी पोला जैसे दादी प्रभावती खातिर भाई आत्माराम भाई हरीश और माला राम जवन खास मौसी सुखलाल खातिर अगला गीत है गमटवा। तो चला संगे मिल के करब स गमट और ये मजेदार गीत संगे हैजाबर फिनिक्स से रिहाना भी हमनी के साथ देवत हवन बहुत बहुत प्यार से तो साथ देते रहिए जा और ये मजेदार कार्यक्रम संगे बस हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। कौन दिन चाची जितना गाल बजावत रहलन त चाचा बोले चाची के आजकल तोहर जबान जोन है उतनी जस्तीये चलता त चाची बोले हाँ बुझाता तो हमनी के कबो लोतो सिखैले हवा चलावे के त चाचा बोले नय काहे तो चाची बोले हाँ तो जौन चीज हमनी के आवेला वही चलाओ अब ना हमर मुंह चलावे के जानी लाता हाइये चलाओ अब

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और ही चला आगे बढ़ हब जा और हैजा पर हमनी के साथ देवत हवन अनीता जी फ्लिक ऑन फ्लैग से जुड़ गल हवन और बसंत सुपल के आवाज में रखल एगो बढ़िया गीत के मांग करत हवन तो चला अगला गीत खास उनकर खातिन उनकर सब परिवार खातिन और खांसी भाग गल बा हैजा पर लबा का रस्सी तोड़ के और है बढ़िया गीत तोहर खातिन चलाओ अब जा तो चला आगे बढ़ब जा और चाची तो अभी बहुत हुशार हो गल हवन जानत हव चाची हमनी के बोले इतिहास जोन हौ गवाह है कि जोन पति दुनिया के खातिर बहुत सीधा बहुत शरीफ नजर आवेला वो अपन पत्नी के साथ उतना ही टेढ़ा रहेला। हम अपन अनुभव से बोला था कहे के एगो टेढ़ा आदमी हमर घर में हमर छाती पर बैठ के हमनी के संगे हमेशा झगड़ा करते रहेला।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का 11 बजे ले चली भोजपुरी तड़का कार्यक्रम आए हैजा पर 10:11 अभी होल बात है और मजेदार कार्यक्रम संगे सब कोई हमने के संगे संगे हसत हवन अच्छा लगा था अच्छा बुझाता और बहुत बहुत मजेदार कार्यक्रम संगे हैजा पर बहुत ही प्यार से सब कोई मिसाज विदा करत हवन बहुत बहुत धन्यवाद रत्ना जी थैंक यू अनिता जी संगे साथ देते रहिए जा और मजेदार कार्यक्रम संगे बढ़िया बढ़िया बढ़िया गीत सब कोई खातिर चलो अगला गीत जो है पूर्णिमा जी हमने के साथ देवत हवन और आज उनकर बेटी खातिन गीत मंगले हवन 5 तारीख के यानी कि 5 मई के उनकर बेटी मालिनी फुकीरा के जन्मदिन बातें वो जो ला पुलिस के काम करता है तो चला मालिनी जी तो एडवांस में जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई और तोहर बहिन लोग पिंकी प्रविनी पूजा और पूनम बहुत बहुत बधाई देवत हवन और विदेश से प्रवेश और उनकर पत्नी कुष्मा जी भी संगे साथ जुड़गल हवन ममा पूर्णिमा फुकीरा साथ देवत हवन और शयान स्वानिश कानिश और साथ हवन अयान और प्यारी परी और एस एस आर एन लोपिताल के जितना रात के काम करे होला स्टाफ हवन उन सब कोई खातिन हई अगला गीत और हई गीत है पिया परदेश तो चला पिया परदेश के हई गीत संगे आगे बढ़ब जा भी जितना चाची गाल बजावता था चचा छोड़ी ओकरा चचा बोले का बोला अभी गर्मी औरी बुढ़िया एक जैसन हो गल हवन इनकर पारा जब चढ़ेला तो अच्छा से अच्छा आदमी के पसीना छूट जाला

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम संगे हैजा पर दागोचिया से कुमारी जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन औरी चला अगला गीत चलाओ अब जा खास कर उनकर नाती काविश खातिन लाविश माफ करिए लाविश खातिन जी हाँ लाविश खातिन और साथ देवत हवन उनकर पत्नी निरीशा मामा लता और पापा धनंजय और जिनकर घर में एगो छोटा सन बाबू आल बा एक महीना होल बा तो चला कुमारी जी अगला गीत के मांग करत हवन हई गीत चलाओ अब जा उनकर खातिन और सब हरि नारायण परिवार खातिन और हई ये गीत अब अभिमन्यु हरपाल सिंह के आवाज में रखल हई जोन गीत हई ये करब जा राजन लक्ष्मण जी खातिन जे लफलोगा से साथ देवत हवन और उनकर पत्नी हवन माला दूगो बेटी प्रार्थना और प्रगति बहन मानती और उनकर भगिनी हवन उर्मिला तुलसी खातिन और हई अगला गीत खासकर मजेदार गीत संगे जुड़ जाइए और ही मजेदार गीत संगे हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ब जा चचा कौन दिन बहुत तनाव में चला तो दुखते हियाँ गल तो चचा के तनी चेके करके दुखते बोले हाँ चचा जानत हवा बहुत स्ट्रेस बढ़ गल बा बहुत तनाव बढ़ गल बा तोरा नींद के गोली लिख के देवत हई घरे जाके बोले चचा बोले हाँ हाँ दुखते जी कितना खाई के गोली बोले नहीं तू नहीं खइय जाके अपन बुढ़िया के खिया दिया तो वो जब निमन से सूझ जाए तो तोहर तनाव तनी दूर हो जाए
2: सिया मांगे

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और 10:33 होगल बाटे मजेदार कार्यक्रम संगे हाइजा पर का ट्रिब्यून से शो भाजी हमनी के साथ दिवत हवन और जितना कोई सुने होला श्रोता हवन जितना सीनियर सिटीजन हवन जितना कोई हमनी के संगे जुड़ गल हवन उनकर खातिर अगला गीत चलाओ अब जा सुनीता ननकू के आवाज में और गमट के कार्यक्रम जारी रही रात के 11 बजे ले तो चला आगे बढ़ब जाओ और पप्पू भैया के का बोला कौन दिन पप्पू भैया चल गल पाठशाला और पप्पू भैया अपन घर के जो कार्य देले रहल गुरुजी वो कार्य नहीं फिनी करलन अपन होमवर्क फिनी नहीं करलन तो गुरुजी बोले हाँ एगो और दिन के तोरा मोहलत देवत हाँ जे तू काल अपन देव नहीं करलक तो मुर्गा बनाब तो फट से पप्पू भैया बोले नहीं नहीं गुरुजी मुर्गा नहीं चली काल तो हमर कागम है काल हमर खातिर मटर पनीर बना दिया मुर्गा नहीं खाओ काले

0: भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम हैजा पर हमनी के संगे मौत आवाज से जुड़ गल हवन बादवाग विदेशी जी और अगला गीत जनहा कमल और विभा चिंतामणि के आवाज में रखल काम करवा। पहला मई काल रहल श्रमिक दिवस और है गीत बढ़िया जितना काम करेलन सा उन सब कोई खातिन है अगला गीत और उनकर खास दोस्त हवन अनुषा खेदन उनकर खातिन चलाव अब जा। और पप्पू भैया के तो है किस्सा सुनते चला। मास्टर जी एगो सवाल पेल दिलक। हाँ मास्टर जी बोले अच्छा बोला जिंदगी के तलाश में मौत के करीब आ गए है फाज के है सेंटेंस के कौन मतबल हो रहा। तो पप्पू भैया बोले सार मतबल तो है ये है कि गर्लफ्रेंड गए थे ढूंढने और शादी फिक्स हो गल।
2: Message for all the workers.

0: भोजपुरी तड़का।
1: चला भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के आगे बढ़ाओ अब जा और हाइट जा पर हमने के संगे हवन बिहारी हरि प्रेम जी त्रियोले से साथ दिवो धवन और अगला गीत उनका नातिन आयुषी प्रीतेश और अवनी खादिन चलाओ अब जा कौन फुलवा फूलेला सुनान्नो यन के आवाज में रखल।

जब बत्ती से धुआं निकलने लगी तो तेल डालने से क्या होगा। जब असर के भूत सर से उतर गया तो अरे गुनी बुलाने से क्या होगा। जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा। अरे गंदे पानी पीकर प्यास बुझा लिया तो कुआं में डुबकी लगा।

क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा। जब घर की चौखट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या

0: नाचे भोजपुरी गीत रत्ना के संगे MBC रेडियो पर भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और आज के आखिरी जन गीत रही लेखाम जी खातिन जे कौ दिमाग से साथ देवत हवन और उनकर प्यारी पत्नी देवी खातिन जितना कोई सुनत हवन उन सब कोई खातिन और शाम दी के रात जब रहेला तो सब कोई गर्मा गर्म दाल कच्चू और पूरी के स्वाद हल्दी के समय लेवेलन सब तो चला है बढ़िया गीत संतोष महादेव के आवाज में रखल बढ़िया सन गीत तोहर खातिन चलाओ अब जाओ जितना कोई आज हरदी हरदी मनावत हवन तो बस हरदी के है दिन बहुत पावन रही सब कोई खातिन तो चला है अगला गीत खातिन चलाओ अब जा सब कोई खातिन जी अभी शादी के बंधन में बंध गल हवन या बंधे जात हवन तो उनकर खातिन चलाओ अब बढ़िया गीत है और है ये गीत के साथ आज के कार्यक्रम है जहाँ पर समाप्त हो जाए आप सब कोई हमने के बहुत प्यार से साथ देलन बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसने हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए आवत सामदी के फेरों से एक बार भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में आप सब कोई के मनोरंजन कर अब जाएगो बढ़िया कार्यक्रम संगे बढ़िया चुटकुला संगे हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति शुभ रात्रि नमस्कार

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल सुन रहे प्यारे प्यारे श्रोताओं को नितुषा का करजोर प्रणाम। आप सबका अभिवादन स्वागत है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? और दिन कैसा रहा आपका? बस एकदम कुशल मंगल, यही हम कामना करते हैं। तो आइए सुनहरे पल यादों की दुनिया में आपको वापस ले चलते हैं, क्योंकि यादें जब उभर कर आती है ना, तो वो बीते हुए पल और वो बीती हुई बातें भी सामने आ ही जाती हैं। अभी के लिए तो हम आपके साथ रहने वाले हैं, बस ऐसे ही प्यार मोहब्बत के साथ, इन सदाबहार नगमों के संग। तो चलिए शुरुआत करते हैं।

श्रोताओं, जब बॉलीवुड के एवरग्रीन सदाबहार गीतों के बारे में बात करते हैं, जैसे रात की ठंडी हवा जो हमेशा दिल को सुकून देते हैं, ये गाने ना न पुराने होते हैं, न ही पूरी तरह भुलाए जा सकते हैं। चलिए चलते हैं उस सफर पर जहां हर सुर एक याद बन जाता है।

गाना है आहा, जब किशोर कुमार की आवाज गूंजती थी या फिर लता जी के सुर खिलते थे तब हर एक दिल एक कहानी बन जाता। आज की रात वही कहानियाँ और वही यादें लेकर हम भी आए हैं एवरग्रीन मेलोडीज के साथ सुनहरे पल में।

गाने जो कल भी दिल को छू गए थे और आज भी वैसे ही हसीन लगते हैं, वही तो होते हैं सदाबहार गाने, चाहे वो रफी साहब हो, मुकेश हो, या फिर हमारे जितने भी लेजेंडरी संगीतकार रहे, शंकर जयकिशन, नौशाद, खयाम, कल्याण जी, आनंद जी, और तो बहुत सारे हैं। सुनते हैं कुछ ऐसे ही नगमे जो कभी पुराने नहीं हो सकते हैं, भले ही बातें भूल जाएं, लेकिन ये यादें कभी दिल से जुदा होंगी नहीं।

बॉलीवुड मेलोडीज जैसे कहते हैं सिर्फ सुरों का जादू नहीं है श्रोताओं, बल्कि जज्बातों की एक दुनिया है। और आज वापस हम आपको ले चले हैं उन्हीं नगमों की महफिल में जो दिल को हमेशा नया सा लगता है। ये गाना सुनिए और खुद अपने मन को बताए, सहलाए कि इसको सुनकर वापस कैसा होता है। कुछ न कुछ तो होता है ना?

गाने नगमों का चार्म ही अलग था, लिरिक्स में शायरी थी, म्यूजिक में रूह और आवाजों में एक जादू। सुनते हैं कुछ ऐसे ही गीत जो हमेशा के लिए दिल में बस गए हैं, जैसे कहते हैं ना एवरग्रीन मेलोडीज, जैसे चांदनी रात में नूर जो कभी कम ही नहीं होता। ये गाने हमेशा एक मुस्कान ला देते हैं, चाहे दिल उदास हो या खुश। तो बस दिल से दिल तक ये सफर शुरू हुआ था, अब समाप्त तो हो चला है, लेकिन कारवां कभी खत्म नहीं होता है। मिलेंगे अगली बार, तब तक नीतूषा की ओर से नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि।

सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भर नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। नॉटिंघम फॉरेस्ट का एक पैर यूरोपा लीग के फाइनल में, एस्टन विला पर 1-0 की जीत। नैरो लीड ही सही पर कीमती है। सेकंड हाफ में क्रिस वुड का गोल पेनाल्टी पर काफी रहा। यूरोपा लीग स्पेशलिस्ट एस्टन विला का मैनेजर उनई एमरी वार से बहुत नाराज हुआ। उसके अनुसार नॉटिंघम फॉरेस्ट के मिडफील्डर एलियट एंडरसन को रेड कार्ड देना चाहिए था। ऊपर से वार रिव्यू पर ही पेनाल्टी दी गई फॉरेस्ट के हक में। दूसरे मैच में ब्रागा ने फ्रीबर्ग को 2-1 से हराया। सो नॉटिंघम फॉरेस्ट 1, एस्टन विला 0, ब्रागा 2, फ्रीबर्ग 1। ये यूरोपा लीग में। कॉन्फ्रेंस लीग में क्रिस्टल पैलेस की शानदार एवे जीत। 3-1 से पैलेस ने शक्ता दुनियास्क को हराया। इस्माइल असा, दाइची कमादा और स्ट्रान लार्सन स्कोरर रहे। पहला गोल केवल 21 सेकंड बाद स्कोर किया गया इस्माइल असा के जरिए। ये कॉन्फ्रेंस लीग का फास्टेस्ट एवर गोल है। शक्ता 1, क्रिस्टल पैलेस 3। दूसरे सेमीफाइनल में रायो वालेकानो ने 1-0 से स्ट्रासबर्ग को हराया। आज मई महीने का पहला दिन प्रीमियर लीग में लीड्स यूनाइटेड का मुकाबला बर्नले से होगा। बर्नले तो रिलेगेट हो गया है, लीड्स यूनाइटेड रिलेगेशन जोन से दूर भागना चाहेगा। अभी लीड्स डेंजर जोन से 6 अंक ऊपर हैं। वीकेंड के दौरान जो मैच खेले जाएंगे, सप्ताहांत के फिक्स्चर्स, ब्रेंटफोर्ड वेस्ट हैम, न्यूकासल यूनाइटेड ब्राइटन, वुल्व्स सन्डरलैंड, ये कल 6 बजे, फिर 8:30 बजे आर्सेनल का मुकाबला फुलहम से होगा, फिर सुपर संडे मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल, महामुकाबला दो ऐतिहासिक दुश्मनों के बीच, ये खेला जाएगा 6:30 बजे 6:30 किक ऑफ। इससे पहले 5 बजे बोर्नमुथ क्रिस्टल पैलेस और 10 बजे एस्टन विला टोटनहम हॉटस्पर। टेनिस, मैड्रिड ओपन में केवल 19 साल की मीरा एंद्रीवा फाइनल में पहुंची हायली बैटिस्ट को हराकर। फाइनल में कल उसके सामने होगी मात कोस्ट्यूक, जिसने अनास्तासिया पुस्तापोवा को हराया। लड़कों में ब्लॉक्स ने कास्पर रूट को हराया। क्वार्टर फाइनल में वेरेव भी सेमीफाइनल में पहुंचा। सो आज सेमीफाइनल सीनर वर्सेस फिस, ब्लॉक्स वर्सेस वेरेज, ये सेमीफाइनल है मैड्रिड ओपन में। क्रिकेट, आईपीएल 2026 के ग्रुप स्टेज में कल गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 4 विकेट से हराया। 20 ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर केवल 155 रन बना पाया। विराट कोहली 28 रन बनाकर आउट हुआ, 28 रन्स। जवाब में गुजरात टाइटंस के लिए शुभम गिल केवल 18 गेंदों में 43 रन बना पाया। आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से है। लीग टेबल में पंजाब किंग्स के पास है 13 अंक, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पास है 12 अंक, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के पास भी है 12 अंक और गुजरात टाइटंस के पास है 10 अंक। मॉरिशस में क्षेत्रीय स्तर पर रिवियर डू रैम्पार डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की ओर से इंटर विलेज पेटांक टूर्नामेंट, ये इस रविवार इस संडे को खेला जाएगा रिवियर डू रैम्पार गांधी स्क्वायर बुलेटरोम में। सो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही, आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन और आप सभी लोगों को श्रम दिवस की शुभकामनाएं। You're listening RM Free Radio.

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो।
1: शोला शोला